0: बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: राष्ट्रपति गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति

0: गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति अड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंपती है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निष्ठा होंगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है वंदन बार रामचरित मानस गान और संगीत सरिता मुंबई केंद्र से।

सुबह 7:30 से सुनेगा हम हैं राही प्यार के, 8:15 से सुनवाएंगे त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

कार्यक्रम स्वर संगीता श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम ढलती जाए रात। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचकर भरत पुलकित हैं। हृदय में श्री राम सीता और लक्ष्मण के लिए उमड़ते स्नेह से आंखों में आंसू उमड़ आए हैं। निर्दोष भाव से वे भरद्वाज जी के सम्मुख अपने उद्गार प्रकट करते हैं। उन्हें अपनी माता कैकेयी की करनी का कोई विषाद नहीं है और न ही पिता के निधन का शोक है, क्योंकि दिवंगत महाराज का पुण्य और सुयश समस्त जगत में विदित है। जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए और पुत्र विरह में नाशवान शरीर त्याग दिया, ऐसी पुण्यात्मा के लिए शोक करना तो उसकी मर्यादा के प्रति अपमान होगा। भरत को सोच इस बात का है कि राम लक्ष्मण तथा सीता मुनियों का वेश धारण कर वन वन फिर रहे हैं, वलकल वस्त्र पहनते हैं, कंदमूल का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों की छाया में सर्दी गर्मी वर्षा और हवा के झोंके सहते हैं। इसी दुख से भरत की छाती फटती है, न भूख लगती है न नींद आती है। इस दुख का निदान उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। निदान मात्र एक है, श्री राम को अयोध्या लौटा लाना।

0: श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं शकुंतला नरसिम्हन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसमें चर्चा की जा रही है कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों के बारे में। कल आपने सुना था राग धनाश्री, आज प्रस्तुत है राग दरबारी।
1: नमस्कार श्रोताओं, संगीत सरिता में इस श्रृंखला को पेश करते हुए मुझे बहुत ही खुशी होती है। आज प्रस्तुत कर रही हूँ स्वाति तिरुनाल महाराजा द्वारा हिंदी में रचित एक और कृति, और आज का राग है हिंदुस्तानी पद्धति का दरबारी कानड़ा। इस बंदिश के बोल हैं, देवन के पति इंद्र, तारा के पति चंद्र, विद्या के पति गणेश, दुख भार हारी। वैसे तो राग और भाषा उत्तर भारतीय है, लेकिन रचनाकार दक्षिण के और बंदिश का विभाजन भी कर्नाटक पद्धति के अनुसार पल्लवी और अनेक चरणों के रूप में किया गया है। इस कृति को आपके सामने रखने से पहले जरा साहित्य के बारे में दो शब्द कह दूं। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते समय जो कहते हैं, उसी को दोहराते हुए महाराजा स्वाति तिरुनाल कहते हैं, देवन के पति इंद्र, तारागण में सबसे उत्तम है चांद, मुनिजन में अग्रणी है व्यास ऋषि, और वाद्यों में सबसे उत्तम है वीणा, रागों में सबसे सुंदर है दरबारी कानड़ा। तो ऋतुओं में वसंत ऋतु सबसे सुहावना है, पक्षियों में अति सुंदर हंस पक्षी है, तो मनुष्यों में अवधवासी राम सबसे उत्तम है, पहाड़ों में हिमालय, तो तीनों लोक के पति पद्मनाभ अर्थात विष्णु हैं। महाराजा स्वाति तिरुनाल ने अपने कृतियों में पद्मनाभ इस शब्द को मुद्रा के रूप में जोड़ा है। कभी पद्मनाभ के जगह कमलनाभ, जलजनाभ भी कहते हैं, लेकिन अर्थ तो सबका एक ही हुआ, यानी कि सब विष्णु के अनेक नाम हैं। तो अब सुनिए राग दरबारी कानड़ा में स्वाति तिरुनाल महाराजा द्वारा रचित एक हिंदी भाषा की कीर्तना।

0: राग दरबारी पर आधारित ये गीत हमने लिया था फिल्म मेरे हुजूर से, आवाज थी मन्ना डे की। स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन। उसी कड़ी में आज आप सुन रहे थे राग दरबारी कानड़ा।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपा

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी झालावाड़ की चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। सवेरे के 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़।

उगते सूरज की सुनहरी किरणों के साथ। इन किरणों ने पूरे आसमान को जैसे लाल नीले पीले रंगों से भर दिया हो। उसी मस्त गगन में उड़ान भरते रंग बिरंगे पंछियों का कलरव ऊर्जा का नया गान गा रहा हो, नई आशा की उम्मीद जगाए कह रहा हो, सुबह हो गई है, उठो जागो और अपने दैनिक कर्म की ओर निकल पड़ो। ऐसे सुनहरे पल सुबह को और भी खास और यादगार बना देता है। हमारा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। तो फिर देर किस बात की, आज आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त लोकेश व्यास। तो स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार इस सुविचार के साथ जो आपके दिन को और भी तरोताजा कर देगा। अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो। दोस्तों, दुनिया को बदलना मुश्किल है, खुद को बदलना आसान है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर सब लोग सुधर जाएं, ट्रैफिक ठीक हो जाए तो हमें शांति मिल जाएगी। मगर असल में शांति बाहर से नहीं, अंदर से आती है। हम चाहते हैं कि रास्ते के सारे कंकर हट जाएं, हर इंसान हमारे हिसाब से चले, मौसम अच्छा रहे, यह नामुमकिन है। इसमें उम्र बीत जाती है और शिकायतें खत्म नहीं होती है। अगर रास्ते में कंकर हैं तो चप्पल पहन लो, कंकर चुभेंगे ही नहीं। जी हाँ, ठीक वैसे अगर लोग कड़वा बोलते हैं तो अपना नजरिया बदल लो, प्रतिक्रिया बदल लो। शिकायत करना सबसे आसान होता है पर खुद की आदत बदलना मुश्किल लगता है। दोस्तों, एक आदमी बुद्ध को गालियां देने आया। बुद्ध चुप रहे। आदमी ने पूछा, तुम जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, अगर कोई तोहफा लाए और तुम उसे न लो तो तोहफा किसके पास रहेगा? आदमी समझ गया। बुद्ध ने दूसरों को गाली देने से रोकने की कोशिश नहीं की, अपनी प्रतिक्रिया बदल ली। दूसरों की गलती पकड़कर बैठेंगे तो मन का कारपेट हमेशा कंकरों से भरा रहेगा। माफ करना सीखें। शांति का रिमोट आपके हाथ में है दोस्तों। अगर हम टीवी का वॉल्यूम कर करना चाहें तो रिमोट ढूंढते हैं। ठीक वैसे ही जीवन में शांति चाहिए तो रिमोट यानी खुद का रवैया बदलो। दुनिया को कोसने से दुनिया नहीं बदलती। बीपी जरूर बढ़ जाता है, खुद को बदलने से दुनिया भले ही ना बदले पर आपकी दुनिया जरूर बदल जाएगी।

और अब दोस्तों दिवस विशेष के क्रम में चलते हैं। आज बहुत कुछ जानकारियां आप तक पहुंचानी है। दोस्तों आज स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे शूरवीर योद्धा का दिन है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश समाज सेवा और हिंदुत्व उत्थान के लिए अर्पित कर दिया। इन्हें जमाना वीर सावरकर यानी कि विनायक दामोदर के नाम से जानता है। आजादी के महानायक वीर सावरकर का जन्म आज ही के दिन यानी कि 28 मई 1883 को भागुर नासिक में हुआ था। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए 2 बार अंग्रेजों द्वारा आपको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। आपके मित्र और आपने मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जो बाद में अभिनव भारत कहलाया। साथ ही लंदन में इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया और अंग्रेजों के खिलाफ रणनीतियां आपने बनाई। पहली बार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम करार देते हुए एक पुस्तक लिखी जिसे ब्रिटिश सरकार ने

प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंध कर दिया था। नासिक के कलेक्टर की हत्या के मामले में 1910 में लंदन में गिरफ्तारी हुई और भारत लाते समय फ्रांस के बंदरगाह पर जहाज के शौचालय के रास्ते समुद्र से आप कूद गए, लेकिन पकड़े गए और बाद में अंडमान की सेलुलर जेल में 50 साल की सजा के लिए आपको भेज दिया गया। 1921 में जेल से रिहा होने के बाद अपना जीवन हिंदू समाज को एकजुट करने और सामाजिक कुरीतियों को मिटाने में लगा दिया। छुआछूत और जाति प्रथा के खिलाफ बड़ा आंदोलन आपने चलाया। अंतरजातीय भोज और पतित पावन मंदिर की स्थापना आपने की, जिसमें सभी जातियों के लोगों को प्रवेश की अनुमति थी। हिंदुत्व विचारधारा को एक राजनीतिक और दार्शनिक रूप दिया। ऐसे महानायक का 26 फरवरी 1966 को निधन हो गया। वीर सावरकर जी ने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, सामाजिक सुधार, हिंदुत्व समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। हमें उनकी विचारधारा से प्रेरणा लेकर देश और समाज के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए।

दोस्तों, आज पूरे देश भर में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद इस्लाम के प्रमुख त्यौहारों में से एक मनाया जा रहा है। आपको बताएं दोस्तों, यह त्यौहार पैगम इब्राहिम द्वारा अल्लाह के प्रति अपनी अटूट भक्ति और अपने बेटे की कुर्बानी देने की तत्परता की याद में मनाया जाता है। रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के लगभग 70 दिनों के बाद इसे मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो अल्लाह ने उनके पुत्र को जीवन दान दे दिया, जिसकी याद में यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन अल्लाह की रजा और खुशनुदी प्राप्त करने के लिए बकरे, भेड़ या टुंबे जैसे जानवर की कुर्बानी दी जाती है। ईद की सुबह मुस्लिम भाई दरगाह या मस्जिदों में इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से विशेष नमाज अदा कर एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं और मिठाइयां पकवान बांटते हैं। आपको बताएं दोस्तों कि आज सुबह 8 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। सच्चा धर्म वही है जिसमें दूसरे की भलाई और परोपकार शामिल हो। इसलिए बकरी सिर्फ एक त्यौहार ही नहीं दोस्तों, बल्कि एक सोच और जीवन शैली है जो इंसान को बेहतर बनाती है, और यही इस दिन का पैगाम भी है।

0: उसे प्राकृतिक कारणों से बदलती रही है, जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य उत्पादन और ब्रह्मांड से आने वाले प्रभाव। यह हजारों सालों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन होते हैं, कभी हिमयुग, कभी गर्म अवधि। जलवायु को बदलने वाले मुख्य कारण हैं पृथ्वी के कक्ष का आकार, उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि। समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है? यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन

0: का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है।
1: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

दोस्तों, इस्तेमाल में ट्यून किया आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल और कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार झालावाड़। दोस्तों, आप सभी जानते हैं तंबाकू, गुटखा या उससे बने उत्पाद बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, खैनी हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरह से नुकसानदायक हैं। आज दुनिया में लगभग 80 लाख से ज़्यादा मौत का कारण तंबाकू सेवन है। साथ ही लाखों लोग कैंसर जैसी घातक बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। आज बच्चे, बुजुर्ग, जवान, यहाँ तक कि महिलाएं भी जाने अनजाने इसका शिकार हो रही हैं, इसका सेवन कर रहे हैं। सार्वजनिक ऐतिहासिक स्थलों, इमारतों, दीवारों को गंदा कर देते हैं। स्वास्थ्य और पैसे दोनों की बर्बादी के सिवाय इसमें कुछ नहीं है। दोस्तों, हम आए दिन समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न, पोस्टर, विज्ञापनों के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ तक कि सिनेमा घर में भी फिल्म से पहले गुटखा, तंबाकू के कवर पर साफ लिखा होता है, मादक पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है, न ऐसा करें और न किसी को करने दें। दोस्तों, हम हर साल तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव और नुकसान से बचें, खुद जागरूक हों, दूसरों को भी जागरूक करें, तभी हमारा यह दिवस मनाना सार्थक होगा। हम भी यही आपसे अपील करते हैं कि आप तंबाकू, गुटखा, खैनी इनसे बचें, इनके सेवन से बचें, इसे न खाएं। इससे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी तरीका का नुकसान है। दूसरी सृष्टि में ईश्वर के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है हमारे माता पिता, जिनके निस्वार्थ प्रेम, त्याग और आजीवन समर्पण के प्रति हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक संतानों के सुख दुख का साथी बनकर हमेशा हर कदम पर साथ निभाते आए हैं। और बदले में उनकी एक ही अभिलाषा होती है कि हमारे संतान हमारे बुढ़ापे की लाठी बनकर हमारा साथ दे। आज कई ऐसे माता पिता हैं जो मजबूरन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मानो वृद्धा आश्रम ही उनका परिवार हो। हम साल में एक दिन माता पिता का वैश्विक दिवस के रूप में मनाकर खुश हो जाते हैं। जरा उनसे पूछिए जिनके माता पिता नहीं हैं, हम उनके लिए अपना सर्वस्व भी न्योछावर कर दें तो वो भी कम है। आखिर माता पिता के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और आजीवन समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। बदले में वो आपसे उम्मीद करते हैं आपका प्यार, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, समय पर दवाइयां देना और उनके साथ सुख दुख की बातें साझा करना। तभी 1 जून को वैश्विक स्तर पर हमारा अभिभावक दिवस मनाना सार्थक होगा। और यही तो हमारे भगवान हैं।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, गर्मी का मौसम चल रहा है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि नौतपा का समय चल रहा है, सन स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है और कई व्यक्ति जो है लू की चपेट में आ जा रहे हैं। आप घर से बाहर निकलते वक्त सिर पर मफलर या दुपट्टा वगैरह ओढ़ करके निकलें, आंखों में चश्मा लगाएं और ज़रूरत हो तो ही आप घर से बाहर निकलें, वरना 12 से शाम 4 बजे तक आप घर पर ही रहें और खासकर जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं उनका विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि अभी आगामी दिनों में देश सबसे गर्म होने वाला है। तापमान जो है वो बढ़ोतरी करता हुआ 47 डिग्री 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसे में बच्चे बुजुर्ग संभल कर रहे हैं, उनका ध्यान रखें क्योंकि कभी भी लू की चपेट में आ सकते हैं। और जहां तक गर्मी से बचाव की बात है, इस लू से बचने के लिए हमें जो फल आ रहे हैं, चाहे वो केरी हो उसका पना आप ले सकते हैं, छाछ है, दही है, केरा ककड़ी वगैरह, नींबू पानी का सेवन करें, ORS का आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में उल्टी दस्त होने की संभावना है, बुखार भी आ सकता है। अपना और अपने का ख्याल रखें।

नमस्कार झालावाड़ करके तुरंत पश्चात यानी 7:30 पर, शाम 6:05 पर और रात 8:15 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। प्रातः 8 समाचार प्रभात हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 8:15 पर आप सुनेंगे विभिन्न गैर फिल्मी रचनाओं का कार्यक्रम सुगम संगीत। गणगौर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा 8:30 पर। वीर सावरकर जयंती वृक्षों का धार्मिक महत्व पर चर्चा होगी। भेंटवार्ता आपको सुनवाई जाएगी कम उम्र में बढ़ता हार्ट अटैक का खतरा। डॉक्टर पुनीत गुप्ता से बातचीत सुनाई जाएगी। जानकारी में ग्रीष्म ऋतु में लू से बचाव, माता पिता का वैश्विक दिवस और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर चर्चा की जाएगी। दोपहर 12 हम आपको सुनवाएंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 5 युवा जगत के लिए युवावाणी कार्यक्रम होगा। चर्चा का विषय ग्रीष्म ऋतु में लू से बचाव, माता पिता का वैश्विक दिवस पर चर्चा होगी। वातायन में खुजराव मंदिर समूह मध्य प्रदेश के बारे में आप जान सकेंगे। चिराग जल रहे युवा डायरी के अंतर्गत भेंटवार्ता आपको सुनाई जाएगी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर डॉक्टर भरत कुमार सोनी से जानकारी में प्रधानमंत्री जनधन योजना की जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही आज का इतिहास और रोजगार सूचनाएं आप तक पहुंचेगी। शाम 5:30 प्रायोजित कार्यक्रम धीरणे रिबाता हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। 7 किसान भाई बहनों के लिए कार्यक्रम होगा किसान वाणी। आज सजीव फॉरेन कार्यक्रम का विषय रहेगा खेती को लाभकारी टिकाऊ और तकनीक आधारित बनाने हेतु राष्ट्रीय स्तर का साझा मंच। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 विषय पर स्टूडियो में मोना राठौर से बातचीत की जाएगी। आप इनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मौसम बाजार भाव आप तक पहुंचेगा। रात 8:45 पर समाचार संध्या का आज का अंक हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और रात 9 श्रोता सुनेंगे विभिन्न गैर फिल्मी रचनाओं का कार्यक्रम सबरस। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाली मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में जानकारी।

और अब इस कार्यक्रम में बस कुछ ही पल बचे हुए हैं, तो आपको तरोताजा कर देते हैं कुछ स्थानीय महत्वपूर्ण सूचनाओं से। जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि गर्मी का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, लू के थपेड़ से हर कोई का हाल बेहाल हो रहा है। तापमान की अगर बात करते हैं तो आज अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम में आर्द्रता 19% तक देखी जा सकती है और हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में विचरण करेगी। ऐसे में कुछ खा पी करके ही घर से बाहर निकलें, आवश्यक काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। आज पूरे देश भर में ईद उल जुहा यानी बकरीद का त्यौहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और इसके लिए नमाज अदायगी का समय प्रातः 8 बजे मुकर्रर किया गया है। तो आप समय पर ईदगाह दरगाह पहुंचें और नमाज अदा करें। दरगाह हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन चिश्ती गागरन शरीफ झालावाड़ का 3 दिवसीय सालाना उर्स 16 जून को चांद नजर आने के साथ शुरू होगा और इसके लिए उर्स की आमद को लेकर दरगाह खादिम कमेटी ने अजमेर शरीफ आस्थाना अलिया पर दावतनामा पेश किया और इस दौरान चादर गुलाब पोशी इत्र पेश किया गया। आप अगर रेल यात्रा कर रहे हैं तो झालावाड़ वासियों के लिए, आसपास के क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि कोटा चोमेला मेमू जो ट्रेन है अब उज्जैन तक जाएगी, यानी कि लंबे समय से इसकी मांग की गई थी और

अब ये ट्रेन कोटा से चोमाला होते हुए उज्जैन तक पहुंचेगी। गृह रक्षा नामांकन वर्ष 2022 के अंतर्गत गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र झालावाड़ के चयनित और आरक्षित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन 29 मई यानी कि कल होगा और प्रतिदिन सुबह 7 बजे से ये प्रक्रिया संचालित होगी। इसमें प्रतिदिन 15 से 20 अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण राजकीय अस्पताल झालावाड़ में होगा और संबंधित अभ्यर्थियों को कार्यक्रम की सूचना व्यक्तिगत रूप से भी भेजी जा चुकी है, तो आप निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होकर इसे पूरी कर सकते हैं। और दोस्तों, इन्हीं जानकारी के साथ नमस्कार झालावाड़ कार्यक्रम से अपने दोस्त लोकेश व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।

आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से श्रोता भी सुन रहे थे दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। हमारे केंद्र से आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

0: बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12

0: खोज, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय।

0: सेना।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: फिल्म संगीत कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं SH बिहारी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया प्यार झुकता नहीं फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के गाए प्यार झुकता नहीं फिल्म के इस दो गाने के साथ ही आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से FM 103.2 MHz पर। सवेरे के 8 बजे जाते हैं कुछ ही पलों में समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, आइए प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक

0: इलाके में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले दो दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल

0: हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
3: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं।

0: अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं।
3: सर्वरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
4: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाश भोपाल।
1: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
5: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है, ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं।

0: ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है। नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आई बापू सुनवाते हैं विभिन्न गैर फिल्मी रचनाओं का कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं अनूप जलोटा की गाई इस रचना के साथ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: हीरे मोती
3: सुगम संगीत कार्यक्रम में आई बाबू सुनाते हैं कैलाश खेर की आवाज में यह एल्बम गीत।

0: इस गजल के साथ ये थे चंदन दास।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की

0: इस गजल के साथ ये थे चंदन दास।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजना।
2: पीपल को जो वृक्ष छ उके जो मान्यता छ कई में ब्रह्मा विष्णु महेश को वास मान्य जाओ छ। इकी पूजा करवासु पितृ दोष कम हो छ। होली के 10 दिन बाद होली दशा पर भी इकी पूजा की जाओ छ। बरगद या व्रत वृक्ष यो वृक्ष अमरता उर्वरता और लंबी आयु को प्रतीक मान्य जाओ छ। जेठ माह की अमावस्या का दिन इको वट सावित्री के नाम सु सुहागन्या इकी पूजा कर छ। बिलपत्र यो वृक्ष भगवान शिव को प्रिय वृक्ष छ। शिव पूजा और रुद्राभिषेक बेलपत्र और बेल का विशेष महत्व छ। इको फल भी कई औषधियां सु भरे हुए छ। नीम को पेड़ नीम शीतला माता और देवी दुर्गा को वास मान्यो जाओ छ। औषधियां युक्त यो पेड़ नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियां ही दूर कर छ और औषधियां सु भरपूर छ। शमी पत्र को वृक्ष शनि देव सु संबंध राख छ। महाभारत काल में पांडवा ने शमी पत्र का पेड़ पर ही अज्ञातवास के दौरान अपना शस्त्र छुपाया छ। दशहरा के दिन ई शमी पत्र की पूजा की जाओ छ। तुलसी को पौधा अपन सब जाना छ का हर हिंदू घर में मलोगो। इका बिना हर प्रसाद भगवान को भोग अधूरो छ। यो विष्णु प्रिय भी छ। यो सबसु छोटो पर गुणा में अत्यधिक बड़ो पौधो छ। कार्तिक मास में मंदिरा में घरा पर तुलसी सालिग्राम विवाह को आयोजन भी धार्मिक रूप से मनाया जाओ छे। या अपनी आस्था को ही तो प्रतीक छे। हिंदू परंपरा जहाँ कण कण में भगवान मानबा की आस्था वहीं पेड़ पौधा को महत्व अपन स्वास्थ्य के साथ साथ भाग्य वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाओ छे। यहाँ तुलसी आंवला केला बरगद शमी पत्र नीम हो या बेलपत्र सभी ईश्वर तुल्य मान्यो जाओ छे। चर्चाएं थोड़ो सो विराम दा और सुनना जरूरी संदेश।

0: सुधारक और एक लेखक भी छा। यहाँ की यही विशेषता को जो कारण छ महाराज सरकार ने 28 मई के दिन स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाबा की घोषणा भी की। पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज सुमा ने स्नातक की पढ़ाई भी की। देश ही ब्रिटिश शासन से मुक्त कराबा के लिए सावरकर जी ने 1899 में मित्र मेला की शुरुआत की। जी 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी नाम दियो गया। 1906 में कानूनी पढ़ाई करबा के लिए वह लंदन गया, जहां फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ताकि विदेशा में रह रिया भारतीय छात्रा के बीच राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो सके। 1993 में सावरकर जी ने हिंदुत्व विचारधारा पर हिंदुत्व हुई जे हिंदू पुस्तक लिखी। 1857 की क्रांति के लिए लिखी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए सावरकर जी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे गयो। 1910 में नासिक का कलेक्टर जैक्सन की हत्या व अंग्रेजा का हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की साजिश रचबा का आरोप में सावरकर जी जेल भेज दियो गयो। वो पुस्तक लिखी। 1857 की क्रांति के लिए लिखी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए सावरकर जी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे गयो। 1910 में नासिक का कलेक्टर जैक्सन की हत्या व अंग्रेजा का हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की साजिश रचबा का आरोप में सावरकर जी जेल भेज दियो गयो। 1910 से 1937 तक वह जेल में ही रहा, जहां 1911 से 1921 तक सावरकर जी काला पानी की सजा के लिए अंडमान निकोबार की जेल में रखे, जहां पर सावरकर जी खूब यातनाएं दी गई। 1937 से 1943 तक सावरकर जी ने हिंदू महासभा को नेतृत्व किया। उसके बाद लंबी बीमारी का चलता 1 फरवरी 1966 में वह स्वेच्छा से अन्न जल त्याग कर 26 फरवरी 1966 में अंतिम सांस ली। सावरकर जी को आखिरी कथन छो कि जब आपनो जीवा को उद्देश्य पूरा हो जाओ और आपन समाज हित में योगदान देबा के काबिल न रहा तो स्वयं ही जीवन त्याग कर देनी चाहिए। भगत सिंह जी ने भी वीर सावरकर जी के लिए एक लाइन लिखी विश्व प्रेम का लेख में कि विश्व प्रेमी वह नायक छ जी आपन एक उग्र विद्रोह दृढ़ कहबा में जरा भी संकोच न करा। तो अच्छा अच्छा वीर सावरकर जी स्वतंत्रता सेनानी।
1: महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, अब बचाव संभव है।
2: अब ये कैंसर टाला जा सकता है, बस एक सही कदम,
1: सही समय पर अपनी 9 से 14 वर्ष की बेटियों को HPV टीका जरूर लगवाएं और उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और लंबी उम्र का आशीर्वाद दें।
2: ये टीकाकरण सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क किया जा रहा है।
1: आइए मिलकर बेटियों के स्वास्थ्य की रक्षा करें और सर्वाइकल कैंसर मुक्त भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।
2: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जनहित में जारी।
0: आज देश भर में ईद उल जुहा बकरीद धूमधाम से मनाई जाओगी। ईद उल जुहा पैगंबर हजर इब्राहिम द्वारा अल्लाह के प्रति दिखाए गए अटूट प्रेम, त्याग और समर्पण की याद में मनायो जाओ। आज को दिन त्याग और बलिदान को दिन छ। अपनी चर्चाएं तो यूं ही चलती रहेगी, बातें भी यूं ही चलती रहेगी, पर थोड़ा सो मनोरंजन करना और सुनना यो लोकगीत।

0: आज जो भागदौड़ भरी जिंदगी छे ना, उमा आज को इंसान सेहत सु बेखबर काम करतो जा रहे छे और परिणाम वश उके ताई सुगर, बीपी और दिल से जुड़ी बीमारियां ने घेर लियो। आज की भेंट वार्ता में डॉक्टर पुनीत गुप्ता जी अपने ताई हार्ट अटैक का खतरा सु कस्या बचा और अपनी जीवन से शैली आपन कस्या रखाई के बारे में बताओगा, तो सुन ला या भेंट वार्ता।
1: सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारे साथ हैं वो डॉक्टर पुनीत गुप्ता सर हैं, जो हमें बताएंगे कि कम उम्र में बढ़ते हार्ट अटैक के खतरे क्या क्या हैं, इनसे हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: सर, आजकल हम देख रहे हैं कि युवाओं में कम उम्र में ही हार्ट अटैक, साइलेंट अटैक और इस तरह के खतरे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके क्या कारण हैं, आप बताएं।
2: देखिए, इस चीज़ के काफ़ी सारे कारण होते हैं। यंग्स के अंदर सबसे पहला अपन लेके चले, कुछ हैबिट्स होती हैं यंग के अंदर, स्मोकिंग की हैबिट्स हुई, टोबैको हुआ, कुछ सब्सटेंस अब्यूजेज होते हैं जिनकी वजह से एक कारण ये रहता है। दूसरा कारण रहता है कि लोगों का आजकल का खान पीन जो है, डिसलिपिडीमिया की जो कंडीशंस होती है, हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया, हाइपरकोलेस्ट्रोलिमिया जो है, इनकी वजह से होता है। तीसरा कारण अपन करें बात तो कुछ होमोसिस्टिन का लेवल हो गया, का रेज होना। इसके अलावा कुछ जेनेटिक कॉजेज होते हैं, इसके अलावा जो है कुछ थ्रोम्बोटिक डिजीज होती हैं, कुछ प्रोटीन सी, प्रोटीन एस की डिफिशेंसी इनकी वजह से होती है। तो काफ़ी सारे ऐसे कारण होते हैं।
1: सर, ये तो आपने हमें कारण बता दिए। जब हमारे शरीर में अटैक या साइलेंट अटैक जैसी जो समस्या आती है, तो उसके कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं कि कुछ हमें आइडिया लगे कि अब हमारे शरीर में कुछ बदलाव आ रहे हैं।
2: देखिए, इसके अंदर आदमी को सबसे पहले जो है, जो अपने हार्ट अटैक के जो होते हैं सिम्टम्स, उसमें होता है कि घबराहट महसूस होना, चलते चलते घबराहट महसूस हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, सांस भरने लग रही है, किसी को चलते चलते पसीना आना, किसी को खाते खाते जो है पसीना आना, जिसको प्रोस्पेरेंडियल एंजाइना बोलते हैं। डायबिटीज़ के जो पेशेंट

0: कि जो भी आजकल जो समस्याएं हो रही है, अटैक हो, साइलेंट अटैक हो, या और भी बड़ी बीमारियां जो आजकल हम देखने और सुनने को मिल रही है, तो उनका खतरा कम हो सके।
1: देखो, इसके अंदर सबसे बड़ा है कि अपने लाइफ स्टाइल का जो है चेंज करना रहेगा। खान पीन को अपना चेंज करना है, हेल्दी फूड्स लें अपनी डाइट के अंदर। दूसरा, एक्सरसाइज को रेगुलर करें अपने। ऐसा नहीं है कि अपन को आजकल जो ट्रेंड है कि भाई जिम में जाके ये एक्सरसाइज करनी है। नॉर्मली जो है आपका 30 मिनट्स का जो है ब्रिस्क वॉकिंग भी सफिशेंट होता है। आप 7 दिन में अगर 5 दिन भी करते हैं तो ये सफिशेंट होता है। इसके अलावा स्मोकिंग्स की, कोई भी बैड हैबिट्स हो किसी भी तरह के नशे की, तो उनको छोड़ें। जो है एक्टिव लाइफ अपनाएं अपनी। खान पीन के अंदर ज़्यादा ऑयली, तला भुना मिर्च मसाले वाला खाना जो होता है उसको अवॉइड करें, हेल्दी फूड्स लें।
0: सर, आपने खान पीन का तरीका तो हमें बताया, लेकिन हमारी जो भोजन प्रणाली है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि भोजन, या फिर और भी भोजन से रिलेटेड हमारी जो प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए?
1: भोजन से रिलेटेड जो प्रक्रिया है उसके अंदर आपका जो सुबह का जो मॉर्निंग का नाश्ता है वो थोड़ा हैवी होना चाहिए। उसके बाद का जो अपना खाना होता है, दोपहर का जो लंच होता है, वो मॉर्निंग की तुलना में थोड़ा लाइट होना चाहिए। और नाइट का जो भोजन है आपका, सोने से कम 2 घंटा पहले आप करें और लाइट फूड लें उसके अंदर आप। क्योंकि सोने के अगर आप खाना खा के तुरंत आप लेटेंगे सोएंगे तो उससे आपको रिगर्जिटेशंस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए एटलीस्ट सोने से कम 2 घंटा पहले आप अपना जो है खाने को फिनिश कर लें। और आजकल के युवाओं में थोड़ा सा खान पान की वजह से ओबेसिटी का चलन चलता है, ज़्यादा फैटी फूड्स, बाहर का पिज़्ज़ा बर्गर, ये चीज़ें ज़्यादा हैं। तो इन लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करके अपने जो है सलाद के ऊपर ज़्यादा आए, स्प्राउट्स पे आए, हेल्दी फूड्स के ऊपर आए।
0: सर, ये तो हो गया हमारी अटैक, साइलेंट अटैक और हार्ट अटैक से संबंधित लक्षण, उपाय और उनके तरीके जीवन जीने के। अब इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे श्रोतागणों को या हमारी युवा पीढ़ी को क्या सलाह संदेश देना चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में?
1: मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश दूंगा कि सबसे पहला, किसी को अगर कोई नशे की आदत है, कोई स्मोकिंग करता है तो उनको छोड़े। किसी का वेट ज़्यादा है तो अपने वेट को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करें। बाहर का ऑयली फूड्स अवॉइड करें। अगर किसी को जो है परिवार के अंदर कोई शुगर या इस तरह की कोई जेनेटिक डिजीज है तो उनका टाइमली ही युवा लोग अपना ट्रीटमेंट लें। किसी भी तरह के कोई सिम्टम्स हैं उसको इग्नोर नहीं करें।
0: सर, आपने इस कार्यक्रम के
1: स्प्राउट्स पे आए, हेल्दी फूड्स के ऊपर आए।
0: सर, ये तो हो गया हमारी अटैक, साइलेंट अटैक और हार्ट अटैक से संबंधित लक्षण, उपाय और उनके तरीके जीवन जीने के। अब इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे श्रोतागणों को या हमारी युवा पीढ़ी को क्या सलाह संदेश देना चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में?
1: मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश दूंगा कि सबसे पहला, किसी को अगर कोई नशे की आदत है, कोई स्मोकिंग करता है तो उनको छोड़े। किसी का वेट ज़्यादा है तो अपने वेट को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करें। बाहर का ऑयली फूड्स अवॉइड करें। अगर किसी को जो है परिवार के अंदर कोई शुगर या इस तरह की कोई जेनेटिक डिजीज है तो उनका टाइमली ही युवा लोग अपना ट्रीटमेंट लें। किसी भी तरह के कोई सिम्टम्स हैं उसको इग्नोर नहीं करें।
0: सर, आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें और हमारे युवाओं को जो जीवन शैली बताई है बहुत ही अच्छी है, कि हमें भोजन नियमित समय पर लेना चाहिए, हमारी जीवन शैली में सुधार आना चाहिए। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।
1: धन्यवाद। नमस्कार।
2: तो अबार आपने ताई डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर अपनी स्वस्थ रहना चाहो और बीमारियां से बचना चाहो तो नियमित योगा करो और अपनी जीवन शैली पर ध्यान दो और संतुलित आहार लो। अब चला लोकगीत की आड़ी और सुन ला यो लोकगीत।

एक बार फिर से आप सभी को स्वागत छे ई कार्यक्रम में। और अब समय हो गयो जानकारी की बाता को। तो अब आ रोनी तपरी छे और लू का थपेड़ा भी चल रहा छे। तो अगर गर्मी और लू से बचनो छे तो एक तो शरीर में पानी की कमी न होबा देवा, और दोपहर 12 बजा सु लेर 4 बजा तई अगर जरूरी हो तो ही घर सु बाहर जावा। हमेशा सूती कपड़ा और फुल आस्तीन वाला होनी चाहिए जाए। थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीता रहा। शरीर ही ठंडो राखबा के लिए ओआरएस, नारियल पानी, छाछ, आम पन्नो, नींबू पानी को सेवन करता रहा। गर्मी में शादी मांडा भी ज़्यादा ही चला चा, तो ज़्यादा मांडा को झिम्बा सु भी बचा। ई मौसम में ज़्यादा मौसमी फल तरबूज, खीरा, ककड़ी खानी चाहिए जो जो शरीर में पानी की कमी ना होबा देवा। और अगर शरीर में चक्कर और तेज बुखार हो तो लू उतार लो और तुरंत ही डॉक्टर ही दिखावा।

बासु भी बचा। ई मौसम ज़्यादा मौसमी फल तरबूज खीरा ककड़ी खानी चाहिए जो शरीर में पानी की कमी ना होबा देवा। और अगर शरीर में चक्कर और तेज बुखार हो तो लू उतार लो और तुरंत ही डॉक्टर ही दिखावा।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: तंबाकू को सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक छ या बात अपन बखूबी जाना छा और फिर भी अपन ई खाबो न छोड़ा और एक जानकारी विस्तार से बढ़ावा और जागरूकता फैलावा के लिए ही हर साल 31 मई का दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनायो जाओ छ। और एक और दिवस मनायो जाओ छ माता पिता जो छ बच्चाओं को भविष्य निखारवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दे छ। माँ केवल शब्द कोई न बल्कि त्याग प्यार और बलिदान की मूर्ति भी छ। पिता सर को सायो छ। माता पिता का निस्वार्थ प्रेम ही उजागर करवा के लिए ही 1 जून का दिन माता पिता को वैश्विक दिवस मनायो जाओ छ ताकि सभी माता पिता को महत्व समझे और ई आधुनिक समय में बदलती जीवन शैली और बढ़ता वृद्धाश्रम की संख्या ही देखता हुआ संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 सु ही माता पिता वैश्विक दिवस मनावा की शुरुआत की गई। बीज नहीं उम्मीदा बोव आशावा का दीप समझोव मंद हवा को झरो का सु आशावा का दीप न बुझे माता पिता को सपनों पूरो करनो यही आपनो ध्येय बनावा। अब अनुमति दो आपकी रेडियो सखी शीतली फेर मलंगा नई चर्चा जानकारी और लोकगीता के साथ राम राम।

0: जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया। बैठक में प्रधानमंत्री ने 9 राज्यों में रेलवे, विद्युत और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत की बुनियादी सुविधाओं की 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के इस कार्यक्रम में कृषि और संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विषयगत चर्चाएं, राज्यवार भागीदारी तथा प्रस्तुतियां शामिल होंगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ मौसम के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। ये आयोजन खरीफ के मौसम की तैयारियों, कृषि उत्पादकता, मौसम की मार से निपटने के लिए जलवायु अनुकूल खेती, प्राकृतिक खेती, दलहन और तिलहन उत्पादन, डिजिटल कृषि और जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रदेश में भी घर घर कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है। राजधानी जयपुर की जामा मस्जिद सहित अन्य प्रमुख मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। इनमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे और देश में अमन चैन की दुआ की। मुख्य काजी खालिद उस्मानी ने सभी नागरिकों से त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भी त्यौहार का उत्साह देखा जा रहा है। भीलवाड़ा, बाड़मेर, पाली, करौली, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, झुंझुनू और चूरू सहित सभी स्थानों पर ये त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही पुलिस और प्रशासन ने नमाज के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये त्यौहार नागरिकों को मानवता और विशेषकर वंचितों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं देते हुए सभी की सफलता और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की है। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी परिपत्र जारी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव कल तक स्वीकार किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी और नौतपा के असर से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। दिन के साथ रात के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में 5 शहरों का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर का दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां आम नागरिकों के अलावा पशु पक्षी भी गर्मी और लू से बेहाल नजर आ रहे हैं।
1: भीषण गर्मी का असर लगातार जारी है। बुधवार को इस सीजन का सबसे अधिक तापमान 48 डिग्री दर्ज किया गया। भीषण गर्मी के चलते रात को भी लोगों को राहत नहीं मिल पाई। दोपहर के समय शहर की सड़कें सुनसान नजर आई। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था की गई है। लोगों को रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिल पाई। गर्मी के इस दौर में शीतल पेय और खाद्य पदार्थों की मांग में भारी इजाफा हुआ है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर।

0: भरतपुर में भी बढ़ती गर्मी की वजह से शहर में अघोषित कर्फ्यू देखा जा रहा है। जैसलमेर में प्रचंड गर्मी के साथ साथ बिजली कटौती भी जनजीवन को बेहाल कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी जिलों में अगले 2-3 दिन तक भीषण गर्मी और उष्ण रात्रि का दौर जारी रहने की संभावना है। वहीं पूर्वी जिलों में आंधी और बारिश से राहत मिलने के संकेत हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदलना शुरू होगा। कल से 31 मई के बीच जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में तेज अंधड़ और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। इसके चलते तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इधर राज्य सरकार भीषण गर्मी में आमजन, विशेषकर राहगीरों और मूक पशु पक्षियों के लिए पेयजल और छाया की व्यवस्था सुनिश्चित करने के पुख्ता बंदोबस्त कर रही है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने गत दिनों परिपत्र जारी कर सभी जिला कलेक्टर, स्थानीय निकाय और संबंधित विभागों को ग्रीष्मकाल के दौरान पशु पक्षियों को तेज गर्मी और लू से बचाने तथा उनके लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव ने कल शासन सचिवालय में पीपल के 11 वृक्षों पर दाने और पानी के लिए परिंडे बांधे। राज्य में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य इस अभियान से ज्यादा लोगों को जोड़ना और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसी कड़ी में सवाईमाधोपुर में आज CSR कार्यशाला आयोजित की जाएगी। जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में होने वाली इस कार्यशाला में औद्योगिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं और औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यशाला के माध्यम से इन इकाइयों और संस्थाओं को जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास से जुड़ी गतिविधियों में सक्रियता सहभागिता के लिए प्रेरित किया जाएगा। करौली में स्वच्छता और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पौधरोपण, गौ पूजन और रणगवा ताल पर दीपदान किया गया। जैसलमेर में स्वच्छता संरक्षण और जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए और पेयजल स्रोतों की साफ सफाई कराई गई। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। न्यू चंडीगढ़ में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम अंतिम ओवर में 196 रन पर ही ऑल आउट हो गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में शानदार 97 रन की पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में कल दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। ईद उल अजहा का पर्व प्रदेश भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। राज्य में भीषण गर्मी और नौतपा के असर से जनजीवन प्रभावित, 5 शहरों का पारा 46 के पार। और IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से शिकस्त दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए आपको सुनवाते हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम।

0: यसेर देसाई और पवनी पांडे की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे भैया जी सुपरहिट फिल्म का गाना। गीतकार और संगीतकार थे अमजद नदीम। आइए सुनते हैं यह संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सोहेल सेन रेखा भारद्वाज साथियों की आवाज़ों में डबल एक्सएल फिल्म का गाना। गीतकार हैं मुदस्सर अजीज और संगीतकार हैं सोहेल सेन।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी।

और आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश ड्रीम गर्ल 2 फिल्म से मीत ब्रदर्स और नेहा कक्कड़ की आवाज़ें कुमार के बोल और मीत ब्रदर्स की है तर्ज़।

0: विविक भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन,
2: बहुत ही बूढ़ा किसान

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहां भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा, मुंबई की तरफ जाने के लिए इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान की।

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे। महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते। तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते। हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इम्प्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्द्रशिर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहां से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी, क्योंकि आर्द्रशिर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्द्रशिर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहां से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने

और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमे

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म काफी कामयाब

सन 1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जून 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का था।

1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का था।

एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने। उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता दुबे को। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता दुबे। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में आके। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, और जो विविध भारती का जो पेनिट्रेशन जो रूरल में है वो शायद ही किसी भी दूसरे रेडियो चैनल का है। और चूंकि हमारे भारत के खुद गवर्नमेंट का है तो इसका जो सेल्फलेस वर्क है वो कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए गौरव की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया है आज।
0: क्या बात है, अपने बारे में सबसे पहले थोड़ा बताइए कि आप किस इलाके से आती हैं और मेडिकल की फील्ड में आप कैसे गई?
1: वैसे तो मेरा इलाका पूरा भारत ही है
0: जी,
1: लेकिन ऑफकोर्स मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ, और ऑफकोर्स बोरीवली ही नज़दीक में आपके स्टूडियो के पास। और चूंकि हम लोग का नेटिव प्लेस भदोही से है,
0: बनारस के पास
1: पहले बनारस होता था, अभी वो भदोही हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया। और थोड़ी पढ़ाई मेरी वहाँ पर भी हुई है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन न के बराबर था। तो आई एम फर्स्ट चाइल्ड टू डू 12th।

0: भदोही से है,
1: बनारस के पास।
0: बनारस के पास पहले बनारस होता था, अभी वो भदोही हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया। और थोड़ी पढ़ाई मेरी वहाँ पे भी हुई है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन न के बराबर था। तो आई एम फर्स्ट चाइल्ड टू डू ट्वेल्थ। उसके बाद जो भी पढ़ाई हुई, चाहे वो मेडिकल की हुई या हमारी जितनी पब्लिक वर्क है, वो डेफिनेटली हर एक चीज़ में पहला ही है। लेकिन मैं पहली नहीं हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे, हमारे दादाजी ने शुरू किया था सेवाश्रम इंटर कॉलेज, जो 1923 में बनी थी, और उसके माध्यम से, और आज एक डिग्री कॉलेज भी उस गांव में है जहाँ पे बीएड है, आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर्स हैं, ऐसे लोग वहाँ से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और देश भर में नाम कमा रहे हैं और कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ज़रूर मैं पहली थी, लेकिन आखिरी नहीं हूँ। और जिस तरह से काम हमारी संस्था, हमारी मेडस्केप इंडिया कर रही है, उसके इंस्पिरेशन से कई लड़कियाँ हर एक फील्ड में, इवन उस कॉलेज के लड़के भी, बहुत सारे देश को डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
1: जी, एक ऐसे परिवार से आप आती हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है, और मेडिकल फील्ड में आने के दौरान वो क्या फोकस था कि जिंदगी में आगे मेडिकल की दुनिया में क्या करना है?
0: पहले तो पता नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि डैड इतना जानकारी नहीं थी, बट उनके मन में अपने खुद के बाकी मेरे भाइयों को डॉक्टर बनाने की कल्पना रखते थे। और ट्वेल्थ के बाद अच्छे मार्क्स आए और वहाँ से थोड़ी ऐसी चेंज आई, एक्चुअली कैन से कि वहाँ पे एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आई मेरी फैमिली में, कि उन्होंने मेडिकल कराना चाहते थे और मैं पायलट बनना चाहती थी। तो डैड बोले कि आपको ड्राइवर क्यों बनना है, नीचे का ड्राइवर, ऊपर का ड्राइवर। और जब मैंने बोला कि आप पूछे कि आप क्यों बनना चाहते हो, तो उस टाइम क्या होता है, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से जो जो यूनिफॉर्म पायलट के होते हैं, जो लाइफस्टाइल होती है, वो आपको काफ़ी एज ए नो टीन एजर काफ़ी अट्रैक्ट करती है। तो ऑलवेज एक कल्पना थी कि हम ऐसा करें, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन डेफिनेटली डैड ने बोला वाइट, तो वाइट, तो पता चला एप्रिन भी वाइट होता है, और इमिडिएटली मेरा मेडिकल एडमिशन भी हो गया। तो वहाँ से एक नई दुनिया शुरू हुई, जो मेडिकल की, जो काफ़ी सीरियस स्टडीज़ और हार्ड वर्क, आज भी वर्ल्ड की सबसे टफ स्टडी में मेडिकल ही मानी जाती है। और जो कि आई थिंक अगर मेडिकल मैंने नहीं लिया होता और आज जो भी काम कर रही हूँ, उसका सारा स्वरूप जो स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली वही उसका एक ओरिजिन था। तो आई थिंक ईश्वर ने ज़्यादा बड़ी प्लानिंग की थी, मेरे छोटे आँखों से उस समय नहीं दिख रही थी, बट आई एम वेरी थैंकफुल और प्राउड कि मैं मेडिकल की।
1: आप रेडियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं, और जब आप मेडिकल कॉलेज से निकली तो क्या मिशन था आपके जहन में कि मुझे क्या करना है?
0: एक बहुत क्लियर था कि जो भी मैं करूं वो सेवा हो, ह्यूमैनिटी के ऊपर मेरा पहले से सेंसिटाइज भावनात्मक तरीके से, मुझे बचपन में ही पता था कि मैं पब्लिक के लिए काम करूंगी। मेडिकल ने वो जरूर रास्ता दिखा दिया जिसमें ये बता दिया कि आपको जो सेवा है, जो आपके मेडिकल के द्वारा बहुत बड़े स्केल में हो सकता है, तो वहाँ से शुरू ही। रेडियोलॉजी की ब्यूटीफुल चीज़ ऐसी है कि हमें सब दिखता है, हम डार्क में भी देख सकते हैं। एक जो शरीर पूरी तरह से नॉर्मल दिखता है, उसको स्कैन के द्वारा उसकी एबनॉर्मलिटी बता सकते हैं, कैंसर है या किसी भी तरह का, पेट में पानी भरा हुआ है या बच्चा है, ऐसा ब्यूटीफुल यू नो ब्रांच हमारा जो रेडियोलॉजी, आपको विजडम और एनालिटिकल पावर देता है, जो आपको देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब जब एक बार आप प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है, तो आप सॉल्यूशन पे भी उतनी गहरी से काम कर सकते हो। आई थिंक ये जो ब्रांच है वो टोटली मुझे लगता है बहुत ही ब्लेस्ड आइडेंटिफाइड है ईश्वर के द्वारा मेरे लिए, क्योंकि आज भी जो भी हम प्रॉब्लम देखते हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, हमारे आसपास हो, उसमें सोचने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन में भी काम करने की ताकत आई थिंक मुझे MBBS ने और रेडियोलॉजी ने दिया हुआ है।
1: क्या बात है, आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ इस कार्यक्रम का पहला गाना हम लेना चाहते हैं, तो बताइए आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा?
0: मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आशाएं।
1: ओह, इकबाल फिल्म का गाना है।
0: हाँ, ये मुझे बहुत पॉजिटिव फील कराता है, और मुझे लगता है कि ये हर एक कॉमन पर्सन से जुड़ी हुई सॉन्ग है और सबसे रिलेट होता है।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये आशाओं से भरा गाना हमने अभी सुना, और मैं जानता हूं कि रेडियोलॉजी की फील्ड में काम शुरू करने के बाद आपने बहुत अलग अलग तरह की मुहिम छेड़ी, जहां आपने डॉक्टरों के भले के लिए काम किया, गर्ल चाइल्ड के लिए काम किया और फिट इंडिया के लिए भी काम किया। तो ये जो आपकी मुहिम है, ये कहाँ से आपके जहन में आया? क्योंकि जो मेडिकल का आपका अपना प्रोफेशन है, ये आपको इतना बिजी रखता है कि बाकी कुछ सोचने का वक्त कैसे मिला आपको?
1: मैं 2007 में प्रोफेसर फॉर्मर APJ कलाम को मिली थी जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला था कि आपको, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो मुंबई में, हम राजभवन में मिले, तब उनका कहना था कि आपको कोई भी, मतलब जो स्पेशली जो भारत में सबसे मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ के प्रिवेंशन का, डिसीज़ प्रिवेंशन का, अगर आप रूरल हेल्थ में जाएंगे, मेरे गांव में भी जाएंगे, अगर मैं जाती हूँ 200 पेशेंट देखती हूँ, तो उसमें कई पेशेंट ऐसे निकलते हैं कैंसर के लिए निकलते हैं, एस्थमा के निकलते हैं, और स्किन के प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम। तो उनका मन था कि हमने एक न्यू इंडिया का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, 14 पिलर, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें काम करिए। और चूँकि आप डॉक्टरों के लिए काम कर रहे, क्योंकि मेरे बहुत सारे पहले ही 2011 में हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया है जो 21 मेडिकल बॉडी को एक साथ लाया, जिसमें हर स्पेशलिटी के लोग, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, डेंटल, आयुर्वेदा, फिजियो, ऑल केम टुगेदर।
0: इसका
1: तो
0: मकसद क्या था मेडस्केप इंडिया का?
1: ये एक ऐसा मिशन था कि सारे डॉक्टर हर ब्रांच

0: एक साथ आएं और होलिस्टिक जो मेडिकल है उस पे सहयोग दें और अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने रेडियोलॉजी का एक्सपर्टाइज करूँ, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है हार्ट के लिए काम करे, होम्योपैथिक प्रिवेंशन में काम करे या आयुर्वेदिक, जो सब एक साथ एकजुट कर आएं और अपनी विचारों को, और ऑफ कोर्स एक मेरा मिशन भी था सेव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ही बहुत बिजी रहते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई और भी सोशल वर्क करें जो उनके फील्ड के बाहर हो, तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा। 2008 में हमारा पहला सेव द गर्ल चाइल्ड शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल फिटिसाइड से शुरू हुआ था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ, ये सब जगह पे गर्ल चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत लो था 2008 में।
1: जी
0: तो उस विषय को, क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट थी, लोग सोनोग्राफी के लिए आते थे, तो पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी मदर हैं, ऑलरेडी जिनको बेटी हैं, वो जरूर पूछती थी कि डॉक्टर मेरा बच्चा क्या है। तो डेफिनेटली वो मुझे इंटरनली, क्योंकि आप खुद लड़की हो, उत्तर भारत से हो, आपने वो लड़कियों की ज़िंदगी देखी हुई है,
1: जी
0: तो आपके मन में था कि आप अपने इस पर्टिकुलर नॉलेज को लोगों को एजुकेट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो मेडस्केप का भी एक बड़ा रोल है कि वो डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके पेशेंट जब आते हैं तो उनको किस तरह से उनका माइंड पॉजिटिव करे, गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट्स बताएं, गवर्नमेंट्स के प्लान बताएं।

0: चीज़ें अवेलेबल है जो स्पॉट पे उनको इम्पावर करती है। पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप डरते थे कि एजुकेशन नहीं हुआ, अगर ज़्यादा एजुकेशन हुआ तो उनके एज की लड़का
1: शादी की
0: मिलेगा
1: दिक्कत
0: कि
1: आएगी।
0: हाँ मिलेगा कि नहीं, फिर मिला तो घर अच्छा है कि नहीं, तो उनके कई सारे क्वेरीज थे। बट जिस तरह से एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, उससे एटलीस्ट पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी को परिवार नहीं मिला, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बिकॉज वो एजुकेटेड है, आज भी मेरा मॉरल सपोर्ट रहेगा। बट
1: बिल्कुल
0: उस टाइम नहीं था, जब जो एरा में मैंने जो देखा था एज अ चाइल्डहुड, कि जो लेडीज़ थी वो ज़्यादातर आपको हाउस होल्ड वर्क की ट्रेनिंग देना चाहती थी ताकि आप अच्छे से लोगों को संभाल सको, क्योंकि उनका मानना था कि पेट के द्वारे दिल पे राज करते हैं, उनके मन में ये था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुकिंग हाउस होल्ड वर्क को दिखाते थे। ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इक्वली 360 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे हाउसहोल्ड भी आपको देखना है, एटलीस्ट मैनेज करना है आपको, आपको करियर भी देखना है, आपकी फैमिली भी देखनी है, और आपका कोई मिशन है। वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने को उस तरह से प्रिपेयर करते हो, एजुकेशन से, स्किल से, इन्वॉर्मेंट से, सपोर्ट से। तो आई थिंक दैट इज चेंज टूडे।
1: जी, इस संस्था को बनाने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए, खासतौर पर एक्सपर्ट्स को जोड़ने के लिए, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
0: कोई भी रास्ता है वो कभी इजी नहीं होता है। इवन हम घर पे भी अगर एक डिनर भी होस्ट करते हैं तो उसमें कई प्रिपरेशंस होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, बट एंड रिजल्ट बहुत स्मूथ लगता है। तो मुझे ऐसा मानना है कि जब आप संस्था बनाए थे तो डेफिनेटली वो एजुकेशनल और मेडिकल हेल्प के लिए बनाया था, बट वो धीरे धीरे पूरे जो दायरा है मेड्सकेप इंडिया का, वो पूरी मैसिवली मेजर इशू जो भी महसूस हुआ गर्ल चाइल्ड का हुआ, तो आज हम एजुकेशन पे काम करते हैं। शुरू किया था फीमेल फिटिसाइड से,
1: जी
0: स्किलिंग से, बहुत सारे हेल्थ के, बट नाउ टुडे वी आर स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। वो कोविड से शुरू किया है, फिर हमारे वी डॉक्टर्स कैंपेन था जो कोविड-19 में काम कर रहा था, और पूरे देश के 17 स्टेट में हमारे मेडिकल के सपोर्ट चल रहे थे। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, टेली आईसीयू पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे थे। 60% जो डेथ था वो रिड्यूस हुआ टेली आईसीयू डालने के बाद। फिर हमारा फिट महाराष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रोग्राम हुआ जो स्पेशली हेल्थ और फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हुआ, और फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल भी हुआ। और ये मकसद इसलिए था कि जब हम कोविड में वो 2-3 साल जो डिप्रेशन, जो हमारे जो लॉसेस हुए, हमारे जो मेंटल स्टेटस था, हमारी पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल, उसमें ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि अब नेगेटिविटी जा रही है, बलून रिलीज किया, सारे अपके वर्ड्स लिखे, और पॉजिटिविटी गेटवे ऑफ इंडिया के से आ रही है। ऑफकोर्स पूरी सीएम से, डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर, सारे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन जो टेली आईसीयू टेलीमेडिसिन का था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था।
1: क्या बात है।
0: तो इसी तरह से हमारा फिट इंडिया भी प्रोग्राम है जो 2014 में शुरू हुआ, पायलट
1: जी
0: प्रोजेक्ट, और फिर उसमें 5 पिलर, ऑफकोर्स कलाम साहब को हमने एज अ मेंटोरिंग, एज अ गाइडेंस रखा। उनका इतना सिंप्लिसिटी था और देश के लिए जिस तरह से सोचते थे, मुझे कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि आप सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के लिए क्यों कर रहे हो, मेड्सकेप नेशनल अवार्ड लाए हो, हैंड राइटिंग कैंपेन डॉक्टर्स का कर रहे हो, इतने सारे डॉक्टरों के लिए ही आपके ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वाई डोंट यू थिंक अबाउट 126 बिलियन पीपल, आप उनके बारे में सोचिए। तो आई थिंक वही एक फिट इंडिया का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हम लोगों के द्वारा, और
1: उन्होंने एक तरह से विस्तार दे दिया।
0: हाँ उन्होंने दिया, एक्चुअली मिशन दिया, एक शब्द दिए कि कभी भी आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कितने भी हुए बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वही जो डॉक्टर आज के देश में हैं वही 140 बिलियन को केयर कर रहे हैं, उसी के सहारे पूरा देश हमारा हेल्दी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हमारी खुद की ब्रांच हो। तो आई थिंक एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया कि एक विचार को उन्होंने एक पिलर बनाया, जो हमारी 5 पिलर, जैसे उन्होंने 14 पिलर बनाया, तो उनसे इंस्पायर करके हमने 5 पिलर प्रोग्राम फिट इंडिया का है।
1: जी, फिट इंडिया के बारे में और भी बात करेंगे। यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं।
0: जीतेंगे जीतेंगे ये एक गाना है जो बहुत इंस्पायर्ड करता है, और उसमें हमारे देश की जो एनर्जी है और जो पॉजिटिविटी है, इस गाने में मुझे महसूस होता है, जब भी आप देखते हो अच्छा फील होता है, सुनते हो तो भी अच्छा फील होता है। इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स क्रिकेट लीग में वो गाना बहुत बार बार बजता रहता है।
1: अच्छा,
0: हमारे 2012 से हमारा डॉक्टर्स क्रिकेट लीग भी है, अक्रॉस इंडिया डॉक्टर्स उसको प्ले करते हैं।

3 से 3,500 डॉक्टर, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी है, और 2 साल से तो इंटरनेशनली भी हो रहा है, नेक्स्ट हमारा मलेशिया में है, लास्ट ईयर दुबई में था, तो जीत भी रहे हैं. तो आई थिंक जीतेगा वो, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है गाना, आप उसे प्ले कर सकते हैं.

भाई 83 फिल्म का ये गाना हमने सुना जो भारत की जीत की बात करता है, और आप फिट इंडिया कैंपेन चला रही हैं और उसके अलावा ढेर सारे कैंपेन आप अलग अलग चला रही हैं, तो मुझे इसके बारे में और दूसरे कैंपेन के बारे में भी बताइए कि उनके ख्याल किस तरह से आए और कैसे आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया।

0: देखा तो पता चला, सीपीआर किया, थोड़ा स्टेबल हुआ, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस एशियन हॉस्पिटल में लेके गई तो उनकी जान बच गई। आईसीयू ने बोला आपने राइट ली, उनको सीपीआर दिया। दो बार फ्लाइट में भी हुआ, एक इंडिगो फ्लाइट में हुआ, एक और फ्लाइट में हुआ जो दिल्ली से आ रही थी, तो एक पेशेंट कोलैप्स हो गया। तो नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर ऑन बोर्ड फ्लाइट में, तो जब अनाउंस किए तो उसमें मैंने जाके उनको सीपीआर किया, वो स्टेबल हुए। फिर इनफैक्ट दो और पेशेंट की हालत ख़राब हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि थोड़ी पैनिक हो जाता है
1: बिल्कुल
0: ना
1: बिल्कुल
0: फ्लाइट में, थोड़ी पैनिक हो जाता है। तो सीनियर सिटीजन को हुआ था, तो वो भी एक जान बचाए। जब फ्लाइट रुकी तो उसको एम्बुलेंस आई, लेके गई। अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली बैंगलोर जा रही थी, तो वहाँ पे भी जब रनवे शुरू हुआ तभी एक पेशेंट एक लेडी के साथ थी, वो कोलैप्स हो गया, सडनली गिर गए। तो फिर वही होता है ना, डॉक्टर ऑन बोर्ड, तो डॉक्टर सुनीता दुबे गए और उनको सीपीआर किया, स्टेबलाइज किया। और लकली क्या था, रन पे ही था तो उसको रुका गया और पेशेंट को शिफ्ट किए घाटकोपर में, ही वॉज स्टेबल लेटर ऑन। तो
1: लेकिन ये
0: अगर
1: कितनी जरूरी है, आपने इतनी सारी घटनाएं बताई कि किस तरह से आपने इमरजेंसी में सीपीआर देके लोगों की जान बचाई। आम जनता के लिए ये अवेयरनेस और ये करते आना, ये सीखना कितना इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आप क्या कर रही हैं?
0: पहले तो कि जो सीपीआर ट्रेनिंग था हमारा, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने कई सारे बच्चों को, लिटिल डॉक्टर स्कूल में जो करते हैं बच्चे, अगर सीख लेते हैं, एक बच्चा सीखता है 20 को और सिखाता है, तो हम उसको लिटिल डॉक्टर बनाते हैं। उससे में हमारे दो फायदे होते हैं, एक तो डॉक्टर इंस्पायर होता है कि हाँ मैं लिटिल डॉक्टर हूँ।

0: फेल्स। तो यू नो उस टाइम जो इसका है, तो अभी हमने मिशन निकाला हुआ है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहिए कि वो पहला लाइफ सेवर डिक्लेयर हो वर्ल्ड में। तो डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट में भी कई चिट्ठी लिखी हुई है, आज से नहीं 2014 से, तो अभी लास्ट फ्यू ईयर से, जैसे मनसुख मांडविया थे उन्होंने भी एक्टिवली इस मैटर को लेकर CPR किया, हमारे पास फोटो आए, अभी करंट जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी CPR किया, उसके पहले डॉक्टर भारती थी वो भी MOS की मिनिस्टर थी, तो कई लोगों ने CPR को एक्सेप्ट किया। और प्लस मेरी हर प्रोग्राम में CPR स्टेशन होता है,
1: जी जी
0: तो ये सर्टिफाइड प्रोग्राम है, हार्डली 5 मिनट लगता है उसको एक्सप्लेनेशन के लिए, आप कभी भी कार्डियोलॉजी से ऑनलाइन सीख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली करने के लिए आप इसको 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है, और एक बार सीख लिए तो आप साल में एक बार और रिपीट कर सकते हैं। अगर आप लाइफ में एक भी जान बचा पा रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता
1: कंट्रीब्यूशन
0: है।
1: बिल्कुल
0: और अगर हमारे देश में, अगर देख पहले 2% ही था और हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक 25% हमारी पॉपुलेशन को CPR आनी चाहिए,
1: जी
0: तो वो एक अच्छा मकसद है। एक ज़माने में, मैं 2000 की बात कर रही हूँ, कि कार्डियोपल्मोनरी रिसैसिटेशन बोलने के लिए लोगों को डिफिकल्ट जाता था, CPR क्या है बहुत एक्सप्लेन करने के लिए टाइम जाता था,
1: जी
0: लेकिन चाहे वो मेरा खुद मेडिकल, मेरी कम्युनिटी हो या पुलिस हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर एक एम्प्लॉई हो, वॉचमैन हो, आज लोग इजीली बोल पा रहे हैं कि CPR

0: लिखे थे, तो वो ऐसा गाना था कि बच्चे पेट में से बेटी बोल रही है, 2008 की कल्पना सोचिए कि 2008 में बोल रही है कि मेरी माँ मुझे बचा टाइप, सुनो ऐसे गाना था। सो अभी जो, क्योंकि वो गाना किसी न किसी रिसोर्स की कमी की वजह से नहीं बन पाया, तो जब ये 2026 में बना तो ये टोटली स्टेडियम सेलिब्रेटिंग सॉन्ग था।
1: वाह वाह,
0: और बेटियों का जयकारा जो बेटियों के अचीवमेंट्स को दर्शाता है और लोगों को बताता है कि अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पे आपकी बेटी अपनी काबिलियत को न साबित करे और सिस्टम का स्ट्रॉन्ग पार्ट न होते। बहुत
1: वाह,
0: सेलिब्रेटिव सॉन्ग है जिसको हम लोगों ने मिलके बनाया हुआ है। समीर इसमें शान जी ने भी गाया, कई सारे लोग इस गाने को आवाज़ दिए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप इसको ज़रूर प्ले करिए।
1: बिल्कुल।

0: 26 और यहां से आगे की यात्रा है, इसमें आपका फोकस क्या है, किन चीजों पर आप ज्यादा काम कर रही हैं?
1: वैसे फिट इंडिया में भी कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट का था, बट एज आई सेड कि रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ को यूट्राइन कैंसर था, तो आई वॉज एबल टू डिटेक्ट अर्ली. तो उनका यूट्रस निकाला, रोबोटिक सर्जरी हुई और वो आज एक हेल्दी और फिट एंड फाइन है. सिमिलरली मेरे फादर को भी रिसेंटली कैंसर हुआ, बट वो आए बहुत लेट, उन्होंने ओवर लुक किया. सो आई एम वर्किंग ऑन अ तारा कैंसर. सो ये एक तारा कैंसर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है डॉक्टर्स डे पे, और पूरा ये प्रोग्राम इस कमिंग डॉक्टर्स डे पे आएगा, जिसमें हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लेके प्रिवेंशन, अवेयरनेस. और आप देखे होंगे, आज मैं सुबह भी जब सोनोग्राफी कर रही थी, आज एक मैमो सोनोग्राफी सुबह में, 3 पेशेंट थे जिसमें 2 को सीए था, तो वो जो लेडीज थी उनको पता नहीं था कि मैं बाद में जाऊंगी, अरे कैसे, यू नो, लाइक अभी भी वो स्टिग्मा है
0: जी.
1: जब तक बड़ा गांठ नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ इशू नहीं हो जाएगा और तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, तब तक आते नहीं है लोग कैंसर के मामले में. तो ये अर्ली डिटेक्शन से लेके, और कभी कभी पैसे के वजह से भी पेशेंट नहीं आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसकी कल डायग्नोसिस हो जाए, अगर उनका रिपोर्ट आ भी जाता है और डायग्नोसिस हो भी जाता है, तो भी पेशेंट उसको छुपाते हैं. वो सोचते हैं कि मेरी इस ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली पे बर्डन होगा. पर मेरा आप लोगों को ये बोलना है कि आपको कोई भी बीमारी छुपाने के बदले में डिटेक्शन करनी चाहिए और डॉक्टरों के पास जानी चाहिए, न कि यूट्यूब से, तांत्रिक के पास और यू नो गूगल के पास. ये सब आपकी ट्रीटमेंट का जरिया नहीं है. आपको खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी खुद का. मैंने माना है, जो मेरे महसूस में हुआ है, कि जो आपका जो शरीर है वो आपका एक्चुअल में मंदिर है. हम बाहर जाते हैं पूजा करने के, लेकिन ये आपका शरीर ही ईश्वर ने दिया है, जिसको आपको, आपकी जो आत्मा है वो आपकी भगवान है. तो आत्मा के बारे में आपको सोचना है और उसकी पूजा के लिए, जो उसके आसपास जो ईश्वर ने शरीर दिया है, चाहे वो लीवर हो, आपका किडनी हो, या आपका पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, या एनी बोन, एवरीथिंग, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है. तो आपको उसको अर्ली डिटेक्शन, समय समय पे जांच करना, और शरीर आपका संकेत देता है बीमारी का, और आपको भी मालूम है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है. और ये संकेत को अनदेखा मत करिए अपनी जिम्मेदारियों के सामने, कि नहीं नहीं आज मेरे बेटे की शादी हो जाए तब मैं ये करूँगी, अरे मैं उस जगह जाऊँगी उसके बाद करूँगी. कि मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि आज रिसेंट जो सुबह की पेशेंट थी, मुझे बोली कि मैंने उनको बोला कि यू हैव अ लम्प, उनका 3 सेंटीमीटर का वैस्कुलर लम्प था. तो मुझे बोलती नहीं नहीं अरे मुझे तो गांव जाना है, मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगी, तब मैं बायोप्सी करूँगी, तब मैं ये करूँगी. मुझे 5-10 मिनट उनकी यही बात चली. तो पूरे उसमें उनके हेल्थ का कोई उनका रोल नहीं
0: था, प्रायोरिटी नहीं थी,
1: प्रायोरिटी नहीं दिया था उन्होंने. वो सिर्फ बोली थी, अरे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था, अब मैं गाँव जा रही हूँ 6 महीने के लिए, तो ऐसे ही जाँच कर लिया. तो यू नो बहुत सारी चीज़

0: अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को टच करना है, गांठ देखना है, कुछ गड़ तो नहीं रहा है। अगर कुछ लगता है फिर आप क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाइए। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप किसी झोला छाप या किसी वर्बल या मेरे पास होता था किसी लेडी की बात में, या जिसको जानकारी न हो, मेडिकल मॉडर्न जानकारी न हो स्पेशली आई एम टेलिंग, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए।
1: आजकल तो क्या हो रहा है कि लोग बहुत सारी रीलें देख लेते हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की मदद या इंटरनेट पर कुछ देख लिया और अपनी डॉक्टरी खुद कर ली। ये बेहद खतरनाक है।
0: ये बहुत खतरनाक है। अब एक अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट हमारी आई थी, उसको पेट में दर्द था, तो उसने गूगल किया कि मेरे को फोटो उसने गूगल में डाल दिया चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी ने बोला उसको कि भाई ये एरिया में यहाँ पे आपका किडनी आता है और आपको किडनी का और वो ओबेसिटी की मेडिसिन ले रही थी, एक मेडिसिन ले रही थी ओबेसिटी, कुछ हर्बा लाइफ ले रही थी, तो उसको एक्चुअली किडनी का कैंसर था।
1: ओ
0: लेकिन
1: गॉड,
0: उसने अपना गूगल इलाज ऑलमोस्ट 6 महीने 7 महीने किए, और जब आई तो काफ़ी टॉक्सिक थी, अभी तो टाटा में भेजा हुआ है। बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग होते हैं, वो जो सोशल मीडिया होता है वो एल्गोरिदम पे चल रहा है, वो नंबरिंग पे चल रहा है, वो एक सोल्ड इन्फॉर्मेशन है। ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अगर आपको गाइड करते हैं तो, और जब तक आपका डॉक्टर आपको क्लिनिकली न देखे और आपको इन्वेस्टिगेशन आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हो उसके हिसाब के आपको जांच न कराए और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत इम्पल्स जरूर आता है कि हम रील इतना एडिक्टिव है, इट इज़ सो एडिक्टिव एट टाइम यू फॉरगेट, टाइम सेंस भी खत्म हो जाता है। बट दीज आर थिंग्स आर मार्केट एंड यू हैव टू यूज़ इट इन अ पॉजिटिव वे। आपको ये सब चीज़ जो अवेलेबल है देश में, गूगल है या फिर इंस्टा है, वो पॉजिटिव चीज़ उसकी यूज़ करनी चाहिए, न कि उसको पूरी तरह से फॉलो करके मिस डायग्नोस करके। क्योंकि आज भी जब हम बैठे रहते हैं तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिख रहे हैं कि अगर आप गूगल के डॉक्टर से आ रहे हो तो तुम्हारी फीस 6 बार ज़्यादा है, मतलब एज अ

0: जो पेशेंट है भारत के, वो जुगाड़ू पेशेंट है, उनको हर जुगाड़ आता है। इवन मेरी मम्मी या मदर इन लॉ, अगर मैंने उनको एक बार पेट की दवाई दर्द की दी है, तो नेक्स्ट टाइम मैं गांव में गई तो आधी गांव वो पेट की दवाई दर्द में खा रही थी,
1: सेम दवा।
0: हाँ, सेम दवा। सो ये बहुत ही कॉमन इशू, ये मेरे ही घर की नहीं है, हर घर की है।
1: क्योंकि
0: उनके घर में डॉक्टर है तो उनको पता है कि हाँ ये पेट दर्द का है, ये उल्टी का है, और ये यू नो दर्द का है, तो वो फिर भी थोड़े डायग्नोस्ड एरिया में जा रहे हैं। बट मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से दवाई बची हुई है, एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं पेशेंट, क्योंकि अरे उसमें पैसा गया हुआ है, उससे मोह है। तो ऐसी बहुत सारी डेली बेसिस पे हमारे पास एज अ डॉक्टर केस आता है कि यहाँ पे ये दवाई खा ली और कॉम्प्लिकेशन हो गया। और हॉस्पिटल में जब स्टेज देखा है मैंने डॉक्टर पेशेंट का, उनके ऊपर सारी दवाइयाँ फेल हैं, क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बना ली है। और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट, उस टाइम आपके ऊपर कोई दवाई नहीं काम कर रही, क्योंकि आउट ऑफ द यू नो काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके यू नो कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गन्स पे डैमेज करके चली आई है।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता। और यहाँ एक और गाने की जगह है, और मुझे अंदाज़ा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है और एक गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं।
0: मेरे डैड बचपन में काफ़ी

0: डॉक्टर है तो उनको पता है कि हाँ ये पेट दर्द का है, ये उल्टी का है, और ये यू नो दर्द का है, तो वो फिर भी थोड़े डायग्नोस्ड एरिया में जा रहे हैं. बट मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से दवाई बची हुई एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं पेशेंट, क्योंकि अरे उसमें पैसा गया हुआ है, उससे मोह है. तो ऐसी बहुत सारी डेली बेसिस पे हमारे पास एज अ डॉक्टर केस आता है कि यहाँ पे ये दवाई खा ली और कॉम्प्लिकेशन हो गया. और हॉस्पिटल में जब स्टेज देखा है मैंने डॉक्टर पेशेंट का, उनके ऊपर सारी दवाइयाँ फेल हैं, क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बना ली है. और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट, उस टाइम आपके ऊपर कोई दवाई नहीं काम कर रही, क्योंकि आउट ऑफ द यू नो काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके यू नो कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गन्स पे डैमेज करके चली आई हैं.
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता. और यहाँ एक और गाने की जगह है, और मुझे अंदाज़ा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है और एक गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं.
0: मेरे डैड बचपन में काफ़ी

0: तो उस पे भी काम करती हूँ. एंड आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग और लिसनिंग. सॉन्ग तो ज़्यादा नहीं है बट चॉइस ऑफ सॉन्ग है. बहुत रेयरली आई वॉच मूवी विद माई फैमिली. बहुत रेयरली, अगर पूरी फैमिली देख रही है तो ही मूवी. मैंने टीवी कभी देखा ही नहीं एज अ चाइल्ड. ऑल्सो
1: अच्छा जी
0: कभी टीवी देखा नहीं. ज़्यादा आउटस्कर्ट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी पढ़ना पसंद नहीं है बिकॉज दे डिस्टर्ब मी.
1: जी बिल्कुल। तो इन सारी गतिविधियों से आप अपना वक्त निकालती हैं। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ये डॉक्टर्स डे पर आप कुछ और चीज़ें लॉन्च करने जा रही हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, क्या तैयारियां हैं आगे की, क्या मिशन है?
0: इस साल ये डॉक्टर्स डे दिल्ली का ही प्रोग्राम है. हर साल दिल्ली में ही होता है. पिछली बार विज्ञान भवन में हुआ, कॉन्स्टिट्यूट क्लब में हुआ. अभी ये 1 जुलाई को होगा दिल्ली में. और इस प्रोग्राम में कैंसर एक हमारा बहुत बड़ा फोकस्ड एरिया है और सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर जो चल रहा है नेशनल हमारा बिल उसके बारे में. और कई एमिनेंट अक्रॉस वर्ल्ड लोग आने वाले हैं इसमें. और क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोग्राम है इसमें आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एक जो

0: अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवान।

0: जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।

कैलाश खेर का लिखा ये गीत था झूमेरे एल्बम से। गीत और संगीत थे कैलाश खेर के और आवाज भी थी कैलाश खेर की। आप सुन रहे हैं रंग तरंग।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में अमर अकबर एंथनी फिल्म की ये कव्वाली आपने सुनी। आनंद बख्शी के लिखी ये कव्वाली थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

0: कि कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवान।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: बटवारा फिल्म का ये गीत था अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति का गाया, हसन कमाल के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई करियर।
2: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
3: नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिसे हमने आकाशवाणी की मुंबई केंद्र से रिले किया था। FM 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 12 बज रहे हैं। आई बाप को सुनवाते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आज आप सुनेंगे इसकी कड़ी संख्या 1294।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
3: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
3: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की, और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
3: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया, और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
3: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
3: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है, है ना, रजनी और गंधा
2: जी। चलिए श्रोताओं, इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि, और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है
3: जी। दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है
2: जी।
3: इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
3: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी

0: जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
1: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है, जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
0: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
1: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
0: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
1: जी।
0: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
1: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
0: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
1: भला वो और क्या बात है?
0: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
1: जी, ये बात तो है।
0: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
1: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं, इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
0: जी
1: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
0: जी,
1: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
0: जी अजीत जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतीकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमेह देश हमारा,

0: भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
0: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में

0: साइन कर दीजिए।
1: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखूं तो।
2: माँ, माँ, लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
1: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
2: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखूं तो।
1: हाँ।
2: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं एक महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
3: अरे वाह,
1: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
3: ऐसे नहीं, बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
2: अरे योगेंद्र,
1: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
2: माँ,
3: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
1: हाँ हाँ, जरूर बेटा, जरूर। ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
3: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
0: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
4: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
0: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
4: अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
0: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी, क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
4: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
0: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000

0: 1000 फुट की ऊंचाई पर थी।
1: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनके प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
2: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
3: जी साहब, जी साहब।
2: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
3: चलो साथियों।
1: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।

0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत चार पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
1: कालिका माता की जय!
2: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने चार और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी, यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को

0: यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु। ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। आलेख अजीत होरो। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग
4: उमंग। अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से। मनोरंजन के लिए आई आपको सुनवाते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम।

0: फिल्म का गीत था, और इसके पहले आपने सुना जानवर फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अभी आप सुन रहे थे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। दिन के 1 बजने को है कोचीपोल में हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा क्षेत्र के श्रीरामपुरा गांव के पास हुई। इस घटना में पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी, उनकी मां, पत्नी और भांजी की मौत हो गई। चारों के शव स्कॉर्पियो में बुरी तरह जले हुए मिले। हादसे के बाद पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल सहित पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच जारी है। प्रदेश में नौतपा के दौरान सूरज आग बरसा रहा है। सभी शहरों में बढ़ते तापमान और लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिन के समय सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा दिन का तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड हुआ। पिलानी में 47, जोधपुर में 46.6, जैसलमेर और चूरू में 46.4, कोटा में 45.4, बाड़मेर, फतेहपुर शेखावाटी में 45, अलवर में 44.8 और लूणकरणसर में 44.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार दोपहर बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। श्रोताओं, अब से शाम 5 बजे तक आप आनंद लीजिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का।

राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थीं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। श्रोताओं, पहाड़ों की सैर को लेकर आप अपनी बातें, आप अपनी यादें, या फिर अगर इस बार भी आप गए हैं घूमने के लिए तो वो बातें भी हमसे साझा कर सकते हैं। और ये तो बताइए कि पहाड़ों की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार, आज की इबारत पर्वतीय क्षेत्रों के नैसर्गिक सौंदर्य का विहंगम चित्रण है। सफेद

विश्वजीत और आशा पारेख पर फिल्माया गया ये गीत था मेरे सनम फिल्म का। मोहम्मद रफी की आवाज़ में मंजूर सुल्तानपुरी के बोल थे, उपेन अय्यर का संगीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने पिछले गीत के लिए लिखा है कि गीत और संगीत रविंद्र जैन के थे। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि गर्मियों का ये मौसम चाहे कितना भी तपन से भरा हो, मगर हम सबके मन में कभी न कभी बचपन की वो गर्मियाँ बसी रहती हैं। इन भरी गर्मियों में पहाड़ का हुस्न देखा है कभी, जब सारी दुनिया सूरज के ताप से हैरान परेशान होती रहती है, वो अपनी जगह पर अडिग अचल खड़ा रहता है। यही हुस्न है पहाड़ों का, इसमें बड़ी गहराई छुपी है। खेत में फसलों के बीच बनी पगडंडी से लगा गांव और वहाँ के लोगों की सादगी, सब कुछ मनमोहक स्मृति का वो छोटा सा आंचल जहाँ पहाड़ है, गांव है और कुछ ऐसी ही बातों की यादों में आज भी मन डूबा रहता है किसी परदेसी की याद में। जी हाँ, ऐसा तो है श्रोताओं। और जब आपने इन जगहों की बात की है तो एक बात आप ज़रूर बताएं कि क्या पहाड़ों की सैर ज़रूरी है या फिर कहीं कभी कभी घूमना फिरना ज़रूरी है? अगर है तो क्यों है? और आज के कार्यक्रम में जो गीत हमने सजाए हैं उसमें एक बड़े प्यारे से एक गीत है, उसमें बड़े प्यारे से एक गांव का नाम आता है जो सर्द वादियों में है। तो उस गांव को अगर आप पहचान सकें तो क्या ही बात है। और आपको बताना है कि ये जो गीत आपको हम सुनवा रहे हैं इसमें एक ख़ास तरह की नाव है, कश्मीर में इसे क्या कहते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि प्रकृति का सानिध्य, हरी भरी पहाड़ियाँ और वहाँ का सादगी भरा मासूम सामूहक लोक जीवन, उन लोगों की छोटी छोटी वाजिब इच्छाएँ, मनोकामनाएँ, मेहमान नवाजी करते करते प्यार

पूरी तरह समर्पित हो जाना, परदेसियों से दिल के रिश्ते जोड़ लेना, ऐसी दिलकश बातों का सुंदर वर्णन इस परिच्छेद में किया गया है जो इन गांव के लोगों की तरह मन को मोह लेता है। तो आपका मन किसने मोह लिया श्रोताओं, जब आप गए ऐसे किसी जगह पर घूमने के लिए? और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि रेडियो की हर शय का इतना ही फसाना है, एक विविध भारती सुनना है, दूसरों को सुनाना है।

एसएच बिहारी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, काश्मीर की कली फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज़ में। ये जो छोटी सी नाव दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं, श्रोताओं हमने आपसे पूछा कि इस नाव को क्या कहते हैं, क्योंकि कश्मीर की बोलचाल की भाषा में इस नाव को कुछ अलग ही कहते हैं, यह आपको बताना है। और कश्मीर के बड़े सारे सुंदर सुंदर जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जो हाथ की बुनी हुई होती हैं, क्या आपने उनमें से कोई चीज़ खरीदी है, या ऐसी जगहों का यानी पहाड़ी अंचलों का कोई मेला आपने देखा है। कुछ एक यहाँ के पारंपरिक पहनावे होते हैं, जैसे केदारनाथ की सुंदर घाटियों की अगर हम बात करें तो वहाँ कुछ गांवों में लवा, पगड़ू या फिर ट्रेडिशनल ज्वेलरीज की अगर बात करें तो बुलाक, गुलबंद, तो इस तरह की कोई चीज़ क्या आपने इन जगहों से कभी ख़रीदी है। वैसे हमें ख़रीदना तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हाथ से बनी हुई होती हैं और इन चीज़ों को ख़रीदने से हमारे दिल को एक खुशी तो मिलती ही है, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को जो रोज़गार है वो भी मिलता है, क्योंकि ये चीज़ें बनाना इनका एक घर का कह सकते हैं कि पारंपरिक रिवाज सा हो जाता है, जो इनका इनके जीविकोपार्जन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक श्रोता लिखती हैं कि आज मौसम पहाड़ों, चांद, रास्ते, परदेसी, बर्फीले आदि शब्दों की झड़ी लगने वाली है, और कुछ एक गीत भी इन्होंने

सुझाए हैं, बताए हैं। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि पहाड़ की प्रकृति की सबसे सुंदर कृतियों में से एक है ऊंचे ऊंचे पर्वत, वहाँ की हरियाली, झरने, बर्फ से ढकी चोटियाँ और शुद्ध हवा मन को शांति और आनंद देती हैं। पहाड़ों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का भी सौंदर्य अद्भुत होता है। जलवायु संतुलन में भी पहाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकतर नदियाँ पहाड़ों से ही निकलती हैं। पर्यटन के लिए भी पहाड़ों का बहुत महत्व है। भाग दौड़ वाली जिंदगी से दूर सुकून के दो पल पहाड़ों के संग हमें रिचार्ज कर देते हैं। ये बिल्कुल सही है श्रोताओं। और वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे खेल भी होते हैं जिनमें हम अक्सर भाग लिया करते हैं। तो ऐसे खेल भी क्या आपने खेले हैं तो आप बता सकते हैं। स्की वगैरह जो होता है वो पहाड़ों का बड़ा ही प्रसिद्ध खेल है। और कुछ एक बाग बगीचे होते हैं जो बड़े सुंदर होते हैं, जहाँ फूल बहुत ही अलग तरीके के होते हैं, तो वो भी आपने देखे हैं तो वो आप हमें लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, प्रकृति के नैसर्गिक रूपों का स्वाद चखना हो तो एक याद के रूप में संजोना चाहते हैं आप अगर, तो आम शहरी जिंदगी से बाहर निकल किसी भी पहाड़ पर सैर करना चाहिए। पहाड़ों पर कहीं आपको बर्फ की गिरते फाहों की ठंडक मिलेगी। शुद्ध हवा जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्तों से एक भीनी सी खुशबू लिए आपको ऐसी शीतलता प्रदान करती है, मन मस्ती से झूमने लगता है। तो आप ये बताइए कि जब आपने पेड़ों की बात करी है तो ये ठंडे प्रदेश, यानी अगर खास हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ एक बड़ा ही सुंदर सा पेड़ होता है जिसके पत्ते बड़े मशहूर हैं, क्योंकि ये पत्ते मौसम के हिसाब से रंग बदलते हैं श्रोताओं। तो इन पत्तों के बारे में बताइए। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने शिकारा लिखा है जो कश्मीर की खास नाव है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि गर्मियों में ठंडे और बर्फीले पहाड़ की सैर मानसिक शांति और सुकून के लिए बेहतरीन होती है। ताज़ी हवा, चांदनी रातें, परदेशियों से मिलना, मनमोहक दृश्य यकीनन सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।

जॉय मुखर्जी और साधना पर फिल्माया गया ये गीत आपने सुना एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज़ थी। एस एच बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। वैसे हम आपसे पूछना चाहते थे कि संगीतकार के बारे में। जी हाँ, ये गीत जब सुनाई देते हैं श्रोताओं तो बड़े ही अच्छे लगते हैं, और ऐसा ही एक चित्रण हमारी ऐसे ही एक बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। एक श्रोता लिखती हैं, गर्मियों में ठंडे और बर्फीले पहाड़ों की सैर मानसिक

एक और श्रोता लिखते हैं कि इस तपती हुई गर्मी में पहाड़ पर जाना बहुत अच्छा लगता है। एक और भी श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स हैं, श्रोताओं हम शामिल करने की कोशिश करेंगे एक के बाद एक। आप यहाँ की फोटोग्राफी के बारे में कुछ अगर बताना चाहें तो ज़रूर बता सकते हैं।

संजय खान और साधना नजर आते हैं और ये सेब का बगीचा है श्रोताओ, बड़ा ही सुंदर। और आप एक सवाल का अगर जवाब दे सकें कि कश्मीर में किस चीज की खेती सबसे ज्यादा होती है, तो इस सवाल का जवाब आपको देना है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बाजारों में चहल पहल बढ़ते ही रौनक दुगनी हो जाती है। जी हाँ, इन जगहों के जो बाजार होते हैं श्रोताओं, वो बहुत अलग होते हैं। दूर दराज से आए सैलानी यहाँ की बनी हाथ की कलाकृतियाँ, गर्म शॉल और मीठे पहाड़ी सेब बड़े चाव से खरीदते हैं। हर मोड़ पर मुस्कुराते चेहरे और उनकी मेहमान नवाजी अजनबियों को भी अपना बना लेती हैं। शाम ढलते ही जब पहाड़ों पर दियों की तरह रोशनी जगमगाती है, तो एक सुहाना रूहानी जुड़ाव महसूस होता है। मुसाफिर यहाँ की अनमोल यादें और कभी न टूटने वाला स्नेह अपने दिल में समेट कर अगले साल फिर लौटने की कसम खाकर विदा लेते हैं। एक श्रोता और लिखते हैं कि पहाड़ों पर यही मौसम सबसे ज़्यादा सुकून देता है। जो सर्दी का मौसम सा होता है, वो पहाड़ों पर शोरगुल बिल्कुल थम सा जाता है। आवाज़ आती है तो सिर्फ हवा, नदी के बहते पानी और कलरव करते पक्षियों की। पहाड़ी जीवन कोशिश करेंगे एक के बाद एक। आप यहाँ की फोटोग्राफी के बारे में कुछ अगर बताना चाहें तो ज़रूर बता सकते हैं।

सादगी, प्रकृति वैभव और पहाड़ों का शांत वातावरण मन मोह लेता है। पर्वत केवल धरती का श्रृंगार नहीं बल्कि भावनाओं का वो संसार है जहाँ हर परदेसी अपना एक हिस्सा छोड़ आता है। आपने पीर पंजाल की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी बात करी है, तो लीजिए वहीं का गीत सुनिए।

महबूबा फिल्म का ये गीत था राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया है। श्रोताओ, आपने क्या इस गांव को देखा है? क्या ये गांव जिसका जिक्र हो रहा है वो सचमुच है हमारे देश में? अगर आप गए हैं या फिर अगर है तो आप हमें ज़रूर बताएं। और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको ऐसी जगहों पर फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, तो ये भी आप हमें बता सकते हैं। लेकिन फोटोग्राफी में बहुत सारी सावधानियां भी होनी चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है, आज की इबारत में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फीली चादरों में सिमटी बर्फ की चादरें

हैं तो कुछ एक लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ताउम्र याद रहते हैं। तो ऐसा कोई आपके साथ वाकया हो तो आप ज़रूर बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि सफ़र में पहाड़ों के बीच सुकून भरे वातावरण में मधुर गीतों के साथ चलने की तैयारी है और इन्होंने अपने अनुमान के हिसाब से बहुत सारे गीतों को लिखा है। तो देखते हैं कि और कौन से गीत आज शामिल होते हैं। वैसे ये गीत जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं

हरे रामा हरे कृष्णा इस फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ों में। और ये हमने पूछा था कि इसकी शूटिंग कहाँ की है श्रोताओं, तो ये भक्तपुर दरबार स्क्वायर है जो वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। और ये जो जगह है ये काठमांडू नेपाल में है। तो क्या आप यहाँ गए हैं इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और यहाँ की जो पारंपरिक चीज़ें हैं, यहाँ हाथ से बुनी हुई चीज़ों की बात अगर हम करें या फिर वुड कार्विंग्स यानी कि जो लकड़ी के सामान होते हैं जिनमें नक्काशी की जाती है, जैसे कश्मीर में अखरोट की लकड़ी से अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी की जाती है, पॉटरीज भी यहाँ की जो है वो बहुत बिकती है और भी

सुजीत कुमार और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे आराधना फिल्म से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 3 साल पहले जब कोंकण से वापस आ रहे थे तब ट्रेवलर फोड़ा घाट से आ रही थी, बीच में रुकी, सब बाहर निकले, हाय वो क्या नज़ारा था, बेमिसाल हरा भरा हुस्न सह्याद्री का वो पहाड़, उस पे वो बड़े बड़े पेड़, नीचे गहरी खाई। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पहाड़ों नदी पर जब जाते हैं, घर से खाना लेकर जाते हैं, ये सब एक साथ मिलकर खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है और वहाँ की शीतलता मन को सुकून पहुँचाती है। ऐसी यादगार यात्राएं हमेशा याद रहती हैं। श्रोताओं, हमने आपसे चंबा नाम के गांव के बारे में पूछा था और उसके बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है। ये गांव पीर पंजाल की जो पर्वत श्रेणी है उसके बीच बसा हुआ है, बड़ा ही सुंदर सा गाँव है और महबूबा फिल्म की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मसूरी को कहते हैं पहाड़ों की रानी, दूसरे चंबे का गांव भी है। वैसे चंबा घाटी में बहुत से छोटे छोटे गांव हैं लेकिन गाने में जिस गांव की बात है वो बड़े ही दुर्गम क्षेत्र में है। एक और श्रोता ने लिखा है कि शीतल शीतल पवन झकोरे, हरे भरे ऊंचे जो पेड़ों से सजी पहाड़ों की ऊंची चोटियाँ, उनसे लिपटा उदक से पानी से यानी कि भरे काले बादल का मंडल, ये सुंदर दृश्य देखा है नीलगिरी पर्वत के उत्कमंड नगरी में। जी हाँ, दो डब्बा बेटा शिखर का, जिसने हमेशा के लिए मेरे मन को मोह लिया है।

0: फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एच के

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
1: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादेसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त

जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया के एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के निवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और

0: मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर के युगल स्वरों में शागिर्द फिल्म का गीत आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

بدل

0: आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में लाड साहब फिल्म का ये गीत था हसरत जयपुरी का, लिखा तर्ज थी शंकर जयकिशन की।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। आरती आपको भी मेरा नमस्कार।
1: सोनाली आपको और सभी सखियों को सभी सखाओं को श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: और आरती कैसी हैं आप?
1: बस ठीक है, गर्मी में जितना ठीक हो सकते उतना ही ठीक है क्योंकि जो धूप के हाल है गर्मी के हाल है ना, बस पूछिए मत।
0: नहीं पर हम अगर गर्मी की बातें करते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है।
1: हाँ ये बात भी है,
0: इसलिए हमें ना गर्मी की बात ही नहीं करना है, बस
1: सोचना ही नहीं है कि हाँ। गर्मी है, अरे बिल्कुल गर्मी नहीं है
0: तभी तो हम खुश रह सकते हैं ना, क्योंकि खुश रहने के लिए हमें बस वजह ढूंढना चाहिए, है ना।
1: तो है।
0: क्योंकि खुशियों की वजह अगर हम ढूंढते हैं तो सचमुच जिंदगी हमारी बहुत खुश हो जाती है।
1: बिल्कुल, और मैं तो कहती हूँ वजह भी ढूंढने की क्या जरूरत है, बस हंसिए मुस्कुराइए खुशियां मनाइए।
0: बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनिए, विविध भारती सुनते रहिए, है ना। और आज के विषय बता दें।
1: आज के विषय है हम बात करेंगे आज अपने बच्चों की जो झूठी झूठी प्रशंसा करते हैं उनके ऊपर। देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत सभी लोग अक्सर करते हैं क्योंकि अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं तो वो आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि आप तो नहीं है या आप हैं तो आप भी कितनी मतलब इस चीज को करते हैं कि झूठी प्रशंसा करते हैं, कितना करते हैं, तो इसी बारे में आप बताइए। या कोई आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो, किसी पड़ोसी ने कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बोल दिया हो। और आज हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंदर किसके बारे में,
0: के चल्लमल नारियल अम्मा, उनकी बारे में हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है, इसमें हमें श्रोताओं से हम गुजारिश करेंगे कि भाई आप लिखिए कि गेमिंग का दलदल क्या है, इसमें आपके इर्द गिर्द के आसपास के लोग इस दलदल में क्या फंसे हुए हैं या आप इससे दूर है, इस विषय पर हमें लिखिए कमेंट्स, क्योंकि ये सिर्फ श्रोताओं का सेगमेंट है ना।
1: और एक बात मैं आपको बता दूं सोनाली, इस दलदल में थोड़े से पहले मैं खुद भी फंसी
0: गई थी
1: बिल्कुल, और मुझे ऐसा हो गया था ना कि मैं बस खेलती चली जा रही हूँ और एक लेवल दो लेवल मैंने कहा कि बस किसी तरह से अगले लेवल पहुंच जाऊं, फिर मैंने कहा ये मुझे हो क्या रहा है, मैं पूरे टाइम सिर्फ इसी को कर रही हूँ। तो ये चीज से आप बाहर निकले, तो इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से बाद में। और भी तो विषय है,
0: और आज एक खास दिन है आरती, ईद उल अजहा, यानी बकरी ईद भी है आज, तो उस बारे में भी हम बहुत सारे सखियों को श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और साथ ही उपयोगी टिप्स, ये बहुत जरूरी टिप्स है आज की,
1: ताकि हमारा नेट जो है वो एकदम चलता रहे और हम अपना आराम से विविध भारती बिना उसके रोक टोक के सुन सके आराम से। और साथ ही और भी अगर हम कुछ देखना चाह रहे हैं, कुछ मनोरंजन करना चाह रहे हैं तो कर सकें, तो उसके लिए जरूरी है वाईफाई, क्योंकि डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो वाईफाई होता है ना वो बहुत आराम से चलता है, पूरी फैमिली भी उससे कर सकती है, लाभ उठा सकती है। तो उसकी स्पीड अगर धीमी है तो हम कैसे उसको सही कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे।
0: और आप क्या करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: ईद की नमाज भी अदा की जाती है और नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन घरों में खास तौर पर बिरयानी और अन्य लजीज पकवान बनाए जाते हैं और गरीबों और जरूरतमंदों को दान या जकात देना इस त्यौहार का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है।
1: तो सारे हम सखियों को, श्रोताओं को ईद की बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं।

0: तो भाई
1: सच में बहुत महके हुए से आज कभी देखो ना किसी को कि कोई अपने फ्रेंड है तो बहुत मुस्कुरा से रही, तो हमें पता चल जाता है कुछ तो राज उसने छुपा के रखा है। जैसे अभी मुझे लग रहा है सोनाली को देख के कि कुछ राज तो है, कि यानी वो पढ़ने वाली है, कोई कमेंट या कुछ बताने वाली है।
0: जी नहीं, आज हम सबसे पहले तो हमारे सभी सखियों को, श्रोताओं को बकरी ईद या ईद उल अज़हा की हम
1: बहुत बहुत
0: मुबारक।
1: मुबारकबाद देते हैं जी।
0: जी, और ये जो इस्लाम का दूसरा सबसे प्रमुख और पवित्र त्यौहार है, जो पैगंबर हज़रत इब्राहिम की अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की याद में मनाया जाता है। ये त्यौहार इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये रमज़ान के ख़त्म होने के लगभग 70 दिन बाद आता है। ये चांद के देखने पर निर्भर करता है, इसलिए देश और स्थान के अनुसार इसकी तारीख में थोड़ा अंतर हो सकता है।
1: जी बिल्कुल। और बकरीद के दिन सुबह ईदगाह या मस्जिदों में

0: हाँ तो सुनाली, कुछ सच में इतना बढ़िया लगता है ना गाना ये.
1: जब है ना, जब कोई भी त्योहार हो तो अलग ही एक ना आनंद की अनुभूति होती है ना.
0: बिल्कुल.
1: फिर घर में सब लोग मिलते हैं और खुशियों की बरसात होती है.
0: सच में.
1: वैसे कुछ शख्सियत भी ऐसी होती है ना जिनके व्यवहार के कारण, जिनके कार्यों के कारण हमें ना हर बार एकदम खुश खुश रहते हैं हमें ना उनके
0: बिल्कुल,
1: काम
0: हमें एक प्रेरणा मिलती है. कुछ
1: जी
0: ऐसे व्यक्तित्व होते हैं.

0: बचाया भी जा सकता है।
1: बिल्कुल, और उन्होंने नारियल और ताड़ के पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए सस्ते तरीके खोजे हैं। वो हमेशा दूसरे किसानों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए तैयार रहती हैं। उन्होंने आसपास के गांवों के 170 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण भी दिया है।
0: और कृषि कॉलेज और संस्थान अपने छात्रों को अध्ययन के लिए उनके खेत पर भेजते हैं जहाँ वे नारियल के पेड़ उगाती है। उन्हें दालचीनी, तेज पत्ता, काली मिर्च, पान का पत्ता, रतालू, सुपारी, अदरक, हल्दी, पपीता, केला, चीकू, हेलिकोनिया फूल और गेंदा और बहुत सारी सब्जियों के फसलों को उगाकर उन्होंने अपनी आमदनी में भी बढ़ाई की।
1: बिल्कुल, कितनी ज्यादा चीजों को उन्होंने, वो भी देखिए आज के समय में जब फसलों को इतना ज्यादा जब नुकसान पहुंचता है या इस रासायनिक चीजों से, उस समय वो जैविक खेती कर रही, कितनी अच्छी बात है। और श्रीमती चेल्लम्मल ने नारियल को चूहों से होने वाले नुकसान पर काबू पाने के लिए नए उपाय विकसित किए। वो अपने खेत में जैविक कृषि तकनीकों को अपनाती हैं, साथ ही कीटों से फसलों को होने वाले रोगों और नुकसान से बचाव के लिए भी उन्होंने बहुत से कारगर उपाय विकसित किए जो बहुत काम के साबित हुए।
0: और चल्लमल ने अपने खेत में हरित खाद और गोबर की खाद का उपयोग किया है, साथ ही वो परागण के लिए मधुमक्खी पालन कर

0: और लेकिन उनका अब जो खेत है वो लोगों के लिए कृषि और छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है। उनका खेत फसलों और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखते हुए बहुत अच्छी आय का साधन है। उन्होंने अंडमान में एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में एक अवसर देखा, इसलिए उन्होंने अपने खेत में एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा भी दिया है।
1: अब स्थानीय और पूरे देश के अलावा विदेशों से पर्यटक उनके खेत को देखने समझने आते हैं और श्रीमती चिल्लम्मल को अब तक बहुत से पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें केरल के नारियल विकास बोर्ड से सर्वश्रेष्ठ नारियल किसान का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है।
0: बिल्कुल, और मसालों और फूलों की खेती के क्षेत्र में प्रगति के लिए इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन अवार्ड, साथ ही इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, ICAR और CIARI पोर्ट ब्लेयर द्वारा आयोजित किसान मेले में उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार भी मिला है।
1: और द्वीप पर्यटन महोत्सव 2014 के दौरान कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित फल फूल और सब्जी के लिए प्रथम पुरस्कार और वर्ष 2016 में केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर की ओर से प्रगतिशील सर्वश्रेष्ठ कृषक का पुरस्कार भी आपको मिला है।
0: बिल्कुल, और उनके अनोखे जैविक कृषि तरीकों, नवाचार और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया।
1: और सचमुच ऐसी जब महिलाएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं तो हमें कितना इन्हें गर्व महसूस होता है कि हमारे भारतवर्ष में इतनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और हमारी सरकार उन्हें पद्मश्री से सम्मानित।
0: पढ़ाई ना होने का रोना भी नहीं रोती है।
1: बिल्कुल,
0: पढ़ाई सिर्फ देखिए हमें एक डिग्री देती है और हमें थोड़ा हमारा ज्ञान हमारा विकसित करती है, लेकिन जो हमारे अंदर जो जो एक कला होती है ना, वो हर चीज को, वो जो कला होती है जो मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाए, वो कला को अपने निखारना चाहिए।
1: और अब एक संदेश सुन ले।
0: बिल्कुल,
2: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: तो आरती, हमारी अपना कार्यक्रम सखी सहेली, उसका जन्मदिन है तो हमारे मन में भी बहुत खुशी है कि हम बहुत धूमधाम से पूरे श्रोताओं के संग, सखियों के संग ये हमारा जन्मदिन मनाएंगे। तो आप आ रही है ना?
0: बिल्कुल आ रहे हैं। आना ही है भाई, जन्मदिन मनाना है तो जश्न में शामिल तो होना ही है।
1: और हमारे बहुत सारे श्रोता है, हमारी सखिया, वे भी आएंगे। पर इससे पहले हम एक गाना सुन ले।
0: बिल्कुल, सुनते हैं
1: गीत।

0: तो आंखों ही आंखों में हम पता कर लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है सच बोल रहा
1: बिल्कुल,
0: है
1: वो तो पता चल ही जाता है चेहरे को देख के।
0: कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, हाल ही में रिजल्ट आए बच्चों के, तो कुछ कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि भले उनके 57% हो तो कहेंगे कि हमारे बच्चों को 75%
1: हाँ, ये तो
0: आए
1: होता है, ये तो होता है।
0: और वो ये भी नहीं, वो उन्हें मालूम होता है कि कोई थोड़ी मार्क लिस्ट देखने आने वाला है, उन्हें तो नहीं मालूम पड़ेगा। पर देखिए एक झूठ के पीछे हमें 100 झूठ
1: सौ
0: बोलना
1: झूठ बोलने
0: पड़ता है।
1: पड़ते हैं।
0: और क्या होता है ना, बच्चों को जब ये झूठ सुनने की आदत हो जाती है ना, तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी झूठी तारीफ हो, और फिर आगे चल के जब उन्हें आगे की

0: बच्चों की झूठी ये अत्यधिक प्रशंसा उनके विकास के लिए हानिकारक हो सकती है। ये उन्हें आत्ममुग्ध बना सकती है, असफलता से डरने वाला बना सकती है और उनमें वास्तविक क्षमताओं के प्रति संदेह पैदा कर सकती है। सच्ची और विशिष्ट तारीफ जैसे कि मेहनत, प्रक्रिया या व्यवहार की, इनकी आप तारीफ करिए। उनके आत्मविश्वास और लचीलेपन की तारीफ करिए। झूठी प्रशंसा के जो दुष्प्रभाव है वो ये देखने को मिलते हैं कि वो बच्चा अहंकारी भी हो जाता है, आत्ममुग्ध भी हो जाता है और साथ ही अनावश्यक तारीफ बच्चों को अपने साथियों से ज्यादा श्रेष्ठ महसूस कराती है, जिससे वो उनमें अहंकार पैदा हो जाता है और वो विफलता से डरने भी लगते हैं और उनमें लगता है कि मैं बेहतरीन हूँ, तो वो एक झूठ उनके अंदर आ जाता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है आरती कि अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा, वैसे देखा जाए तो मैं कभी अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा नहीं करती, लेकिन हाँ जब भी वे कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी दिल से तारीफ जरूर करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरी बात सुनकर बच्चे खुश भी हो जाते हैं और उन्हें आगे और अच्छा करने का मोटिवेशन भी मिलता है। मेरा मानना है कि बच्चों की सही समय पर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ बच्चों की हौसला जरूर होनी चाहिए, बस झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए।
0: बिल्कुल। एक और श्रोता जो कुछ इस तरह की बात लिखते हैं कि तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो, इस तरीके की चीजें हैं वो उन्होंने लिखी हैं। और साथ ही बच्चों की एक और जो श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की झूठी प्रशंसा करना उनके विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है और असफलता मिलने पर बच्चे जल्दी टूट जाते हैं, जोखिम लेने से डरने लगते हैं, वो नई चुनौतियां लेने से बचते हैं और उनको तारीफ की लत लग जाती है।

0: आएगी, और
1: जी
0: वो भी सोचेगा कि नहीं अब मुझे और मेहनत करनी है ना, और मेहनत करके आगे बढ़ना है, ना कि मुझे सिर्फ अब झूठी तारीफ पे रहना है। इसलिए बहुत जरूरी है
1: और
0: इस
1: अब
0: तरह
1: क्या
0: से।
1: करें,
0: एक गीत सुनते हैं।
1: सुनते हैं गीत।
0: बच्चों की झूठी ये अत्यधिक प्रशंसा उनके विकास के लिए हानिकारक हो सकती है, ये उन्हें आत्ममुग्ध बना सकती है, असफलता से डरने वाला बना सकती है, और उनमें वास्तविक क्षमताओं के प्रति संदेह पैदा कर सकती है। सच्ची और विशिष्ट तारीफ जैसे कि मेहनत, प्रक्रिया या व्यवहार की, इनकी आप तारीफ करिए, उनके आत्मविश्वास और लचीलेपन की तारीफ करिए। झूठी प्रशंसा के जो दुष्प्रभाव है वो ये देखने को मिलते हैं कि वो बच्चा अहंकारी भी हो जाता है, आत्ममुग्ध भी हो जाता है, और साथ ही अनावश्यक तारीफ बच्चों को अपने साथियों से ज्यादा श्रेष्ठ महसूस कराती है, जिससे वो उनमें अहंकार पैदा हो जाता है, और वो विफलता से डरने भी लगते हैं, और उनमें लगता है कि मैं बेहतरीन हूँ, तो वो एक झूठ उनके अंदर आ जाता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है आरती, कि अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा, वैसे देखा जाए तो मैं कभी अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा नहीं करती, लेकिन हाँ जब भी वे कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी दिल से तारीफ जरूर करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरी बात सुनकर बच्चे खुश भी हो जाते हैं और उन्हें आगे और अच्छा करने का मोटिवेशन भी मिलता है। मेरा मानना है कि बच्चों की सही समय पर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ बच्चों की हौसला जरूर होनी चाहिए, बस झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए।
0: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कुछ इस तरह की बात लिखते हैं कि तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो, इस तरीके की चीजें हैं वो उन्होंने लिखी हैं। और साथ ही बच्चों की एक और जो श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की झूठी प्रशंसा करना उनके विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है, और असफलता मिलने पर बच्चे जल्दी टूट जाते हैं, जोखिम लेने से डरने लगते हैं, वो नई चुनौतियां लेने से बचते हैं, और उनको तारीफ की लत लग जाती है।

0: बना लिए। मनोरंजन के साधनों में गेमिंग सबसे लोकप्रिय
1: बहुत
0: माध्यम है
1: ज्यादा।
0: आरती, और थोड़ी देर का खेल मन को ताजगी देता है, पर लेकिन जब यही मनोरंजन आदत और फिर लत बन जाए तो ये गेमिंग का दलदल ये बन जाता है, और इसमें व्यक्ति धीरे
1: बिल्कुल।
0: धीरे धीरे धीरे फंसता ही चला जाता है।
1: और इस गेमिंग की वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जो बच्चे हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े क्राइम कर दिए इन
0: जी
1: गेमिंग में के चक्कर में फंस के। तो अपने माता पिता या किसी से रिश्ते में भी जो भी अपने अपने हैं उनको भी वो नहीं समझते, सिर्फ गेम के अंदर इतने ज़्यादा वो लग जाते हैं कि वो कितने बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं, और साथ ही
0: यानी
1: बहुत बड़े अपने जो जो माँ बाप की जो कमाई होती है उसको भी गेम के चक्कर में, वो गेम को खरीदने के चक्कर में वो भी पूरा गंवा देते हैं।
0: यानी कहने का मतलब है कि वो ये जो दलदल है इसमें फंसने से हमने अपने बच्चों को बचाना है।
1: बिल्कुल।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि इस बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे दिन रात मोबाइल गेम्स में लगे रहते, पढ़ाई और बाकी जरूरी चीजों से उनका ध्यान हटता जा रहा है। मेरी बेटी ने अभी अभी 10वीं के एग्जाम दिए और उनकी छुट्टियां चल रही है आजकल। उसकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मम्मा मुझे गेमिंग वाला फोन चाहिए। सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कि जो बच्चा अभी 11वीं में जाने वाला है उसे इस उम्र में गेमिंग के फोन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। फिर मुझे अपना समय याद आता है कि हमारे समय में तो मोबाइल दूर की बात थी, घर में सिर्फ लैंडलाइन फोन होता था। मेरे पिताजी तो इतना डांटते थे कि किसी से 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन आज के बच्चों की दुनिया ही बदल गई है, उन्हें बस गेम खेलना है। तकनीक अच्छी है लेकिन उसका सही और सीमित उपयोग बहुत जरूरी होता है, वरना
1: बिल्कुल।
0: धीरे धीरे बच्चे गेमिंग की ऐसी आदत में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल। और एक शोधा

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: जब कदम भी चल न सकोगे समझे
0: हाँ समझे।

0: ना किसी के
1: क्या करना है जीते,
0: अरे हो रहना किसी के
1: मन में रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे।

0: भारती एक साथी लिखते हैं कि आजकल गेम खेलने की लोगों में लत सी लगी है। लोग देर रात तक जागकर मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलते हैं। कई बार तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, ना तो खाने की चिंता होती है, ना उन्हें कुछ काम की चिंता होती है। कुछ ऐसे गेम तो उन्हें ऐसे टास्क देते हैं जिसके कारण लोग अपने जीवन को भी समाप्त कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत से ऐसे गेम आ गए खतरनाक
0: जी।
1: और साथ ही एक श्रोता जी लिखते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति ऑडियो या ऑनलाइन गेमिंग में इतना उलझ जाता है कि उसका अपनी दैनिक दिनचर्या, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर से नियंत्रण हट जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे आधिकारिक तौर पर गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया है।
0: और वैसे आरती ऐसी बात है कि ये जो मोबाइल गेम है या फिर मोबाइल कह लीजिए, लैपटॉप कह लीजिए या फिर जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इनमें अगर वाईफाई ना हो, इनमें अगर नेट ना हो तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है।
1: सही बात है। फिर हम एकदम फोन लेके बैठे रहते हैं कि क्या करें इस डिब्बे काम।
0: नहीं नहीं नहीं, पर अगर हमें बहुत इन्हें ऑफिशियल काम करना है, हमें अगर कुछ काम करना है तो बात समझ सकते हैं, पर अगर हमें सिर्फ टाइम पास नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि हम पढ़ना भूल रहे हैं, खेलना भूल रहे हैं, परिवार के साथ बैठना भूल रहे हैं, तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि कोई भी मनोरंजन का साधन होना वो सिर्फ सीमित मात्रा तक,
1: वो मनोरंजन तक ही रहना चाहिए, बाकी रिश्तों के बीच में या हमारे स्वास्थ्य के बीच में उसको नहीं आना चाहिए
0: जी। और अब वाईफाई की रफ्तार अगर धीमी हो जाए तो क्या करना चाहिए?
1: जिंदगी की रफ्तार, ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की रफ्तार जब वो धीमी हो गई,
0: धीमी हो गई,
1: क्योंकि बहुत कभी कभी बहुत जरूरी काम होते हैं, क्योंकि हमें उसको करना होता है, लिखना होता है या कुछ हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी चीजें देखनी है, तो आजकल तो न्यूज भी आप मोबाइल पे देख सकते हैं, कहीं बाहर है तो हमें किसी कुछ जरूरी देखना है तो वो अगर नेट नहीं सही से चल रहा है या हम अपने जैसे कि हम लोग जब देखते हैं सब पूरी फैमिली जो होती है, अगर पूरी फैमिली ले रखी है उसने वाईफाई से चला रहे हैं तो उसकी रफ्तार अच्छी होनी

0: तो अब हम बात करते हैं वही जो हम बात कर रहे थे, यानी कि राउटर की। तो जैसे कि बताया कि हमने कि आप राउटर को बंद करें और फिर दोबारा चालू करें, तो उससे ये उसकी जो मेमोरी होती है उसको साफ़ करता है, और साथ ही राउटर की जगह को भी बदलें। या जैसे कि हमने बताया था कि आप उसको EMI श्रोता लेके भेज रहे हैं, उसको घर के बीच में रखें और इसे ऊंचाई पर स्थापित करें, और कई सारी बाधाओं से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उसको दूर रखें, और अनचाहे डिवाइस जो भी रखें उसके आसपास उनको हटा दीजिए, और वाईफाई का पासवर्ड बदलें और ताकि और कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। साथ ही बैकग्राउंड लोड जो डाउनलोडिंग बंद करें। ये वही चीज़ें जो हैं जो हमने अभी बताई, वही हमारे श्रोता ने भी लिख कर भेजा है। तो एक और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि धीमी वाईफाई की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने राउटर को रीस्टार्ट करना, और इसके अलावा वही उन्होंने कहा कि ऊंची जगह पर लगाने से भी इसकी स्पीड बेहतर होती है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं आरती, कि ज्यादा गेम खेलने से मेरा भी स्कूल का रिजल्ट बिगड़ा था, मुझे भी कंप्यूटर गेम की लत लगी थी लेकिन अब छूट गई है। क्या
0: अरे
1: बात है।
0: वाह
1: तो
0: देखा,
1: बधाई हो।
0: बिल्कुल बधाई हो आपको अपने, क्योंकि गेम की लत लग तो लग जाती है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है।
1: जी
0: आपने उस चीज़ को छोड़ा, बहुत अच्छी चीज़ करी है आपने। और एक हमारे दोस्त होते हैं जो लिखते हैं कि देर रात तक गेम खेलने से नींद का चक्र बिगड़ जाता है, जिससे डिप्रेशन और एन्जाइटी का खतरा बढ़ जाता है, और साथ ही एकाग्रता में कमी भी आती है। लंबे समय तक स्क्रीन पर वर्चुअल गेम खेलने से वास्तविक दुनिया से या पढ़ाई पर या काम पर ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है।
1: ये तो है ना, टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं,
0: बिल्कुल
1: तो हमें उसके फायदे लेना चाहिए और नुकसान को हमें बाय बाय कहना चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल, उसका ध्यान रखिए, इतना मत किसी चीज में लग जाइए कि वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे,
1: जी। और
0: क्योंकि
1: अभी
0: अति हर चीज के लिए भी
1: अब
0: बुरी होती है।
1: बिल्कुल अति सर्वर्थ वर्जित, तो भाई अति से दूर रहे, कि बस वो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हम इतने इसके माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हमें
0: बिल्कुल
1: कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है इन टेक्नोलॉजी की बदौलत, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, उसके जो नुकसान है उससे हमें बचना चाहिए। और अब क्या करना चाहिए हमें,
0: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: ध्यान रखें, इतना मत किसी चीज में लग जाइए कि वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे, क्योंकि अति हर चीज के लिए
1: बिल्कुल अति सर्वर्थ वर्जे, तो भाई अति से दूर रहे कि बस वो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हम इतने इसके माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हमें कितना ज्यादा फायदा हो रहा है इन टेक्नोलॉजी की बदौलत, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, उसके जो नुकसान है उससे हमें बचना चाहिए। और अब क्या करना चाहिए हमें?
0: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम एक ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम है जहां आप अपने पसंदीदा गाने सुनना पसंद करते हैं, हमसे बातचीत करना पसंद करते हैं, अपनी भावनाएं, अपने संदेश दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, क्यों है ना? तो आज इस हेलो फरमाइश में ऐसी ही हल्की फुल्की बातें हमने की हैं हमारे श्रोताओं से। तो शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम और देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, हमारा नाम नरेंद्र कुमार पटेल है, हम बजहा गांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: हाँ नरेंद्र जी, स्वागत है आपका।
1: जी, हम विविध भारती जो है सन 2000 सुन रहे हैं, कक्षा 2 में थे तब से।
0: अरे वाह, क्या बात है, कक्षा 2 में थे तब से लेकर अभी तक सुन रहे हैं।
1: जी, हमारे घर में ऐसा संस्कार था कि रेडियो हमारे चाचा लोग सुनते थे, जब हम लोग बैठते थे, खड़े खड़े चलते थे, परे परे चलते थे, तब से रेडियो सुनते थे, तो उसी माहौल में थे इसलिए सुनने लगे। खाना पीना बनता था, सभी लोग कम्बाइंड परिवार था, खाते थे और उधर टहलते थे, वही खेलते थे, तो रेडियो चलता रहता था।
0: तो आज तक सुनते हैं आप रेडियो?
1: जी जी, अब रेडियो तो नहीं रह गया, अब मोबाइल ऐप से सुनते हैं, हमेशा सारा दिन सुनते रहते हैं।
0: कैसा लगता है उस समय आप जब कक्षा 2 में सुनते थे या थोड़े बड़े हुए?
1: वो तब जी हम जो क्लास वर्क होता था शाम के करते थे, रेडियो चलता रहता था, अपना नाम फेयर

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम एक ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम है जहां आप अपने पसंदीदा गाने सुनना पसंद करते हैं, हमसे बातचीत करना पसंद करते हैं, अपनी भावनाएं, अपने संदेश दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, क्यों है ना? तो आज इस हेलो फरमाइश में ऐसी ही हल्की फुल्की बातें हमने की हैं हमारे श्रोताओं से। तो शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम और देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, हमारा नाम नरेंद्र कुमार पटेल है, हम बजहा गांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: हाँ नरेंद्र जी, स्वागत है आपका।
1: जी, हम विविध भारती जो है सन 2000 सुन रहे हैं, कक्षा 2 में थे तब से।
0: अरे वाह, क्या बात है, कक्षा 2 में थे तब से लेकर अभी तक सुन रहे हैं।
1: जी, हमारे घर में ऐसा संस्कार था कि रेडियो हमारे चाचा लोग सुनते थे, जब हम लोग बैठते थे, खड़े खड़े चलते थे, परे परे चलते थे, तब से रेडियो सुनते थे, तो उसी माहौल में थे इसलिए सुनने लगे। खाना पीना बनता था, सभी लोग कम्बाइंड परिवार था, खाते थे और उधर टहलते थे, वही खेलते थे, तो रेडियो चलता रहता था।
0: तो आज तक सुनते हैं आप रेडियो?
1: जी जी, अब रेडियो तो नहीं रह गया, अब मोबाइल ऐप से सुनते हैं, हमेशा सारा दिन सुनते रहते हैं।
0: कैसा लगता है उस समय आप जब कक्षा 2 में सुनते थे या थोड़े बड़े हुए?
1: वो तब जी हम जो क्लास वर्क होता था शाम की करते थे, रेडियो चलता रहता था।

0: फेफड़े सुनने लगे, खाना पीना बनता था, सभी लोग कंबाइंड परिवार था, खाते थे और उधर टहलते थे, वही खेलते थे, तो रेडियो चलता रहता था
1: तो
0: जी।
1: आज तक सुनते हैं आप रेडियो?
0: जी जी अब रेडियो तो नहीं रह गया, अब मोबाइल ऐप से सुनते हैं, हमेशा सारा दिन सुनते रहते हैं
1: कैसा लगता है
0: जी।
1: उस समय आप जब कक्षा 2 में सुनते थे या थोड़े बड़े
0: अरे
1: हुए?
0: वो तब जी हम जो क्लास वर्क होता था शाम के करते थे, रेडियो चलता रहता था अपना।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मंदा के जी,
0: नमस्कार।
1: मैडम खांजी पीर से जब्बार मोहम्मद,
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ये मैडम खांजी पीर उदयपुर से, झीलों की नगरी है उदयपुर, वहाँ से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। कैसे हैं आप बताइए, उदयपुर के बारे में बताइए। अभी गर्मी के मौसम में उदयपुर का क्या हाल है?
1: मैडम क्या कह रहे हैं, उदयपुर तो वैसे बहुत अच्छी नगरी है, झीलों की नगरी है
0: जी।
1: अभी 40 और 45 डिग्री के आसपास गर्मी है उदयपुर में।
0: अच्छा, गर्मी इतनी पड़ रही है?
1: जी मैडम गर्मी तो है उदयपुर में, लेकिन यहाँ झीलें हैं, चारों तरफ झीलें फैली हुई है और हरियाली बहुत है, तो इससे कुछ गर्मी का असर कम रहता है
0: जी।
1: और काफी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ, कई अच्छी जगह देखने लायक जगह है, यहाँ झीलें हैं काफी, क्या कह रहे धार्मिक नगरी भी, कई दर्शनीय स्थल है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, जगदीश जी का मंदिर है और दो दरगाहें भी देखने लायक है यहाँ, मस्तान बाबा की दरगाह फतेह सागर के आसपास और एक अंबावगढ़ पे भी एक गन शहीदा की दरगाह है, पहाड़ी पे काफी अच्छी दरगाह है, काफी जायरीन वगैरह आते हैं। उदयपुर से कुछ दूर श्रीनाथ जी का मंदिर भी बहुत फेमस है, यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं और झीलें भी अच्छी है
0: जी। आपने उदयपुर की सारी दुनिया हमारे सामने साकार कर दी है कि टूरिस्ट जब आते हैं तो किन किन चीजों को देख कर जाते हैं।
1: जी
0: तो मुझे बताइए कि बकरीद का जो त्योहार है वो असल संदेश उसका त्याग है। आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा अपनों की खुशी के लिए त्याग किया?
1: मैडम त्याग तो ये है कि गरीबों की मदद करना चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, करते हैं क्या
0: जी।
1: बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है और मैं फिल्म मर्यादा का गीत सुनना चाहता हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मोहम्मद रफी साहब का है, मोहब्बत के सुहाने दिन।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत चुना है आपने। चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: जी मैम, मैं कृष्ण कुमार डाबी बोल रहा हूँ, गांव टोंकिया, जिला बालोतरा, राजस्थान से।
0: अरे
1: तीसरी बार बात हो रही है।
0: क्या बात है।
1: नियमित सुनते हैं बस आपके प्रोग्रामों को। अभी मनसा गीत शुरू हुआ उसको भी मैं नियमित सुनता रहता हूँ।
0: हाँ।
1: अभी दो दिन पहले ही आपकी प्रस्तुति को सुना हूँ मैं।
0: जी क्या बात है। तो सुरीला सफर के लिए आप लिखते हैं कि नहीं लिखते फेसबुक पेज पर?
1: हाँ लिखता हूँ मैम, पर क्या कि दिन को एक बजे जो प्रोग्राम आता है उससे मैं क्या थोड़ा काम में बिजी होता हूँ, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा कमेंट कम कर पाता हूँ। बाकी जब भी पोस्ट देखता हूँ तो उसके बारे में प्रोग्राम सुनता हूँ तो लिखता जरूर हूँ।
0: लिखा कीजिए ताकि हमें क्या उन संदेशों को पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है और श्रोताओं के विचार।
1: और पत्र भी भेजे अभी विविध भारती के स्टूडियो में।
0: अच्छा,
1: धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा वैसे भेजते रहेंगे तो शामिल होते रहेंगे।
0: जी मनचाहे गीत के लिए बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा हर कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल दीदी, है ना, बहुत अच्छा।
0: जी बताइए थोड़ा मौसम के बारे में कि बालोतरा में कितनी गर्मी हो रही है।
1: पता ही है कि मरुस्थली इलाका है तो इन दिनों तो गर्मियों के दिनों में मौसम कैसा होगा। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और तेज आंधी और गर्म लू से भरी हवाएं चल रही है, बस वही मौसम है रेगिस्तान में।
0: जी तो दिन भर जो गृहिणी है उनका वक्त तो घर की सफाई करने में निकल जाता होगा, क्योंकि जब हमारे
1: देखो
0: राजस्थान में जब आंधी तूफान आता है तो वो पूरा छप्पर फाड़ आता है। फिर
1: वही बात है कि सुबह जब घर की साफ सफाई होती है और शाम तक होते होते पूरा घर वापस से वो रेत के कणों से और धूल से भर जाता है, क्या करें। सफाई तो करनी पड़ेगी सुबह शाम दोपहर, क्या है ये। तो दिन को थोड़ी गर्मी तेज रहती है, बाहर इधर इधर निकलना नहीं होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है और टेम्परेचर भी अभी अपने यहाँ इधर हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और ये सब बालोतरा साइड का कम से कम 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। बस वही बात है,
0: गजब चल रहा है और भयंकर गर्मी के इसमें अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का और सब चीजों का।
1: और वैसे प्रोग्रामों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोग्राम इन दिनों आ रहे हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और ये फोनिंग प्रोग्राम भी आ रहे हैं, आपने जो नए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं उनका भी स्वागत है। और मैंने खास करके मैं छाया गीत प्रोग्राम का बहुत सुबह और शाम को फिर ये वापस आता है 5 बजे रिपीट, तो मैं उसको सुनना जरूर पसंद करता हूँ क्योंकि मैं दो बार सुनता हूँ, कभी कभी नहीं सुन पाऊँ तो मिस हो जाता, तो फिर वापस से यूट्यूब पे जाकर कहीं कहीं मिल जाता तो सुन लेता हूँ।
0: क्या बात है, इतना पसंद है आपको छाया गीत।
1: छाया गीत में दीदी आप जो ये प्रोग्राम अपनी भावनाओं जो व्यक्त करती है और उस हिसाब से गीत भी उसी अनुरूप होते हैं तो वो क्या कि फिर थोड़े दिल को छू लेने वाले होते हैं।
0: हाँ।
1: और आपके समय जब प्रोग्राम आता है तो उसकी बात ही कुछ अलग है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
1: दीदी आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, उनका अपने जो संगीतकार जुड़ी थी उनका दिन है, तो उस उपलक्ष्य में मैं उन्हीं के संगीतबद्ध किया एक गाना सुनना चाहूंगा। हमजोली फिल्म से आशा जी और रफी साहब की बुलंद आवाज में गाना है, ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना।
0: चलिए सुनते हैं आप

0: हैदर खान बोल रहे हूँ
1: जी। स्वागत है आपका हैदर साहब।
0: और क्या हाल चाल मैडम?
1: अच्छे हैं आप बताइए।
0: बस बढ़िया है यहाँ भी। मतलब अभी तो थोड़ी गर्मी का प्रकोप ज्यादा है एमपी में, तो लो बहुत चल रही है मैडम अभी फिलहाल। तो
1: जहाँ बात की जा रही है वहाँ पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा तापमान है, और अलग अलग जगहों पर पता चलता है कि किस तरह से लोग जो इस गर्मी में बेहाल हुए जा रहे हैं।
0: हाँ
1: तो बताइए हैदर साहब, अभी जो बकरीद है, बकरीद को किस तरह से मना रहे हैं आप, और क्या संदेश देना चाहते हैं बकरीद के मौके पर?
0: संदेश तो ये देना चाहते हैं मैडम के मतलब ये जो अपना भारतवर्ष ये तो त्योहारों का देश है, और सभी को मतलब अपने अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, तो शांति और मतलब स्वभाव से त्योहार मनाए।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप अपना त्योहार सुख और शांति के साथ मनाए, हम ये उम्मीद करते हैं। और आप हमारे पुराने श्रोता हैं, क्या क्या सुनना पसंद करते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों में?
0: विविध भारती के प्रोग्राम तो मैडम जो अभी 90 साल पूरे हुए हैं, तो हम तो 1980 से आकाशवाणी प्रोग्राम है मैडम।
1: 1980 से सुन रहे हैं?
0: हाँ 1980 से ही सुन रहे हैं, वो रेडियो पे प्रोग्राम सुनते हैं ज्यादातर, तो अभी भी मेरे पास रेडियो ही है।
1: तो आप बताइए कौन सा गीत सुन रहे हैं आपको?
0: ये रंजा फिल्म का गीत है रफी साहब की आवाज में, ये दुनिया में फिल्म मेरे काम की नहीं।
1: बहुत ही सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।
1: कभी कभी खामोश रहकर भी नेक काम किए जा सकते हैं, मैंने देखा है अक्सर पेड़ों को छांव देते हुए।
0: क्या बात है, क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मोहम्मद रफी मंसूरी, इंदौर से। कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए।
1: हम भी अच्छे हैं मैडम।
0: अच्छा होना ही चाहिए
1: जी,
0: हमारे कार्यक्रम सुनते हैं लगातार।
1: हाँ हाँ सुनते ना मैडम
0: जी। तो आप बताइए, बकरीद मनाएंगे आप
1: जी, जी, जी।
0: तो बकरीद का असली महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है आपकी नजरों में?
1: मैडम इसका ऐतिहासिक महत्व है कुर्बानी और आपस में मिलजुल के रहना और प्यार बांटना और दूसरों को भी खुशियाँ देना।
0: जी बहुत सही कहा आपने, और इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हम अपना हर त्योहार मनाते हैं। क्यों
1: जी,
0: बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: हम सिलाई करते हैं मैडम।
0: अच्छा, सिलाई करते हैं घर पे या किसी दुकान में जाके?
1: नहीं, बाहर गोडाउन पे जाके।
0: दिन भर सिलाई का काम होता है?
1: हाँ, दिन भर सिलाई का काम भी होता है और अपना रेडियो भी चलता रहता है।
0: रेडियो तो खैर आप लोगों की खुराक में शामिल है।
1: हाँ, खुराक में
0: भाई मुझे लगता है हमारे श्रोता खाना भले ही कभी खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते।
1: जी
0: तो क्या सिलते हैं आप?
1: मैडम हमारा घनी बैग का जूट का काम, बारदान बारदान जिसमें अनाज भराता है, गेहूं उसको रिपेयर करते हैं हम सुबह और इससे।
0: अच्छा, जूट के जो बैग हैं जिन्हें हम बोरा कहते हैं लोकल भाषा, उसको आप जूट के उससे सिलाई करते हैं?
1: जी जी।
0: तो नए बनाते हैं या पुरानों को रिपेयर करते हैं?
1: मैडम पुराने जैसे कोई कट लगी रहती है या चूहे काट देते हैं तो उसको रिपेयरिंग करते हैं हम।
0: तो ये अच्छे से रिपेयर हो जाता है क्या? क्योंकि वो तो सुतली जो होती है वो कहीं ना कहीं से कट जाती है, उसको सिलना आसान होता है? पैबंद लगाते समय ध्यान रखते हैं?
1: हाँ मैडम, थोड़ा पक्की सिलाई करना पड़ती है और फिर बाद में तो फिर वैसे उठा पटक होती है, अनाज भराता है तो फिर वो फट जाते हैं, तो फिर हमारे पास डबल से आते हैं, फिर हम रिपेयरिंग करते हैं।
0: इस तरह से उसको बना के रखते हैं ना, क्योंकि बोरी है वो फट भी जाती है कई जगह से।
1: जी, जी।
0: कट फट जाती है। अच्छा बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: फिल्म का नाम है काला पत्थर और गाने के बोले एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
0: वाह क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी मैडम जी, हमारा पहली दफा कॉल लगा है विविध भारती में।
0: स्वागत है आपका फिर तो।
1: बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा कॉल अटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नाम मैडम जी सरवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं?
1: बहुत बढ़िया है मैडम जी, मालिक की दया है, बाकी हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जमींदार आदमी है।
0: बिल्कुल अच्छी बात है ये तो।
1: हाँ जी,
0: तो अभी क्या पैदावार हो रही है खेतों में? मौसम इतना गर्म है, आपके पंजाब में भी तो गर्मी हो रही होगी।
1: बिल्कुल जी, गर्म दिन बहुत चल रहे हैं, बाकी धान का पौध बोआ है, वो अब 20 दिन के बाद में पटकर दोबारा लगाएंगे।
0: क्यों, मतलब इसको हटा देंगे?
1: अभी वो जैसे संगना बीजा हुआ है, संगना थोड़ी दूर में,
0: हाँ।
1: उसको फिर उखाड़ कर फुट फुट की खेती पर लगाएंगे दोबारा।
0: अच्छा, दोबारा लगेगा, तो इस दोबारा लगाने की प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है?
1: मेहनत तो है मैडम जी।
0: हाँ, और गर्मी के इस मौसम में क्या ख्याल रखना पड़ता है फिर?
1: मैडम जी, हम तो बागड़ी आदमी है, ये राबड़ी हमारे बनाते हैं,
0: बाजरे के आटे की।
1: हाँ, बाजरी का, मोठ का।
0: अच्छा, मोठ का भी।
1: हाँ, उसमें छाछ डालकर सुबह पीते हैं, 10 बजे शाम को दलिया बनाकर रख देते हैं, वो सुबह ठंडा होता है, वो छाछ दही के साथ में खाते हैं, ये गर्मी का बहुत बढ़िया उपाय है ठंडे के लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है, तो रात को आप मोठ का दलिया बना देते हैं और उसको सुबह खाते हैं छाछ के साथ?
1: हाँ जी हाँ जी, सवेरे ठंडा मिलेगा, हाँ। रात को वो बनकर तैयार हो जाता है।
0: क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट बनता होगा फिर तो, है ना?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल जी, वैसे खेत के अंदर मकान बना है, वहाँ थोड़ा सब्जी वगैरह लगा रखा है, कोई ककड़ी मिल जाती है, कभी खरबूजा मिल जाता है, कभी कोई तर वगैरह हरी मिर्ची मिल जाती है, वो बहुत बढ़िया है।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा, बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे हैं प्रकृति के बीच में और शुद्ध खाना खा रहे हैं अपने ही खेत का।
1: हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल
0: जी। चलिए, तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का कोई गीत।
1: मैडम जी, रवार की फिल्म से सुना देना है मेरे साथ यह गीत, तू कोई गा, लता और मोहम्मद अजीज की आवाज।
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से विविध भारती खानी में सोता हूँ। मैं राम नरेश बोल रहा हूँ। मैम
0: स्वागत है आपका। राम नरेश जी,
1: जी जी, और हम विविध भारती को बहुत पसंद करते हैं, इससे आने वाले प्रोग्राम का हेलो फरमाइश हो, सेलोलाइट के सितारे हो, आज की फनकार हो, यह नया प्रोग्राम शुरू किया गया है मन चाहे गीत। हम विविध भारती से सन 2000 से जुड़े हुए हैं, जब सुबह 9:15 पर वो हंगामा प्रोग्राम आया करता था।
0: तो 26 साल हो गए आपको इस कार्यक्रम से, इस सभा से जुड़े विविध भारती से।
1: जी, विविध भारती से जुड़े हुए और कई दौर देखे हैं, देखा जाए तो 2 दशक से।

0: और सुहाना सफर कार्यक्रम हवा महल आज के फनकार सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम।
1: सुरीला सफर में आप अपनी बात लिखते हैं हमारे फेसबुक पेज पर?
0: मैडम ने अभी 2019 के बाद मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था।
1: क्यों?
0: दोबारा चालू किया कोरोना काल से मैंने बंद कर दिया था।
1: तो इतना लंबा समय क्यों लिया बंद करने के बाद शुरू करने में?
0: कार्यक्रम बंद हो गए थे विविध भारती से, तो फिर धीरे धीरे मैंने भी सुनना बंद कर दिया था मैडम।
1: चलिए अब लगातार सुनिए और अपनी राय देते रहिए और फेसबुक पेज से जुड़िए, अपने विचार व्यक्त कीजिए ताकि आपकी टिप्पणियों को हम स्थान दें पढ़े।
0: जी जी मैडम,
1: हमारे श्रोताओं से ही हमारे कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, बताइए।
0: आम्रपाली फिल्म का नील गगन की छाव में दिन रैन गले से मिलते हैं।
1: क्या बात है, गर्मी के इस मौसम में बड़ा सुंदर गीत सुनना चाहते हैं।
0: अच्छा गाना है और शंकर जयकिशन का संगीत भी बहुत अच्छा है लता जी के आवाज के साथ।
1: जी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: में हैं। आप कैसी हो मैम?
1: अच्छे हैं हम भी। तो बताइए आप कहाँ रहते हैं?
0: जी मैं सिलचर पे रहता हूँ।
1: माँ मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
0: मौसम 4 दिन से बारिश हो रही है मैम।
1: अरे बारिश आ गई है?
0: जी मैम।
1: तो कुछ ठंडा हुआ मौसम?
0: जी मौसम अच्छा है, सुहाना है मैम मौसम।
1: अच्छा तो इस बारिश आने से क्या फायदा हुआ वहाँ?
0: जी पहले तो बहुत धूप था, आप राहत मिली है गर्मी की।
1: कुछ गर्मी से राहत मिली है ना?
0: जी मैम।
1: क्या काम करते हैं आप टिंकू जी?
0: जी मैम मैं तो फिलहाल घर का काम काज करता हूँ, और अभी तक तो कुछ तो करना पड़ेगा आगे से।
1: अरे क्यों नहीं करते अभी तक? क्या उम्र है आपकी?
0: जी फिलहाल तो मेरा 19 साल की उम्र है।
1: अच्छा पढ़ाई की है आपने?
0: जी मैंने तो ओनली 10 कंप्लीट किया है। मेरा एक उद्देश्य भी है, मैं TRPF कमांडो में जाना चाहता हूँ।
1: हाँ हाँ
0: फिलहाल यही तैयारी चल रहा है।
1: क्या तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं आपने?
0: जी मैम अच्छे से रख रहे हैं मैम।
1: बिल्कुल, खाना पीना और सब कुछ आपको सही तरीके से करना पड़ेगा।
0: जी मैम
1: तभी तो कमांडो बन पाओगे, है ना? कितना मुश्किल होता है वो फिजिकल फिटनेस, मेंटली इतना मजबूत बनना पड़ता है।
0: जी मैम
1: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप युवा हैं और कार्यक्रम सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाएं आपको टिंकू जी?
0: जी मैम मुझे सिर्फ तुम अभी से पहली पहली बार ये गाना सुना दीजिए मैम।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक हैं?
0: हाँ हम ठीक हैं। और कश्मीर के मौसम बताइए।
1: कश्मीर के मौसम अभी सुहाना है, मौसम ठीक है। अभी ठंडे ठंडे मौसम है यहाँ पे, सुबह शाम ठंडे, दिन में गर्मी रहता है।
0: काफी टूरिस्ट आ रहे होंगे घूमने इन दिनों?
1: हाँ, पर्यटक तो बहुत सारे आते हैं यहाँ सोनामर्ग में। अब लगभग 15,000 से ऊपर तो पर्यटक आते हैं यहाँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा एक बात बताइए मोहम्मद रैना साहब, बकरीद पर आप क्या कहेंगे? अब तो बकरीद का जो असली मकसद है, असली संदेश क्या है, क्या सोचते हैं आप? जो हजरत साहब है उनकी परंपरा, उनकी कुर्बानी की परंपरा हमें क्या सिखाती है?
1: हमें सिखाता है वो ईमानदारी, ईमानदारी हर चीज में। जो भी ईमानदारी करेगा वो आगे बढ़ेगा।
0: अच्छा एक बात बताइए, जो बकरीद का त्योहार है, हमें समाज में जरूरतमंदों की मदद और दान करना, सहायता करना सिखाता है?
1: ये तो गरीबों के बांटना है, हर किसी को भी बांटना है। ये
0: आपसी प्रेम और भाईचारे का बनाए रखने का एक बहुत बड़ा त्योहार है ये।
1: हाँ हाँ, ये तो बड़े त्योहार है।
0: आप ऐसा सोचते हैं कि सभी समुदायों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे?
1: हाँ सही बात, हिंदू मुस्लिम तो एक ही भाई भाई है।
0: चलिए तो इस त्योहार को अच्छे से मनाइएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: हमें सुनाए गाना पत्थर की फूल, लता मंगेशकर की आवाज में, कभी तो छल।

आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज लग चुके हैं उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि कृपया आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें। हेलो फरमाइश से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 4002466228602888 और हमारा STD कोड नंबर है 022, यानी आप हमें 022 4002 4662

0: युव वाणी, युवाओं की वाणी। और आज इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बना हमारे साथियों के साथ करेंगे चर्चा विभिन्न प्रकार की बातों पर। हम हमारे साथियों के साथ कई ज्ञान की बातें करेंगे और साथ ही मनोरंजन करेंगे। साथी युवानी कार्यक्रम जो है आपको हर रोज नई बात, नई सीख, आपकी शिक्षा से जुड़ी हुई, आपके विकास से जुड़ी हुई, आपके रोजगार से जुड़ी हुई बातों के बारे में भी बताती है और साथ ही आपको रोज एक नए युवा साथी के विचारों से अवगत कराता है ये युवानी कार्यक्रम, और आपको हर रोज इतिहास से भी मिलवाता है। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी युवा श्रोताओं का आज के इस युवानी कार्यक्रम में। मैं आपका रेडियो दोस्त राजकुमार खाती और साथ ही है हमारे साथ
1: साथियों में हूं कपिल सुरेलिया। और तो आज हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु में लू से कैसे बचा जाए, कि आखिर लू चल रही है, कितना गर्म मौसम है, लू के झटकारे हमें लगते रहते हैं।
0: साथ ही जिनके होने से हमारा अस्तित्व है या जिन्हीं की बदौलत आज हम ये रेडियो कार्यक्रम सुन रहे हैं या हम आपको सुना रहे हैं और हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वो है हमारे माता पिता। तो साथियों हम बात करेंगे हमारे माता पिता का वैश्विक विश्व दिवस के बारे में भी। वातायन में हम आपको ले चलेंगे खजुराहो मंदिर समूह में जो कि हमारे मध्य प्रदेश राज्य में है।
1: साथ ही विश्व तंबाकू निषेध दिवस डॉक्टर भरत कुमार सोनी सहायक आचार्य से राजकुमार खाते की बातचीत भी हम करेंगे।
0: वहीं साथ ही होगा मनोरंजन भी।
2: मिस सीमा
3: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों, लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
3: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा,
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: तो आइए साथियों, हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में लू से कैसे बचा जाए। साथियों, हमें अनावश्यक इस भरी गर्मी में भ्रमण करने से हमें बचना होगा, हमें सावधान होगा, सतर्क रहना होगा, हमें हमेशा हमारे सिर को ढकते हुए ही बाहर जाना होगा। अगर आप कहीं भी अगर सफर

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण,
2: साथ ही जो पेड़ पौधे हैं उनके हमें परिंदे बांध सकते हैं, जिससे कि पक्षी पानी पी सकते हैं, क्योंकि उनकी व्यवस्था करना भी ये हमारी जिम्मेदारी है वर्तमान में, कि जो गर्मी पड़ रही है उसे देखते हुए अपने बच्चों को हो सके तो उतना ही घर से बाहर कम जाने दें।
3: तो साथियों सतर्क सावधान रहे और लू से बचते रहे। अगर आपको कुछ भी ऐसा एहसास होता है, अगर आपकी तबीयत में थोड़ी भी नासाजगी अगर आपको नजर आती है, तो आप तुरंत चिकित्सक की सलाह लें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: माँ की ममता, पिता का एहसास, यही तो है जीवन में सब कुछ और हमारे यहाँ तक के सफर का साथ। तो साथियों, माता पिता की बदौलत ही आज हम यहाँ हैं और उनके होने से ही हमारा अस्तित्व है। अगर माता पिता नहीं है तो हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं होता है। साथियों, हर वर्ष 1 जून को माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित। यह दिन दुनिया भर में माता पिता को उनके बच्चों के प्रति जो निस्वार्थ समर्पण और उनके प्रति जो प्रेम होता है, आजीवन माता पिता अपने बच्चों के प्रति जो बलिदान करते हैं, तो उनके इस कार्य के लिए उन्हें सम्मान करने का यह एक

0: साथियों, आइए अब युवा डायरी में हम आपके हॉबी में बातचीत करवाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर डॉक्टर भरत कुमार सोनी से, जो कि सहायक आचार्य हैं। इनसे बात की है राजकुमार खाती ने।
1: प्रिय युवा साथियों, चिराग जल रहे युवा डायरी सेगमेंट में हम आपको रोज मिलवाते हैं हमारे एक नए युवा साथी से। और आज के इस युवानी कार्यक्रम में हम मिलवाएंगे आपको हमारे एक नए युवा साथी से, जिनका नाम है डॉक्टर भरत कुमार सोनी, जो कि एक सहायक आचार्य हैं, जो कि अपनी शिक्षा के माध्यम से युवा साथियों को ज्ञान प्रदान करते हैं, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। तो आइए हम उनसे बात करेंगे आज एक महत्वपूर्ण विषय पर, जो है हमारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस। नमस्कार भरत जी।
2: नमस्कार सर।
1: भरत जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो तंबाकू है वो कि हर वर्ग के लोगों को एक ऐसी समस्या का शिकार बना देता है जो उनके लिए कई प्रकार से नुकसानदायी होती हैं। उसके नुकसानों को जानते हुए भी वो उसको अपनाते हैं, तो क्या है तंबाकू?
2: मैं सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं और सभी श्रोताओं को भी मेरी ओर से नमस्कार।
1: जी
2: देखिए, अगर हम बहुत ही सरल शब्दों में अगर ये कहें कि तंबाकू क्या है, तो तंबाकू देखिए होने में बिल्कुल बाकी जो वेजिटेशन हैं उनकी तरह ही है, लेकिन अंतर ये है कि बाकी वेजिटेशन जहाँ सभी वेजिटेशन मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाती, वहां तंबाकू के माओ को नुकसान पहुंचाता है। तंबाकू जो है वो जिसको हम कहते हैं बोटनिकल नाम जिस पौधे का है, उसका नाम है निकोशियाना टेबिकम।
1: जी
2: उस पौधे की पत्तियों से ये प्राप्त होता है और ये दिखने में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे बाकी पौधे की पत्तियां दिखती हैं, सूखी पत्तियां, या हम पाउडर के रूप में भी जो है इसको देखते हैं, लेकिन असल में ये बहुत धीमा जहर होता है। हमारे देश में मूल रूप से जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वो दो इसके मूल रूप देखने को हमको मिलते हैं। पहला है धूम्रपान के रूप में, अर्थात बीड़ी सिगरेट या हुक्का चिलम के रूप में, और दूसरा है जो कुछ व्यक्ति जो है वो इसको चबाते भी हैं, जैसे खैनी में हो गया, गुटखा हो गया, सीधे जर्दा भी जो है वो कई लोग खाते हैं। चाहे इसका रूप कैसा भी हो, लेकिन ये इंसान को धीरे धीरे जो है अपनी गिरफ्त में लेने लग जाता है। शुरू में जो है वो व्यक्ति को पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे जो है वो उस व्यक्ति को उसकी लत लगती चली जाती है।
1: आज देखा जाता है कि हर वर्ग के युवा जो हैं इस तंबाकू की लत के ऐसे शिकार बनते जा रहे हैं जो उनके जीवन को बर्बाद कर देती हैं। वो उनके परिवार तक को एक ऐसे संकट से गुजरना पड़ता है कि जो उनके पूरे परिवार के लिए ऐसा ही नहीं होता है। तो ये तंबाकू की जो लत है, ये कैसे एक धीरे धीरे धीरे करके अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है?
2: तो देखिए, ये प्रश्न वाकई काफी विचारणीय है, बहुत सोचनीय प्रश्न है कि आखिर लोग जो है इसकी तरफ खींचे के चले जाते हैं।
1: जी
2: देखिए, इसमें इसके पीछे अगर हम हर अलग अलग वर्गों की बात करें, अलग अलग वर्ग जैसे युवा वर्ग हो गया, और दूसरा हम कहें कि मजदूर वर्ग हो गया, ठीक है, और कुछ हम ये कहें कि कुछ इस तरह के व्यक्ति हैं जो तनावग्रस्त रहते हैं, एक
1: जी
2: उनका वर्ग हो गया, तो हम इनके अलग अलग मानसिकता के हिसाब से बात करें तो युवा वर्ग क्या होता है कि अक्सर वो फिल्मों में देखता है, और फिल्मों में देख करके वो कूल बनने के चक्कर में जो है वो, या दोस्तों के दबाव में कई बार जो है वो इसका स्वाद लेना शुरू करता है, इसको खाना शुरू करता है, या धूम्रपान के रूप में लेना शुरू करता है। ठीक
1: जी
2: है, जैसा कि हम देखते हैं मूवी वगैरह में, कई बार आपसे भी देखते होंगे, हमारे युवा श्रोता जो भी हैं जो हमें सुन रहे हैं वो भी देखते होंगे कि मूवीज में जो है उस तरह के फिल्म बहुत आम है आजकल। तो बाद में क्या होता है कि जब एक बार शुरुआत हो जाती है उसके बाद ये धीरे धीरे उनकी लत बन जाता है। वहीं हम ये देखें कि मजदूर वर्ग या जो कामकाजी वर्ग है वो किस रूप में जो है वो इसको लेता है, वो कई बार आपने देखा होगा कि मजदूर लोग जो है वो हमेशा मुंह में जो है वो अपने जर्दे को रखते हैं। मानसिकता ये होती है कि बीड़ी पीने से या तंबाकू को चबाने से या खैनी वगैरह खाने से उनको जो है वो शारीरिक शक्ति प्रदान मतलब मिलती है, जिससे कि वो काम को अच्छे से कर पाते हैं, उनको ऊर्जा मिलती है, लेकिन जो वास्तव में एक भ्रम है, ऐसा कुछ
1: जी
2: जो है वो इससे प्राप्त नहीं होता, वो केवल हमारी मानसिकता होती है या लोगों की मानसिकता होती है। और हम बात करते हैं अगर तीसरे वर्ग के लोगों की, जैसे कि हम बात करें कि जो व्यक्ति तनावपूर्ण जिंदगी जीते हैं, ठीक है,
1: जी
2: या आधुनिक जो जीवन शैली जिसको हम भौतिकवादी जीवन शैली भी कहते हैं, ऐसी लाइफ स्टाइल जो है जहाँ पर व्यक्ति सुबह उठ रहा है, काम पर जा रहा है और पूरा थका हारा होकर के शाम को घर आ रहा है, तो आज के दौर में कई ऐसे लोगों को लगता है कि सिगरेट

0: कद्दू को समझते नहीं है कि दाने दाने में होता है कैंसर का दम। तंबाकू तो ही कैंसर का कारण है। वहीं हम आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार तंबाकू का सेवन बन जाता है एक पूरे परिवार की खुशियों को छीनने का कारण।
1: देखिए, हमने भी बात की है कि तंबाकू जो होता है उसका सेवन तो कोई एक व्यक्ति कर रहा होता है घर में, या हो सकता है दो व्यक्ति कर रहे होते हैं।
0: जी
1: लेकिन जब वो व्यक्ति सिगरेट के रूप में उसको ले रहा होता है, उसका धुआं है वो इनडायरेक्टली जो है वो परिवार के लोगों या दोस्तों में बैठे हैं उनकी भी, जो व्यक्ति उसका सेवन नहीं करता है उनके अंदर भी वो जाता है। व्यक्ति खुद के शरीर को तो केमिकल फैक्ट्री के रूप में बदल ही रहा है, क्योंकि वो एक्टिवली जो है वो स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन साथ में जो लोग बैठे हैं वो भी पैसिव रूप से जो है वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं। जैसा आपने सुना होगा कि अभी जैसे सर्दियों में जब दिल्ली में प्रॉब्लम होती है स्मॉग की, पोल्यूशन की, तो हम आए दिन अखबार में पढ़ते रहते हैं कि अभी दिल्ली की हवा को 10 मिनट हवा लेने का मतलब है कि 50 सिगरेट पी लेना, इस तरह जो है वो पैसिव स्मोकिंग की तरह हो गया।
0: जी,
1: तो तंबाकू और उसका धुआं जो होता है उसमें हालांकि केमिकल तो बहुत होते हैं, लगभग 7,000 से भी ज्यादा केमिकल इसमें पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कम से कम 70

0: चारकोल कहते हैं। ये भी जो है वो एक पदार्थ इसमें होता है, हालांकि मात्रा बहुत कम होती है, हमको सीधे तौर पर ऐसा नहीं दिखेगा कि इसमें ये पाया जाता है, तो इसमें ये होता है। वो धीरे धीरे धीरे जैसे एक्चुअल में हम जब भी कोई मूवी देखते हैं तो मूवी देखने के पहले जब शुरू में एड आता है उसमें आपने देखा होगा तो उसमें वो तार वाला एड दिखाया जाता है कि जो है वो साल भर में जो है वो व्यक्ति जिसने सिगरेट पीता है या बीड़ी पीता है तो इसमें कितना तार इकट्ठा हो जाता है इसके फेफड़ों में। तो ये तीन प्रमुख जो है वो पदार्थ हैं। और बात करें हम इनकी बीमारियों की, तो देखो इन्हीं ये जो रसायन है इन रसायनों के कारण मुंह का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, गले का कैंसर, हार्ट अटैक भी हो सकता है, स्ट्रोक आ जाता है, सीओपीडी जैसी कई सांस संबंधी जो है गंभीर और जानलेवा बीमारियां हो सकती। अब ये बीमारियां होंगी तो केवल एक व्यक्ति को, लेकिन उस व्यक्ति के पीछे उसका परिवार है, ठीक है। वो परिवार हो सकता है, अब जैसे अभी हमने अभी बात की है कि वही मजदूर वर्ग है, अब मजदूर वर्ग जो है वो इसका निरंतर जैसे सेवन करता है, फिर उनको आगे जाकर के इस तरह की कोई समस्या हो जाती है, आर्थिक स्थिति भी जो है उनकी चरमरा जाती है। मिडिल क्लास फैमिली का भी कोई व्यक्ति है तो उनको भी आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है, परिवार के लोग परेशान होते हैं, कोई बीमारी हो जाती है, तो ये सारी चीजें जो है वो व्यक्ति सेवन कर तो रहा है लेकिन वो खुद का ही नहीं सोच रहा तो परिवार का क्या सोचेगा, हम ये भी कह सकते हैं।
1: वही कई हमारे युवा साथी हैं और महिला वर्ग में भी इस तंबाकू के कई सारे नुकसान हैं जो देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारी कई बहनें हैं जो गर्भवती हैं वो तंबाकू का सेवन करती हैं या करती थी या कर रही हैं, और कई हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको पता नहीं है कि जो ये लाल दंतमंजन का जो पाउडर आता है वो उनके लिए कितना हानिकारक है। तो इसके बारे में आप
0: देखिए श्रोताओं, तंबाकू जो है वो एक तरह से अब हमारे समाज के दो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जैसे अभी सर ने बताया है, युवाओं और महिलाओं को बहुत गहराई से नुकसान पहुंचाना जो है इसने शुरू कर दिया है। युवाओं की अगर हम बात करें तो देखिए जैसे हम हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश में हम कहते हैं कि युवा शक्ति है, सबसे ज्यादा युवा है हमारे देश में पूरे विश्व में, तो एक तरह से हम युवा देश इसको कहते हैं। लेकिन युवावस्था वाला जो देश है इसके निर्माण की एक उम्र होती है ये युवावस्था वाली, अर्थात जो युवा है वो अपने देश को जो है वो ऊर्जा दे सकता है। मानव को भी हम संसाधन के तौर पर मानते हैं, तो जिस देश का मानव संसाधन ऊर्जावान होगा वो देश अच्छे से विकास कर सकता है। लेकिन देश का मानव संसाधन कहाँ जा रहा है, युवा कहाँ जा रहा है, वो नशे में जा रहा है। अब युवा जब इस तरह से तंबाकू का सेवन करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी बॉडी का इफेक्ट होगा, उसका स्टेमिना कम होगा, कार्य करने की क्षमता कम होगी, उसके फेफड़े कमजोर होते हैं, चेहरे की चमक जो है धीरे धीरे चली जाती है, जो ऊर्जा युवा के चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, फेस डल हो जाता है उसका, और कम उम्र में ही वे दिल के बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं। आजकल आप देख भी रहे होंगे कई तरह के जो है मतलब युवा, काफी युवा लोग जो है वो हार्ट अटैक से जो है वो जा रहे हैं। मानसिक स्तर पर जो है वो उनकी एकाग्रता को भी ये प्रभावित करता है, मनुष्य की जो एकाग्रता होती है उसको भी इफेक्ट करता है और उसका कहीं किसी काम में मन नहीं लगता, वो विचलित रहने लगता है युवा। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो जैसा आपने बताया अभी भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं जो ये लाल दंत मंजन जो आता है तो लाल दंत मंजन में भी तंबाकू मिला होता है। अब उनको ये चीज नहीं पता लेकिन वो सुबह शाम बस जो है उस मंजन को लेकर के और बस घर के बाहर बैठ जाती हैं और किसी बातें करती रहती हैं और मतलब एक एक घंटे तक जो है वो निरंतर उसका सेवन करती रहती हैं, लेकिन क्योंकि वो अनभिज्ञ हैं इन चीजों से कि इसमें क्या है। हालांकि आजकल जो है हम देखते हैं कि सिगरेट हो, बीड़ी हो, गुटखा, तंबाकू, चाहे ये आपका दंत मंजन ही क्यों ना हो, इसके ऊपर भी जो है वो लिखा होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन वो फिर भी क्यों कर रहे हैं, क्यों उनका सेवन कर रहे हैं, कारण वही है कि उन्हें लत लग चुकी और वो उनसे छूटी नहीं जाती। अब इन महिलाओं की अगर हम बात करें, चाहे गर्भवती ना हो तो उनके भी बांझपन की समस्या जो है वो उनको आ सकती है, अगर ये बहुत निरंतर लंबे समय तक 5-7 साल 10 साल तक ये चीज चलती रहे। जैसे मान लीजिए कि कोई परिवार है, उस परिवार में उनके पिता दादा जो है स्मोकिंग करते हैं और जो बच्चे हैं, मान लो कोई फीमेल है, बच्ची है जो है 10 साल की 12 साल की, और वो रोज जो है वो पैसिव स्मोकिंग कर रही है, अर्थात वो स्वयं नहीं कर रही लेकिन वो दादाजी या पापा के पापा हैं कोई करते हैं, तो बीड़ी सिगरेट का धुआं उसके अंदर रोज जा रहा है। अब उस बच्ची को पता नहीं है कि 10 आने वाले 10 साल में जो है उसके शरीर पर क्या इफेक्ट होगा,

0: हमें उनको अवगत कराना होगा। साथियों देखिए, ये हमारे शरीर के हमारे हर अंग को ये प्रभावित करता है। तंबाकू हमारे फ्यूचर को भी ये प्रभावित करता है, हमारे आचरण हमारे व्यवहार को ये प्रभावित करता है, हमारे मान सम्मान तक को ये ठेस पहुंचाता है। अगर आप कहीं भी तंबाकू खाकर अगर बैठते हैं तो हीन सी भावना आपके प्रति लोग उत्पन्न कर लेंगे कि क्या इंसान है हर जगह तंबाकू खाकर बैठ जाते हैं। तो साथियों बचे, कोशिश करें कि धीरे धीरे आप इससे दूर जाएं, और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको भी आपको दूर लाना होगा। और अगर आपने कभी तंबाकू का सेवन नहीं किया है, आप नशे के आदि नहीं हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं साथियों कि कभी भी किसी के भी दबाव में आकर, कभी भी भोलेपन में आकर तंबाकू का सेवन न करें। आई
1: मेरे सभी युवाओं से यही अनुरोध है कि आइए आज हम ये शपथ लेते हैं कि हम तंबाकू जैसी चीज़ों से दूरी बनाए रखेंगे, इनका सेवन कभी भी नहीं करेंगे जो कर रहे हैं, और हम हमारे देश को, हमारे भारत को विकसित करने में, आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।
0: साथियों हमारा भारत देश है जहाँ पर आपको हर कदम पर कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा। हमारे संपूर्ण भारत में हर कदम पर एक नई विशेषता है, तो ऐसी ही एक विशेषता है हमारे मध्य प्रदेश में, जहाँ पर हम देखते हैं खजुराहो के मंदिरों का समूह, जो एक अद्भुत स्थापत्य कला का एक ऐसा अनूठा उदाहरण है जो मानो अपने मन को लुभा लेता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित खजुराहो के मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला और मूर्तिकला के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। ये भारत के बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों का एक समूह है।
1: वहीं इन मंदिरों के दीवारों पर बनी मूर्तियां यहां आने वाले सभी सैलानियों को ध्यान

0: सकते हैं, और इसमें साथियों आपको जो लाभ प्राप्त होता है यह आपके विकास में काफ़ी हद तक सहायक होता है। साथियों अब हम ले चलते हैं आपको आज के इतिहास की ओर, क्योंकि हर दिन होता है अपने आप में खास और हर दिन का होता है एक अपना इतिहास। तो 1952 में साथियों आज ही के दिन यूनान ग्रीस में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ था।
1: और साथ ही साथियों 1959 में अंतरिक्ष में भेजे गए दो अमेरिकन बंदरों ने अपनी सफल यात्रा पूरी की थी अंतरिक्ष की।
0: साथियों समय हो चुका है, अब हमें समय इजाजत नहीं देता है कि हम आपसे आगे और चर्चाएं करें। तो साथियों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम फिर मिलेंगे नई जोश नई उमंग और नई तरंग के साथ, फिर होगी नई जानकारी नई बातें। तब तक के लिए आप अपने साथी राजकुमार खाती
1: और मैं कपिल सुरेलिया
0: को दीजिए इजाजत और स्वीकार करें हमारा

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी झालावाड़ का। ये चंद्रभागा चैनल है एफएम 103.2 MHz पर।
1: हमें उनको अवगत कराना होगा। साथियों देखिए, ये हमारे शरीर के हमारे हर अंग को ये प्रभावित करता है। तंबाकू हमारे फ्यूचर को भी ये प्रभावित करता है, हमारे आचरण हमारे व्यवहार को ये प्रभावित करता है, हमारे मान सम्मान तक को ये ठेस पहुंचाता है। अगर आप कहीं भी तंबाकू खाकर अगर बैठते हैं तो हीन सी भावना आपके प्रति लोग उत्पन्न कर लेंगे कि क्या

श्रोताओं, हमें क्षमा करें, हम आपको प्रायोजित कार्यक्रम धीणेरी बाता नहीं सुनवा पा रहे हैं। इसकी जगह आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। अभी आपने सुना कुमार शानू अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में सड़क फिल्म का गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं रिफ्यूजी फिल्म का गीत सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज़ में।

कार्यक्रम के अंत में आइए आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का गीत अलका याग्निक कुमार शानू की आवाज़ में। गीत लिखा समीर ने, संगीत नदीम श्रवण।

कार्यक्रम के अंत में आइए आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का गीत अलका याग्निक कुमार शानू की आवाज में। गीत लिखा समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। आप सुनिए हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धारमैया मई 2000

0: चिंता करें।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आशीष शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अभिषेक देवरॉय को पार्टी की त्रिपुरा प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देवरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के SIRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेज यांशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया श्रेया घोषाल अरिजीत सिंह ने, गीत लिखा इरशाद कामिल ने, संगीत विशाल शेखर का।

0: क्या करें क्या ना करें, गर्मी से कैसे बचें?
1: मैं बताती हूँ, घर से बाहर जाते समय हल्के आरामदायक कपड़े पहने, छाता और धूप का चश्मा जरूर पहने, समय समय पर नींबू पानी, शिकंजी, नारियल पानी आदि पीते रहें, और घर में बच्चे, बीमार और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें।
0: और क्या ना करें?
1: आसान है, धूप में जाने से बचें, बासी भोजन ना करें, चाय, कॉफी, शराब, सॉफ्ट ड्रिंक्स आदि का अधिक सेवन ना करें, कोई गंभीर लक्षण दिखे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं।
2: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहित चौहान की आवाज में जब वी मेट फिल्म का गीत। शब्द हैं इरशाद कामिल के, संगीत प्रीतम का।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभिजीत की आवाज में आइए अब आपको सुनवाते हैं जोश फिल्म का ये गीत।

मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच

0: ने संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का दिया आश्वासन। ईद उल अजहा का पर्व प्रदेश भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और राज्य के ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर जारी। पश्चिमी भागों में अगले एक दो दिन हीट वेव का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं शिप्रा यादव और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य इस अभियान से ज्यादा लोगों को जोड़ना और जल संरक्षण के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाना है। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में आज जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आए लोगों को पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों को जल और शरबत पिलाया गया। जैसलमेर में अभियान के तहत भू जल संरक्षण विभाग की ओर से जल संरक्षण शपथ, पौधारोपण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। सवाई माधोपुर में आज वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला कलेक्ट्रेट में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जल संरक्षण कार्यों में उद्योग जगत, स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों की सक्रिय सहभागिता पर जोर दिया गया। राजसमंद में उपमुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर पानी बिजली की आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। भरतपुर जिले में भी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की ओर से शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने ये स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनकी हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूं, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। आज होने वाली परीक्षा ईद उल अजहा के कारण पुनर्निर्धारित की गई थी। NTA ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें NTA की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड

0: गंभीर बीमारी के उन्मूलन के लिए बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग, त्वरित जांच, जन जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा, जन भागीदारी, तकनीक और संवेदनशीलता के साथ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाकर हम टीबी मुक्त राजस्थान की दिशा में काम कर रहे हैं। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा देशभर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित विभिन्न शहर और कस्बों में सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सूफी संत ख्वाजा की नगरी अजमेर में भी ईद उल अजहा के मौके पर नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आज मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल अजहा का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर साल में मात्र चार बार खुलने वाला जन्नती दरवाजा आज एक दिन के लिए खोला गया, जिसके चलते जन्नती दरवाजा खुलते ही भारी संख्या में अकीदतमंदों की भीड़ दरवाजे के नीचे से गुजरने के लिए उमड़ पड़ी। सुबह से ही ख्वाजा साहब की दरगाह सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदतमंदों द्वारा नमाज अदा कर देश समाज में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा भी शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए। नलमादा हदीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही में भी ईद उल अजहा का पर्व अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बाजारों में त्योहारी खरीददारी और चहल पहल नजर आ रही है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कुलपति पद पर रहते हुए अनियमितताएं करने के आरोप में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर देव स्वरूप को पद से तत्काल हटाने के आदेश

एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और देश में अमन, खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी। घर घर में कुर्बानी की रस्म अदा की गई। शहर की बकरा मंडियों में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंगा दशमी के अवसर पर बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का शुभारंभ किया। 25 मई से शुरू हुआ यह अभियान 5 जून तक चलेगा। इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए जल संरक्षण और स्वच्छता से संबंधित कई गतिविधियां आयोजित कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए प्रदेश भर में ग्राम स्तर तक नुक्कड़ नाटकों, पोस्टर, चित्रकला प्रतियोगिता, संगोष्ठी और कार्यशाला जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में कल मिशन हरियालो राजस्थान की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में आगामी मॉनसून के दौरान प्रदेश भर में किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों और पिछले सालों में लगाए गए पौधों के सत्यापन कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने हरियालो ऐप के माध्यम से

0: समाचारां रे साथे मैं संगीता शर्मा और अब समाचार विगतवार। प्रदेश माए चाल रिया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत न्यारी न्यारी गतिविधियां राखी जारी है। आ गतिविधियां रो लखस इन अभियान सु 32 लोगां ने जोड़नो और जल संरक्षण रे प्रति जागरूकता बधानो है। इन्हीं कड़ी माए झुंझुनू जिलेरा नवलगढ़ माए जन जागरूकता कार्यक्रम राख्या गया। कार्यक्रम माए आया लोगां ने पौधा बांटर पर्यावरण संरक्षण रो संदेश दियो गयो। भीषण गर्मी ने देखता थका राहगीरां ने पानी और शरबत पिलायो गयो। जैसलमेर माए अभियान रे तहत भू जल संरक्षण महकमारी कानीसू जल संरक्षण शपथ पौधारोपण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। सवाई माधोपुर माए आज वंदे गंगा जल
1: एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और देश में अमन खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी। घर घर में कुर्बानी की रस्म अदा की गई। शहर की बकरा मंडियों में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंगा दशमी के अवसर पर बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का शुभारंभ

0: खिलाड़ियारी भागीदारी और साचे वक्त रह समन्वय खातिर 32 प्रभावी योजना बनावण माए सक्षम करनो है। ऐ समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सु सुन रिया हो। टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष अभियान माए खास उपलब्धियां हासिल करी है। 24 मार्च सु शुरू हुआ इन अभियान माए 2 महीना माए राज्य माए करीब 19 लाख लोगों की स्क्रीनिंग करी जी और 35,000 सु 32 नुआ रोगियों की पहचान करी जी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो कि निरामया राजस्थान रे विजन रे तहत टीबी जड़ी गंभीर बीमारी रे उन्मूलन खातिर स्क्रीनिंग तुरंत जांच जन जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता रे प्राथमिकता दी जा रही है। वणा कहो कि जन भागीदारी तकनीक और संवेदनशीलता रे साथे स्वास्थ्य सेवावां मुहैया करार आपा टीबी मुक्त राजस्थान री दिशा माए काम कर रिया हां। कुर्बानी रो तिवार ईद उल अजहा देश भर माए धार्मिक उचास रे साथे मनायो जा रियो है। प्रदेश माए जयपुर समेत प्रदेश रा न्यारा न्यारा शहर कस्बा माए सुवारे ईदगाह और मस्जिदा माए ईद री नमाज अदा करी जी। बाद में लोगा एक दूजे सु गले मिलर ईद री मुबारकबाद दी। सूफी संत ख्वाजारी नगरी अजमेर माए भी ईद उल अजहा रे मौके माथे नमाज रे पाछे लोगा एक दूजे ने मुबारकबाद दी। और ब्यूरो माणा खबर नवी सु
1: आज मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल अजहा का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर साल में मात्र 4 बार खुलने वाला जन्नती दरवाजा आज एक दिन के लिए खोला गया, जिसके चलते जन्नती दरवाजा खुलते ही भारी संख्या में अकीदतमंदों की भीड़ दरवाजे के नीचे से गुजरने के लिए उमड़ पड़ी। सुबह से ही ख्वाजा साहब की दरगाह सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदतमंदों द्वारा नमाज अदा कर देश समाज में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा भी शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए। नलमा दहादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। आज मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल अजहा का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर साल में मात्र 4 बार खुलने वाला जन्नती दरवाजा आज एक दिन के लिए खोला गया, जिसके चलते जन्नती दरवाजा खुलते ही भारी संख्या में अकीदतमंदों की भीड़ दरवाजे के नीचे से गुजरने के लिए उमड़ पड़ी। सुबह से ही ख्वाजा साहब की दरगाह सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदतमंदों द्वारा नमाज अदा कर देश समाज में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा भी शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए। नलमा दहादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही माए भी ईद उल अजहारो पर्व हकीकत रे साथ है मनायो जा रियो है। इन मौके माथे बाजारा माए त्योहारारी खरीदारी और चहल पहल नजर आ रही है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कुलपति पद पर रहता थका अनियमितता रे कारण

0: आ सेवा सप्ताह माए तीन दिन मंगलवार गुरुवार और शनिवार ने संचालित वैली। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय रे माए भारत केंद्र कानिसू सवाई माधोपुर माए वीर सावरकर जयंती मनाई जी। छात्रपति शिवाजी युवा मंडल री कानिसू राखी जो जयंती जलसे माए सावरकर रे राष्ट्र निर्माण माए योगदान ने याद करता हुआ संगोष्ठी और चित्रकला होड़ समेत न्यारी न्यारी गतिविधियां राखी जी। होड़ माए विजेतावा ने स्मृति चिन्ह देर सम्मानित करो गयो। जैसलमेर माए भी सावरकर जयंती माथे न्यारी न्यारी होड़ा और संगोष्ठी राखी जी। इन मौके माथे घनी तादाद माए मौजूद युवावा ने पर्यावरण संरक्षण शपथ भी दिलाई जी। और खास खास खबर आखिर में एक कर फेरू सुनो। प्रदेश माए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत न्यारी न्यारी गतिविधियां जारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सीबीएसई कक्षा 12 री परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया माए विसंगतियां सु संबंधित पड़ेसरिया री सगली शिकायतां रे समाधान रो दियो आश्वासन। ईद उल अजहा रो पर्व प्रदेश भर माए अकीदत और एहतराम रे साथ मनायो जा रियो है। अर राज्य री घनकर ठोड़ा माते तेज गर्मी रो असर जारी। पश्चिमी हल्का माए आवता एक दो दिन हीट वेव रो दौर जारी रेवन रो पूर्वानुमान। इंडे साथ ही प्रादेशिक समाचार ओ बुलेटिन अठे ही पूरो वयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करो जावेला। नमस्कार।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला सभी कृषक भाई बहनों ने आपका साथी बद्री लाल लोदा और
2: संजू को गणो गणो राम राम।
1: राम राम संजू बहन राम राम। आज गुरुवार है साथियों और गुरुवार ने आपके ताई पतो को कि सजीव फोन इन कार्यक्रम रहे है। तो आज का फोन इन कार्यक्रम का विषय है खेती को लाभकारी टिकाऊ और तकनीक आधारित बनाने हेतु राष्ट्रीय स्तर का साझा मंच राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026। और ई पे जानकारी देवा के लेके मगा मेहमान विषय विशेषज्ञ है श्रीमती मोना राठौर आप सहायक निदेशक है कृषि विस्तार झालावाड़ से। तो संजू बहन एक बार आप भी फोन नंबर बता दो। कृषक साथियों आज का फोन नंबर है माँ का स्टूडियो का 0 34 32 0 34 32 STD कोड नंबर है और 232 593 फोन नंबर है। तो अभी फ़ोन करो और जो मगा मेहमान विषय विशेषज्ञ हैं उनसे जो तकनीकी आधारित खरीफ अभियान 2026 है ई पे प्रश्न पूछ सको। तो स्वागत है आपको किसान वाणी कार्यक्रम में राम राम साहब
3: जी। राम राम आपको और मेरे किसान भाइयों को।
1: तो सबसे पहले आपसे यही पूछ पूछाऊंगा कि राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 कहीं है
3: जी। आप राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कृषि विशेषज्ञ कृषि अधिकारी नीति निर्माता और किसान मिलकर खेती का नया भविष्य तय करेंगे। और इसके इस सम्मेलन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार तथा ICAR जैसे संस्थानों के सहयोग से ये आयोजित किया जाता है। इसमें खरीफ फसलों की रणनीति बीज उपलब्धता उर्वरक प्रबंधन जल संरक्षण जैविक खेती कृषि अधिकारी नीति निर्माता और किसान मिलकर खेती का नया भविष्य तय करेंगे। और इसके इस सम्मेलन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार तथा ICAR जैसे संस्थानों के सहयोग से ये आयोजित किया जाता है। इसमें खरीफ फसलों की रणनीति बीज उपलब्धता उर्वरक प्रबंधन जल संरक्षण जैविक खेती डिजिटल कृषि और किसानों की आय बढ़ाने पर चर्चा होगी। और इसी आज 28 और 29 मई 2026 राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर पूसा नई दिल्ली में अन्नदाता के सम्मान में यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
1: तो एक किसान साथी जुड़ी हुआ है। हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही आगे। तो ये जो सम्मेलन है
3: जी
1: दिल्ली में है
3: जी
1: वापस। हेलो हाँ जी स्वागत है आपको किसान वाणी कार्यक्रम में।
4: राम राम बदीलाल जी।
1: हाँ राम राम सब राम राम राम गोपाल जी कहीं पूछ बुचा रहे आप।
4: शुक्ला माता चौक माता जी राम गोपाल गुप्ता बाबूलाल
1: हाँ बिल्कुल अब पूछो आप कहीं

0: जा रहा हूँ।
1: एक खरीफ फसल में जैविक खाद के लिए क्या करना होगा, हमको तकनीक के बारे में पूछना। सोयाबीन का बीज कौन सा है जल्दी आने वाला, इसके बारे में
0: एक एक
1: पूछना,
0: पूछो। हाँ
1: इसके बारे में पूछना सर।
0: तो
1: और
0: आज को
1: हमको हमको
0: विषय है, माँ
1: सोयाबीन
0: को आज को माँ को विषय है नई तकनीक पर आधारित कोई जानकारी लेबो चाहो, या फिर
1: नहीं,
0: राष्ट्रीय कृषि
1: नई
0: सम्मेलन
1: तकनीक
0: खरीफ अभियान 2026 के विषय में कहीं पूछबो चाहो।
1: खरीफ फसल के बारे में पूछना चाहता हूँ सर, तकनीक के बारे में
0: हाँ कहीं पूछबो चाह रहा।
1: बताओ सर।
0: हाँ तकनीकी से खेती कैसा करे।
1: जी हम उसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप तकनीकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है ये तकनीकी आधारित खेती पे ही है, और इस सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है, स्मार्ट खेती। तो जो तकनीकी आधुनिक जो तकनीक है वो हमें अपनानी पड़ेगी, जिसके लिए हम ड्रोन तकनीक अपना सकते हैं, और ड्रोन तकनीक के द्वारा हम उर्वरक का छिड़काव कर सकते हैं, जो नैनो यूरिया नैनो डीएपी जो हमारा सरकार है इस पे 50% अनुदान उपलब्ध कराती है, तो हम ड्रोन तकनीक का उपयोग करके इससे छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे समय की बचत होगी और किसान का पैसा भी बचेगा, और समय और लागत दोनों की बचत होगी, और एआई आधारित हम कृषि सलाह ले सकते हैं और दवा का छिड़काव कर सकते हैं। इस तरीके से हम तकनीकी आधारित खेती, स्मार्ट खेती कर सकते हैं।
0: अच्छा ड्रोन की बात करें तो ड्रोन कितना को पड़ जाओ कर सर सत्या के। चलो अच्छा एआई तकनीक की बात करें ड्रोन में ही।
1: जैसे हम इस तकनीक के बारे में, जैसे मोबाइल ऐप द्वारा हम मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, रोग की पहचान कर सकते हैं, बाजार भाव का पता कर सकते हैं, सिंचाई की सलाह के बारे में हम किसान हमारा भाई इससे पता कर सकते हैं। तो आजकल जो मोबाइल ऐप है इसके माध्यम से हमारा किसान भाई इन इन बातों का पता कर सकता है, और आज सेंसर आधारित खेती भी चल गई है। इसके सेंसर के द्वारा हमारा किसान भाई ये पता लगा सकता है कि उस वो मिट्टी की नमी को देखकर उसको कितना पानी देना है, कितनी सिंचाई की आवश्यकता है। आजकल सैटेलाइट मॉनिटरिंग चल गई है, इसके द्वारा हम फसल की निगरानी उपग्रह के माध्यम से रख सकते हैं। डिजिटल कृषि के माध्यम से भी हम, किसान ऐप है, ऑनलाइन पंजीयन है, डीबीटी योजनाओं के माध्यम से, तो इस तरीके से हम तकनीकी आधारित खेती कर सकते हैं।
0: सही बात है, क्योंकि जैसे अभी आज तावड़ो पटरो कल वैसा के मौसम पानी
1: जी
0: से हो
1: जी
0: जावे तो वो भी
1: जी
0: इसे मिल जावे।
1: जी ये सारी जानकारी हमारे किसान भाई मोबाइल ऐप के द्वारा भी पता कर सकते हैं।
2: तो देखो, अपने खेती करा जाए तो खेती को लाभ की टिकाऊ खेती करा जाए, इको यो रज तो इको मुख्य उद्देश्य का ही रज।
1: जी हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, ये इसके मुख्य उद्देश्य, एक तो खरीफ मौसम 2026 में हमें उत्पादन कैसे बढ़ाना है, जो हमारा

0: तकनीकी आधारित खेती कर सकते हैं।
1: सही बात है, क्योंकि जैसे अभी आज तावड़ पटर कल वर्षा के मौसम में पानी से हो जावे तो वो भी इसे मिल जावे।
0: जी ये सारी जानकारी हमारे किसान भाई मोबाइल ऐप के द्वारा भी पता कर सकते हैं।
2: तो देखो अपने खेती करा जाए तो खेती को लाभ की टिकाऊ खेती करा जाए, इको यो रहे तो इको मुख्य उद्देश्य का ही रहे।
0: जी हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, ये इसके मुख्य उद्देश्य एक तो खरीफ मौसम 2026 में हमें उत्पादन कैसे बढ़ाना है, जो हमारा जो सम्मेलन चल रहा है इस सम्मेलन का सबसे मुख्य उद्देश्य है, लागत कैसे घटानी है।
2: अच्छा।
0: जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण करना और आधुनिक तकनीक को खेत तक पहुंचाना। अब इसके लिए हम खेत को लाभकारी बनाने के लिए हमें खेती में जो लागत के साथ हमें कुछ ऐसे उर्वरक का जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, हाँ वो SSP है और भी न्यूट्रिएंट है, उनके हमारे खेत में देना जरूरी है और जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ाना जरूरी है। तो इस तरीके से हम मृदा स्वास्थ्य का प्रबंधन कर सकते हैं और जल संरक्षण अपनाएं। जल संरक्षण में हम इस तरह की विधियां अपनाएं जैसे कि ड्रिप सिंचाई है और फव्वारा सिंचाई है, वर्षा के जल को हम संरक्षित करें, खेत तलाई खुदवाएं, इस तरीके से हम जल संरक्षण कर सकते हैं। उसी के साथ आगे हम प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। आज सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हर पंचायत में गांव-गांव एक क्लस्टर बना रही है और किसानों को इकट्ठा, मतलब 125 किसानों का एक क्लस्टर बनता है जिसमें हम किसानों को इसके द्वारा अनुदान उपलब्ध कराते हैं ताकि वो जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके उनको।
1: एक साथी जोड़ बोचारिया, हेलो हेलो हेलो,
2: तो देखो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे अपन तकनीकी आधारित खेती करा चाहे तो तकनीकी आधारित खेती अपन की प्रकार से कर सका ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले।
0: जी अभी हम इस विषय पे हमने अभी चर्चा कर ली थी, किसान भाई ने पूछा था, तो हम आगे चलते हैं।
1: अच्छा जैसे अभी अपन ने बात करी, आपने बताया कि मिट्टी परीक्षण भी इको एक हिस्सा है, तो मिट्टी पर जैसे अभी समय विचार साथी अभी करवा भी सके मिट्टी परीक्षण, तो कशा सैंपल लेयर कशा लेब तक जावे प्रयोगशाला तक जावे।
0: जी मिट्टी परीक्षण का जो नियम है वो है कि जैसे जहाँ से हमारा किसान भाई मिट्टी लेता है वो जो ऊपर की जगह होती है वो अच्छे से, मतलब ऊपर जो भी कचरा होता है उसको हटा देना चाहिए और पूरे खेत में ऐसे कम से कम हमें 10-15 जगह ऐसी चुननी पड़ती है जहाँ से हमें मिट्टी का सैंपल लेना है।
1: हेलो राम राम साहब,
3: की दूरी कहाँ से ले? मोहकम सिंह चौहान बोले, मिट्टी की खेत में कितने फासले की दूरी से ले जाए?
1: हाँ सुनो अब मिट्टी कितनी दूर लेनी चाहिए, कैसा लेनी चाहिए सैंपल बता रहा है।
0: हमें पूरे खेत में से 10-15 जगह का चुनाव किया जाता है जिस खेत से हमें मिट्टी लेनी है और जहाँ हमने जो खाद का छिड़काव किया है या पानी दिया है या जहाँ पानी इकट्ठा होता है या पेड़ के नीचे की जमीन है जहाँ पे छाया रहती है, हमें ऐसी जगह से मिट्टी नहीं लेना चाहिए। तो हमें पूरे खेत में 10-15 जगह का चुनाव कर ले, ऊपर के कचरे को हटा दे और 10-15 सेंटीमीटर का गड्ढा करके और उस गड्ढे की मिट्टी को पूरा बाहर निकाला जाता है और ऊपर से लेके जो नीचे की जो परत है उस परत को खुर्चा जाता है,
1: यानी कि गड्ढो यूं मान लो एक बेत मान लो।
0: हाँ एक बेत मान लो और उसको वी आकार, जो अंग्रेजी का वी होता है, वी आकार का गड्ढा किया जाता है और
1: ऊपर से नीचे तक
0: नीचे तक की

0: बाजरा, उड़द, मूंग, तिल और मूंगफली, और विशेष फोकस है श्री अन्न, जो मोटा
1: अच्छा
0: अनाज है उस पर विशेष फोकस किया जा रहा है, बाजरा, ज्वार, रागी, इस तरीके से, क्योंकि ये फसलें कम पानी में अच्छी पैदावार देती है
1: और पौष्टिकता भी रहे
0: और
1: हमें।
0: इनमें ये पौष्टिक अनाज के रूप में भी जाना जाता है, तो इन पे विशेष फोकस दिया जा रहा है।
1: और देखो अपन कीट की बात करा चाहे तो कीट मतलब कीट प्रबंधन रहे चाहे तो अपने ही कीट प्रबंधन को किस प्रकार से अपने रोकथाम कर सका है और काय उपाय रहे चाहिए का।
0: जी, कीट और रोग प्रबंधन, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि हमारे किसान भाई इस कीट और रोग प्रबंधन के पीछे इतने मतलब परेशान है कि

का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं, पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन

0: और युवा किसान, इन दोनों को सरकार महिलाओं और युवाओं को कृषि स्टार्टअप से जोड़ रही है और इसके बहुत सारे अवसर प्रदान कर रही है, जैसे कि मशरूम उत्पादन हुआ, मधुमक्खी पालन हुआ, डेयरी व्यवसाय हुआ, या फिर नर्सरी व्यवसाय हुआ, या ड्रोन सेवा है, या जैविक उत्पाद है। इन सबका इन इनमें से किसी भी व्यवसाय को अपना के हम कृषि स्टार्टअप से युवा किसानों को या महिला किसानों को प्राथमिकता दी जा सकती है, इनको बढ़ावा दिया जा सकता है, ये अपने व्यवसाय को इन इन अवसरों को उपयोग में लेके अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं।
1: अच्छा, ये मल्ले कहाँ, मतलब ये प्रशिक्षण कहाँ ले हुए, किसे बात करें?
0: जी, इसके लिए प्रशिक्षण या तो हमारा किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त कर सकता है, इसके अलावा जो पंजाब नेशनल बैंक ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से भी हमारे किसान, युवा किसान या महिला किसान, इनका प्रशिक्षण वहाँ से भी प्राप्त कर सकती है। दोनों जगह इनके प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं।
1: तो वहाँ जा करके कर साथी और ट्रेनिंग ले सके, प्रशिक्षण ले
0: जी
1: सके
0: जी जी
1: और आगे बढ़ सके। अच्छा,
0: जी
1: एक चीज़ और है, एपीओ।
0: जी
1: तो ये एपीओ से कई फायदे है,
0: जी

0: अधिक से अधिक किसान सक्षम रह
1: जी
0: और सक्षम के लिए अपन सब कुछ कर सका जा। और देखो किसानों के लिए मतलब अंतिम संदेश क्या छ
1: जी, हम किसान भाइयों को, मैं अब हमारे किसान

किसानों को फायदा नहीं मिलेगा। हम कोई भी किसान जब ऑनलाइन कराता है आवेदन, तो उसको वो 3 साल के लिए उसकी वैलिडिटी होती है, मतलब वो ऐसा, तो वो इसका मान लो इस साल उसका नंबर नहीं आया तो अगले साल या आने वाले साल में उसका नंबर आ जाएगा, तो 3 साल के लिए वो वैलिड है, ऐसा नहीं उसको

0: पता कि बच्चे बहुत नौटंकी होते हैं, तो मैं शीशे में
1: हाँ
0: देख के बड़े नाटक करती
1: ये किस उम्र से शुरू किया
0: थी
1: था?
0: ये पता नहीं काफी बचपन से शुरू हो गया था।
1: हाँ
0: तो एक मुझे ऑफर आया, डीडी नेशनल का ही आया, उसमें एक डॉक्यूमेंट्री था, गुजराती डॉक्यूमेंट्री। तो मम्मी ने बोला कर लो ट्राई, अगर तुम्हें करना है तो।
1: तब आप कितने बरस की थी?
0: मैं तब 15 साल की थी,
1: अच्छा
0: तो मैंने ट्राई कर लिया। उसके बाद से फिर शॉर्ट फिल्म्स वगैरह सब शुरू ही हो गया, फिर म्यूजिक वीडियोस।
1: अच्छा
0: हाँ
1: तो पहली जो एक्टिंग थी वो की आपने 15 बरस की उम्र में एक डॉक्यूमेंट्री के लिए,
0: हाँ
1: जब
0: डीडी
1: कैमरे का
0: नेशनल।
1: सामना किया तब क्या हो रहा
0: तब दिल की धड़कनें बड़ी हुई थी अभी भी है
1: था? जब परफॉर्म करना होता है या
0: हाँ
1: किसी अनजान एक्सपीरियंस से गुजरना होता है तो दिल की धड़कनें तो बड़ी ही होती है।
0: हाँ
1: स्कूल के जमाने से भी चल रही थी एक्टिंग, मतलब ये जो
0: हाँ
1: डॉक्यूमेंट्री के पहले से भी?
0: हाँ मतलब थिएटर होता था हमारे स्कूल में, प्लेज होते थे, ड्रामा क्लासेस तो चलता ही रहता था। ड्रामा तो कभी लड़कियों का वैसे बंद नहीं होता है, तो हमने सोचा इसे प्रोफेशनली किया जाए फिर
1: बिल्कुल सही है। पढ़ाई और एक्टिंग का बैलेंस किस तरह से होता था?
0: पहले तो मतलब इतना काम नहीं होता था, तो मैंने कर लिया, मतलब स्कूल इतना जाती नहीं थी, मैं साइड बाय साइड जॉब भी कर रही थी एक पार्ट टाइम, तो मैनेज हो गया। घर पे पढ़ लेते थे, मम्मी भी प्रिंसिपल रही थी तो मम्मी भी पढ़ा देती थी हमें। और कॉलेज में थोड़ा सा दिक्कत हुई, कॉलेज में शूट भी है, एग्जाम्स भी है, बहुत मुश्किल हुई लेकिन कर लिया।
1: एडजस्ट हो गई सारी
0: हाँ
1: चीजें।
0: हो गई।
1: मुझे बताइए कि आपने थिएटर की दुनिया में क्या-क्या किया है और कदम कब रखे थे रंगमंच की दुनिया में?
0: थिएटर मैंने 2012 में शुरू किया था, चंडीगढ़ में मैंने थिएटर स्टार्ट किया था। कुछ टाइम वहाँ किया थिएटर, 3 साल वहाँ किया और 2 साल मैंने दिल्ली में किया।
1: अच्छा, तो जब थिएटर में शुरुआत हुई चंडीगढ़ में, रंगमंच की अच्छी परंपरा है, वहाँ स्कूल भी है वहाँ की यूनिवर्सिटी में, मुझे वहाँ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए। कौन से नाटक किए, किन लोगों के साथ किए थे?
0: मेरा सबसे पहला नाटक रामलीला था एक, तो उसमें मुझे कुछ पता ही नहीं था ये राम लक्ष्मण के बारे में, मैंने कुछ सुना ही नहीं। और मैंने सोचा रामलीला मतलब आज के जमाने में कौन रामलीला करता है,
1: हाँ,
0: और वो 8-9 दिन चला। और हमारा जो सेक्टर का ग्रुप था वो फर्स्ट आता था हमेशा की तरह, और इस बार भी आया ही था। तो मेरा शबरी के बचपन का रोल था, तो बहुत सारे प्लेस किए हमने।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: और इसके अलावा क्या किया?
0: इसके अलावा तो मैं फिर पंजाबी म्यूजिक वीडियोस में किया, फिर मैंने एक पंजाबी फिल्म भी करी चंडीगढ़ में रह के, फिर मैं हिंदी फिल्म्स की तरफ आने लगी, मैंने हिंदी फिल्म भी करी दिल्ली में आके,
1: अच्छा,
0: बॉम्बे।
1: पंजाबी फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा था? वो फिल्म कौन सी थी और उसको किस तरह का रिस्पांस मिला था?
0: उसमें मेरा एक कैरेक्टर था छोटा सा, मुंडिया तो बच के रही फिल्म का नाम है, और ज्यादा बड़ा कैरेक्टर नहीं था, छोटा ही था, लेकिन मजा आया। मुझे पंजाबी बोलनी आती नहीं थी, इस तरीके से मैंने पंजाबी भी सीख ली।
1: ओ, तो पंजाबी बोलनी नहीं आती थी लेकिन पंजाबी फिल्म
0: सीख ली।
1: की थी
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: इसलिए पंजाबी सीखने मिल
0: हाँ
1: गई। मुंबई कब आना हुआ था?
0: मुंबई वैसे तो मैं पहले 4 साल 1 महीना रही, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, नहीं हो पाया मुझसे। मैं कुछ टाइम मैंने कुछ थोड़ा सा काम किया, फिर वापस चली गई मैं। फिर मैं अभी 2 साल पहले आई हूँ और हो गई, मैं अब तो सेटल हो गई हूँ। मैंने काफी काम कर लिया, मैंने बहुत सारे एड्स कर लिए, रियलिटी शो कर लिए और टीवी मतलब फिल्म वगैरह। यहाँ पे मैंने एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म भी करी, उसके बारे में ज्यादा बता नहीं सकती।
1: ये बताइए कि मुंबई का एक्सपीरियंस किस तरह का है, क्योंकि जब यहाँ कोई स्ट्रगल करने के लिए आता है तो उसे तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
0: मुझे ऐसा लगता है कि जो मुंबई में आके रह लिया 5-6 महीने, अगर वो खुद से रह लिया तो मतलब वो पक्का बन गया, बस अब यहाँ रह लिए तो दुनिया के किसी भी कोने में रह लेंगे।
1: हाँ, तो मुंबई में जो पहला काम आपने सेकंड दौरे में, मतलब पहली बार तो आप लौट गई थी, वो क्या किया था?
0: मैंने टीवी में किया था, मैंने एक जजमेंट किया मैंने सीरियल, वो भी उसमें भी कुछ टर्म का मेरा रोल है, और मोबाइल फोन का एड्स का, ये सब बहुत किया।
1: टेलीविजन के लिए और फिल्मों के लिए काम करने में किस तरह का फर्क है एक एक्टर के लिए?
0: टेलीविजन में ये होता है कि आपको एक कैरेक्टर मिला है तो वही आपका चलता रहेगा, वही आप करते रहते। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी बोरियत ऐसे हो जाता है वही करते हुए। फिल्म में क्या होता है कि आपको बहुत वैरायटीज हैं, कि 1 महीने बाद अब आपको दूसरा काम मिल रहा है तो आपको एकदम से ही दूसरा रोल मिल जाएगा, थोड़ा प्ले करने को मिलता है फिल्म में। और सीरियल में एक ही चल रहा है, वो चलता ही रहता है।
1: अपने आप को किस तरह से अपने रोल्स के लिए आप तैयार करती हैं? इतनी जरा सी हैं और इतनी बड़ी एक्टिंग की और फिल्मों की दुनिया है।
0: जब हमें ऐसे कोई पता लगता है कि हमें एक कैरेक्टर आ रहा है, तो हम एक तो उस कैरेक्टर में हमें रहना है,

0: चंडीगढ़ में मैंने थिएटर स्टार्ट किया था, कुछ टाइम वहाँ किया थिएटर, 3 साल वहाँ किया और 2 साल मैंने दिल्ली में किया।
1: अच्छा, हाँ। तो जब थिएटर में शुरुआत हुई चंडीगढ़ में, रंगमंच हाँ। की अच्छी परंपरा हाँ। है, वहाँ स्कूल भी है हाँ। वहाँ की यूनिवर्सिटी में हाँ। मुझे वहाँ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए, कौन से नाटक किए, किन लोगों के साथ किए थे?
0: मेरा सबसे पहला नाटक रामलीला था एक, तो उसमें मुझे कुछ पता ही नहीं था ये राम लक्ष्मण के बारे में, मैंने कुछ सुना ही नहीं, और मैंने सोचा रामलीला मतलब आज के जमाने में कौन रामलीला करता है, और वो 8-9 दिन चला और हमारा जो सेक्टर का ग्रुप था वो फर्स्ट आता था हमेशा की तरह, और इस बार भी आया ही था, तो मेरा शबरी के बचपन का रोल था, तो बहुत सारे किया हमने।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: और इसके अलावा क्या किया?
0: इसके अलावा तो मैं फिर पंजाबी म्यूजिक वीडियोस में किया, फिर मैंने एक पंजाबी फिल्म भी करी चंडीगढ़ में रह के, फिर मैं हिंदी फिल्म्स की तरफ आने लगी, मैंने हिंदी फिल्म भी करी दिल्ली में आके।
1: अच्छा, पंजाबी फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा था, वो फिल्म कौन सी थी और उसको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला था?
0: उसमें मेरा एक कैरेक्टर था छोटा सा, मुंडिया तो बच के रही फिल्म का नाम है, और ज्यादा बड़ा कैरेक्टर नहीं था, छोटा ही था, लेकिन मजा आया, मुझे पंजाबी बोलनी आती नहीं थी, इस तरीके से मैंने पंजाबी भी सीख ली।
1: ओ, तो पंजाबी बोलनी नहीं आती थी लेकिन पंजाबी फिल्म की थी और इसलिए पंजाबी सीखने मिल गई। मुंबई कब आना हुआ था?
0: मुंबई वैसे तो मैं पहले 4 साल 1 महीना रही, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, नहीं हो पाया मुझसे, मैं कुछ टाइम मैंने कुछ थोड़ा सा काम किया फिर वापस चली गई मैं, फिर मैं अभी 2 साल पहले आई हूँ और हो गई, मैं अब तो सेटल हो गई हूँ, मैंने काफी काम कर लिया, मैंने बहुत सारे एड्स कर लिए, रियलिटी शो कर लिए और टीवी मतलब फिल्म वगैरह, यहाँ पे मैंने एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म भी करी, उसके बारे में ज्यादा बता नहीं सकती।
1: ये बताइए कि मुंबई का एक्सपीरियंस किस तरह का है, क्योंकि जब यहाँ कोई स्ट्रगल करने के लिए आता है तो उसे तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
0: मुझे ऐसा लगता है कि जो मुंबई में आके रह लिया 5-6 महीने, अगर वो खुद से रह लिया तो मतलब वो पक्का बन गया, बस अब यहाँ रह लिए तो दुनिया के किसी भी कोने में रह लेंगे।
1: तो मुंबई में जो पहला काम आपने सेकेंड दौरे में मतलब पहली बार तो आप लौट गई थी,

0: सब लोग रोज अपनी लाइफ में एक्टिंग करते हैं रियल लाइफ, लेकिन जब कैमरा आता है तो कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि वो सामने वाला हमें देख रहा है. लेकिन अगर हमें पता ही ना चले कि कोई हमें देख रहा है, तो हम लोग बहुत अच्छे से एक्टिंग कर लेते हैं. तो वी ऑल आर बॉर्न एक्टर्स, लेकिन उसे ट्रेनिंग के थ्रू हम लोग और शार्प कर सकते हैं. जैसे एक पेंटर होता है, अगर वो रोज पेंटिंग करे तो वो और अच्छी पेंटिंग बनाता है. तो ऐसे ही एक्टर है, अगर वो रोज एक्टिंग करे तो वो और बेहतर हो सकता है अपनी ट्रेनिंग से.
1: यानी ट्रेनिंग के आज के एक्टिंग की दुनिया में मायने हैं, वो आपको बेटर बना सकती है. अब मुझे ये बताइए कि आज टेलीविजन या फिल्मों में जो रोल्स आपको मिलते हैं अपने करियर के इस स्टेज पर, तो वो रोल किस तरह से आप चुनती हैं, या आपके मन में एक इमेज होती है कि मुझे इस तरह के रोल्स करने हैं, आपने तय कर रखा है कि इस तरह के रोल्स करना चाहती हूँ लेकिन आज उस तरह के सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं?
0: मैं बहुत ऑनेस्टली बताना चाहूंगी, अभी इस टाइम मुझे जो आ रहा है मैं कर रही हूँ, बिकॉज मुझे भी अभी सर्वाइव करना है बॉम्बे में. मेरे पास कोई ऐसे खजाना नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, तो हमें भी अभी बहुत पैसे चाहिए मेंटेनेंस के लिए. वैसे भी इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा चाहिए, अपने ऊपर ही बहुत खर्चा होता है. तो फिलहाल अभी जो आ रहा है मैं ले रही हूँ, लेकिन आगे जाके मैं बहुत चूजी होने वाली हूँ कि चाहे एक दो साल में एक काम करूँ.
1: बहुत बहुत शुक्रिया प्रकृति, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और आपने हमसे बातचीत की, बहुत धन्यवाद.
2: जानी मानी टीवी और फिल्म अभिनेत्री प्रकृति नौटियाल से यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी. प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई. इसी के साथ आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है.

दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं सुरेंद्र गुलाटी का लिखा नाटक यादों की परछाइयां। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का चौथा और अंतिम भाग। निर्देशक हैं दीनानाथ।

0: कैसी हो?
1: सिर्फ इतनी सी बात पूछने के लिए तुमने मुझे रोका था।
0: यूं ही मैं जानना चाहता था शादी के बाद तुम कैसा महसूस कर रही हो।
1: शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है क्या?
0: लोग कहते हैं।
1: मुझे तो ऐसा नहीं लगा।
0: बहुत खुश हो?
1: बेहद। कौन किसी को क्या खुशी दे सकता है? खुशी तो अपने मन से होती है। वैसे मिस्टर लाल से मुझे सब कुछ मिल जाता है।
0: सब कुछ?
1: और अगर कहीं कमी रह जाती है तो आंखें बंद करके तुम्हें याद कर लेती। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया? छोड़ो, और सुनाओ कीवी से कैसी निभ रही है?
0: कुछ समझ में नहीं आता। कीवी दिन पर दिन शक्की और बेहद डोमिनेटिंग होती जा रही है।
1: क्योंकि वो तुम्हें अपना, सिर्फ अपना समझती है।
0: अपना समझने से तो एतबार बढ़ना चाहिए।
1: कोई दूसरा उसकी खुशी में शरीक ना हो, डर भी तो लगा रहता है।
0: जाने क्यों मुझे लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए शायद नहीं बने।
1: तो क्या हुआ, शादी के बाद बन जाओगे?
0: और अगर ना बन सके
1: तो आंखें बंद करके तुम उसके बारे में सोच लेना जिसके बारे में तुम्हारा ख्याल है कि वो बिल्कुल तुम्हारी अपनी।
0: दूसरे लफ्जों में जिंदगी भर हम एक दूसरे को धोखा देते रहे।
1: मैं इसे अरेंजमेंट कहती हूँ। इस जमाने में जिंदा रहने के लिए एक सूझबूझ के अरेंजमेंट की जरूरत भावनाओं से ज्यादा है। जिस रफ्तार से हम आगे ही आगे बढ़ रहे हैं वहां रुककर पीछे देखने वाला इंसान कुचला जाएगा। गुजरा हुआ हर मोमेंट मर चुका है, खत्म हो चुका है। विकी, जहां खड़े हो उसी को स्टार्ट मानकर नई दौड़ शुरू करो।
0: शायद तुम ठीक कहती।
1: कम से कम मैंने यही किया है और मेरा ख्याल है आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन।
0: लेकिन कीवी,
1: बिल्कुल परफेक्ट लड़की दुनिया में कोई है? कीवी में बहुत कुछ है। और फिर मत भूलो कि उसके बाप की क्या पोजीशन है।
0: मुझे उससे क्या लेना देना?
1: कीवी उनकी इकलौती बच्ची है।
0: लेकिन मुझे उसके रुपए पैसे से कोई मतलब नहीं।
1: ना सही, वो तुमको बेहद चाहती भी तो है। तुम क्या उसे पसंद नहीं करते?
0: ना करता होता तो इतना सब ही क्यों?
1: सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसा है तुम उससे भागना क्यों चाहते हो?
0: मेरी कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं।
1: क्योंकि तुम वक्त की रफ्तार के साथ नहीं हो। विकी, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। वो तुम्हारे साथ नहीं लुढ़केगा, तुम्हें उसके साथ भागना होगा।
2: लोगों की कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए तो जरा बाहर आ जाना, सारा प्रोग्राम फीका पड़ रहा है।
0: नहीं नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है। आओ नीना, बाहर चले।
1: चलो। अरे भाई, मैं तो तुम्हारी ही वकालत कर रही थी कीवी।
2: थैंक्स अ लॉट। लेकिन किसी को हमारी परवाह हो तभी तो।
0: कीवी, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती?
2: क्या समझूं, समझने को रखा ही क्या है। खुद ही ऐसी गलती कर रही हूँ, खुद ही इसे भुगतूंगी भी।
1: क्या बात है कीवी?
2: कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
0: कीवी, कीवी आखिर हुआ क्या है? तुम ये तो बताओ, तुम चाहती क्या हो?
1: बताओ ना कीवी, आखिर क्या चाहती हो?
2: तुमसे क्या छुपा है? अब तो सारा जमाना जान चुका है कि मैं क्या चाहती हूँ, किसे चाहती।

0: तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया? छोड़ो, और सुनाओ, कीवी से कैसी निभ रही है?
1: कुछ समझ में नहीं आता। कीवी दिन पर दिन शक की और बेहद डोमिनेटिंग होती जा रही है।
0: क्योंकि वो तुम्हें अपना, सिर्फ अपना समझती है।
1: अपना समझने से तो एतबार बढ़ना चाहिए।
0: कोई दूसरा उसकी खुशी में शरीक ना हो, डर भी तो लगा रहता है।
1: जाने क्यों मुझे लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे के।
0: लेकिन लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये
1: वो तुम्हें तो वहम हो गया है कीवी।
0: हाँ हाँ, मुझे ही वहम हो गया है। और तुम क्यों नहीं डैडी से बात करते हो? मम्मी बार बार मुझसे पूछती है, विक्की ने प्रपोज किया, विक्की कब प्रपोज करेगा, विक्की के सारे कब तक बैठी रहोगी? फ्रेंड्स मिलती है तो किसी भी रिंग को देख कर टोंट करती है, कीवी ये तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग है? तब मेरा जी चाहता है मैं कहीं कूद पर जान दे दूं।
1: ओ, कीवी, सुनो कीवी, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि तुम्हारे पेरेंट्स को इतनी जल्दी है। मैं खुद बात करना चाहता था लेकिन मैं किसी अच्छे से मौके की तलाश में था।
0: मौका मौका मौका, आज से अच्छा मौका और क्या हो सकता था? लेकिन तुमने जान बूझ कर देर से आए ताकि ये चांस अवॉइड कर सको।
1: ओ, चलो आज की बात छोड़ो कीवी, मैं जल्दी ही किसी रोज।
0: मैं जानती हूँ वो दिन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा।
1: आएगा कीवी, आएगा।
0: आज ही क्यों नहीं?
1: आज बात ये है, वक्त नहीं रहा। देखो 7:30 बज रहे हैं और 8 बजे तक मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है।
0: मैं पहले ही जानती थी तुम जरूर कोई ना कोई बहाना ढूंढ निकालोगे।
1: सुनो तो सही कीवी।
0: नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मेरे गेम से कौन रुकता है?
1: ओफो, अब तुम ही बताओ नीना।
2: नीना डार्लिंग, अब इजाजत लो। याद है ना कुमार्स के यहाँ डिनर है?
0: यस डार्लिंग, आइए चलें। अच्छा भाई विकी, गुड नाइट।
1: गुड नाइट नीना। गुड नाइट मिस्टर लाल।
2: कभी आइए मिलने।
1: ओ, जरूर जरूर। डार्लिंग,
3: तुम डार्लिंग कहते हो तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे हम दोनों एक दूसरे से उकताए हुए पति पत्नी हैं। मुझे इस लफ्ज से सख्त बनावट की बू आती है।
4: अरे विकी, तुम यहाँ अकेले ही खड़े हो और वो भी अंधेरे में।
1: हाँ यार, तुम ही रोशनी कर दो।
4: अब क्या और रुकने का इरादा है या चलना है?
1: अरे भाई, मुझे तो जाना है, 8 बजे एयरपोर्ट पहुँचना है।
4: तो फिर चलो ना, 7:30 तो कभी के बज चुके हैं। आओ।
5: हैंडसम, हमसे तो आज बात भी नहीं की।
1: कभी इतना बोर करूंगा मैडम कि कान पकड़ लोगी।
5: किसके?
1: अपने और किसके।
4: Well said, विकी।

0: अंकल मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहे हैं बॉम्बे से, 8 बजे फ्लाइट आनी है, एयरपोर्ट उनको रिसीव करने के लिए पहुंचना है।
1: फिर तो जरूर जाओ।
0: अच्छा केवी,
2: थैंक्स फॉर कमिंग,
0: गुड नाइट एवरीबॉडी।
1: गुड नाइट।
0: ये लड़कियां इतनी ना समझ क्यों होती हैं?
3: तारीफ तो तुम क्या करोगे, बस कदर ही कर लो, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारी तरह के भूतों का खतरा होता है ना, ना मिले तो सूना सूना लगता है, मिल जाए तो ऐसा जादू करते हैं कि घर बार भूल जाता है।
0: कुछ है और फिर मत भूलो कि उसके बाप की क्या पोजीशन है। मुझे उससे क्या लेना देना है?
4: केवी उनकी इकलौती बच्ची है।
0: लेकिन मुझे उसके रुपए पैसे से कोई मतलब नहीं।
4: ना सही, वो तुमको बेहद चाहती भी तो है, तुम क्या उसे पसंद नहीं करते?
0: ना करता होता तो इतना सभी क्यों?
4: सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसा है तुम उससे भागना क्यों चाहते हो?
0: मेरी कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं।
4: क्योंकि तुम वक्त की रफ्तार के साथ नहीं हो। विकी, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वो तुम्हारे साथ नहीं लुढ़केगा, तुम्हें उसके साथ भागना होगा।
2: लोगों की कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए तो जरा बाहर आ जाना, सारा प्रोग्राम फीका पड़ रहा है।
0: नहीं नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, आओ नीना बाहर चले।
4: चलो। अरे भाई मैं तो तुम्हारी ही वकालत कर रही थी कीवी।
2: थैंक्स अ लॉट। लेकिन किसी को हमारी परवाह हो तभी तो।
0: कीवी तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती?
1: विक्रम तुम्हारा ऑफिस अभी भी कई मामलों में बहुत ढीला है, उसे टाइट करो विक्रम, टाइट, खूब टाइट करो।
0: यस सर।
1: मुझे सुस्त रफ्तारी बिल्कुल पसंद नहीं विक्रम, तुम गाड़ी बहुत स्लो ड्राइव करते हो।
0: सड़कें ठीक नहीं है।
1: सड़कें ठीक न होने से क्या होगा, गाड़ी जल्दी पुरानी हो जाएगी। अगर हिसाब लगाकर सोचो तो तुम समझोगे कि वक्त की कीमत गाड़ी की कीमत से ज्यादा है।
2: लेकिन लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये
0: वो, तुम्हें तो वहम हो गया है कि
2: हाँ हाँ मुझे ही वहम हो गया है। और तुम क्यों नहीं डैडी से बात करते हो? मम्मी बार बार मुझसे पूछती है विकी ने प्रपोज किया, विकी कब प्रपोज करेगा, विकी के सहारे कब तक बैठी रहोगी। फ्रेंड्स मिलती है तो किसी भी रिंग को देख कर टोंट करती है कीवी ये तुम्हारी
5: भागते रहोगे, जीवन भर भागते रहोगे विक्रम, ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वो तुम्हारे साथ नहीं लुढ़केगा, तुम्हें उसके साथ भागना होगा, भागना होगा।
2: मम्मी बार बार मुझसे पूछती है विकी ने प्रपोज किया, विकी कब प्रपोज करेगा, विकी के सहारे कब तक बैठी रहोगी, कब तक बैठी रहोगी।
5: मुझे खड़खड़ाते हुए कारखाने की तमन्ना नहीं, मैंने तो एक छोटे से पुरसुकून घर का सपना देखा है, पुरसुकून घर का सपना।
4: और इसी भावुकता में अंधे होकर हम ये भूल जाते हैं कि प्रेमिका और बीवी दो अलग अलग चीजें हैं। कमला इज हार्डली अ मैच फॉर यू, कमला इज हार्डली अ मैच फॉर
2: यू। ये शोर, ये हंगामा, ये कह कहे, इतनी भीड़ भाड़, क्या कोई इसलिए पार्टी अरेंज करता है कि खुद अकेले बन का शिकार होकर एक कोने में दुबका

0: faster. Faster, Vikram, faster.
1: Yes, sir.
2: Vikram, ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। ये वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। वो तुम्हारे साथ नहीं लुढ़केगा, तुम्हें उसके साथ भागना होगा। मम्मी बार बार मुझसे पूछती है, विक्की ने प्रपोज किया, विक्की कब प्रपोज करेगा, विक्की के सहारे कब तक बैठी रहोगी, कब तक बैठी रहोगी।
0: विक्रम, I say faster, faster.
3: क्या हुआ विक्रम, तुम अचानक रुक क्यों गए? तुमने तो गाड़ी भी बंद कर दी।

आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल, आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं मोहम्मद रफी।

0: यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में आइए सुनते हैं दीवार फिल्म का गीत, जिसे लिखा साहिर लुधियानवी ने, संगीत दिया आरडी बर्मन ने।
2: तुम्हें
3: हाँ
2: या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है
3: क्या है,

0: आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
1: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देव रॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है।
1: तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को

0: 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने

से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंक

0: इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद

0: होने की संभावना है, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्यागपत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल। आइए अब सुनते हैं गैर फिल्मी गीत गजल कव्वालियों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तलत अजीज की आवाज़ में गाई इस गजल से।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।